मीडियम वेव 254.45 मीटर अर्थात 1189 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 26

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्बनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं।

मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है सुप्रभातम, आरंभ समूह स्वर में मातृवंदना से।

अभी आप सुन रहे थे सूरदास की भक्ति रचना मीना कपूर के स्वर में। आइए अब सुनते हैं दुखियाल का भजन, स्वर कमला झांगियानी का है।

0: इस भजन के साथ ही सुप्रभातम संपन्न हुआ। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि संकेत। इस क्रम में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं सब्जी उत्पादन से अतिरिक्त लाभ के बारे में।
1: किसान भैया बहनी, अरे आपन भारत देश कृषि प्रधान देश आए। अपने देश के ज्यादातर भैया बहनी हरे खेती किसानी कई के आपन जीवन यापन करत हमा। खेती किसानी तो मनई करते हवे, ओके साथ और साथ थोड़ बहुत सब्जी तरकारी अपन पे खाए का बोय बराही लेत हवे। पर बढ़त जनसंख्या का देखत कीन दहला दुई दहला तरकारी बोए के माथे काम न चली। आओ मांग ज्यादा होए के कारण साग सब्जी महंगा बिकत ही। भैया बहिनी बढ़त जनसंख्या और महंगाई का देखत कीन पुरान तरीका का छाड़ के नए तरीका का अपनाए से मनई सब्जी उत्पादन में अतिरिक्त मुनाफा कमा सकत है। देखी अबे गर्मी रही त गर्मी में सब्जी के मनई कैसन के उपराज ले जौने तेज घामो में सब्जी को मिलाए न और न उपराज में कमी आवे। एक ही नीता छायादार नेट हाउस जेही सेड नेट हाउस कहा जात है वह करीबन 1 एकड़ आकी 50 डिसमिल में बनत जौन लागत लागत ही ओकर आधा पैसा अनुदान के रूप में सरकार देती बे। वह रकम सीधे हितग्राही के खाता में आ जात हवे। देखी सेडनेट हाउस सब्जी उपराज करे के बहुत निकहा साधन है। एहमा बिना मौसम के सब्जी मनई उगा सकत है। छायादार नेट के सहायता से न सिर्फ तापमान का घटावा जात है बरुक सूर्य के तेज रोशनी का आवश्यकता के अनुसार कम कीन जा सकत है। देखी एहमा मौसमी सब्जी न बोबे बरा है बिना मौसम के सब्जी के खेती करे। अब जैसा बरसात आई गए बरसात के मौसम में धनिया के सागा पालक मूली फूल गोभी के अगार फसल पत्ता गोभी के अगार फसल गाजर के अगार फसल ई सब खुले में कीट और अधिकहा पानी से ग्रसित हो जात हमा त इनसे उपराज नहीं मिल पावे। जो छायादार नेट हाउस के उपयोग करे त नुकसान से बचत हो सकत ही और निकही उपराज मिलत। छायादार नेट हाउस में सब्जी उपज में लागत और बोवे के उपयुक्त समय ई अमेर के हवे। हरी धनिया अप्रैल मई में बोवे त छाया के मात्रा 60-70% होए का चाही। संबंधित उपराज 6-8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर संभावित मुनाफा 30,000-40,000 तक। जून जुलाई में हरी धनिया छाया उतने 60-70% 6-8 क्विंटल उपराज और संभावित मुनाफा 30,000-40,000 होती बे। बीट लीफ मा 60-70% छाया करण संभावित उपराज 8-10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और मुनाफा 30,000-40,000 तक मिलत हवे। बीट लीफ अप्रैल मई जून सितंबर और अक्टूबर नवंबर मा इतनी छाया करण और इतनी उपराज और मुनाफा करीब

0: करीब बराबर रहा थी वे। ठंडी के मौसम में लौकी, फ्रांस बीन, टमाटर, चप्पन कद्दू, खीरा जैसन कद्दू वर्गी सब्जीन का पूर्णतः बेमौसमी सब्जी के उत्पादन के नीता कीन जाती वे। चप्पल कद्दू आधे अक्टूबर से आधे फरवरी, फसल अवधि 40 से 50 दिन, उपराज 20 से 25 टन। लौकी अक्टूबर से फरवरी अवधि 25 से 30 दिन, 25 से 30 टन उपराज। खीरा अक्टूबर से 30 फरवरी अवधि 15 से 20, 10 से 15 टन उपराज। कद्दू अक्टूबर से मध्य फरवरी, फसल अवधि 30 से 40, 15 से 20 टन उपराज। टमाटर अक्टूबर से मध्य फरवरी में, फसल अवधि है 20 से 25, 10 से 15 टन उपराज। तो भैया बहनी हरे जो सेडनेट हाउस के द्वारा खेती कीन जाए तो साग सब्जी में मने अधिकहा उपराज पाए सकत है।
1: कृषि संकेत के अंतर्गत अभी आपने जानकारी प्राप्त की कृषि उत्पादन से अतिरिक्त लाभ के बारे में। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। अब प्रस्तुत है रामचरितमानस से पाठ।

अयोध्या से आई बारात के जनवासे में सुविधापूर्वक स्थापित हो जाने का समाचार पाकर मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर राजा दशरथ के पास पहुंचे। अवध नरेश ने मुनि की चरण धूलि सिर से लगाकर दंडवत प्रणाम किया। दीर्घ अवधि के बाद राम लक्ष्मण को अपने चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदित करते देख दशरथ जी का हृदय आनंद से भर आया। उन्होंने पुत्रों को उठाकर गले से लगाया। भरत ने छोटे भाई शत्रुघ्न समेत श्री राम को प्रणाम किया और दोनों भाई लक्ष्मण जी से गले मिले। श्री राम को देखकर बारात में आए अयोध्यावासियों का जी जुड़ा गया। राजा दशरथ के चारों पुत्र पिता के पास ऐसे शोभायमान हैं मानो अर्थ धर्म काम तथा मोक्ष ने साक्षात शरीर धारण कर लिए हों। अगवानी में आए पुरोहित शतानंद, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, विद्वान तथा भाटों ने राजा दशरथ और बारातियों की अभ्यर्थना की। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, ये जनकपुरवासियों के लिए विशेष आनंद का बानक बन गया है।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ, गायक स्वर सुरेश वाडकर का था। मीडियम वेव 254.5 मीटर अर्थात 1179 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

आज सवेरे कार्यक्रम होगा प्रातः 7:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम संग्रहालय से का समय होगा 9:30 पर। इसमें आप सुनेंगे नाटक जेब कतरा, लेखक हैं सआदत हसन और प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। चौपाल कार्यक्रम का समय होगा 7:21 पर। इसमें आप सुनेंगे स्तंभ अपना चौका। 10:45 पर सुनिएगा यौमे आशूरा की अहमियत विषय पर ली गई भेंट वार्ता। वार्ताकार होंगे राशिद खान। सुगम संगीत के अंतर्गत जश्न समा कार्यक्रम में कव्वालियों का लुत्फ लीजिएगा 10:05 पर। फिल्म संगीत का आनंद लेंगे संगीत प्रभा में 7:20 पर। इसके अलावा फिल्म संगीत होगा 8:30 पर। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने बताया कि बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ाने और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशेल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमेनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजैक ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं।

0: करूंगा इंटीग्रेटेड फार्मिंग की।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, नशे के दुष्परिणामों से बचाने के लिए पाठ्यक्रम में शामिल करें। देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार, पहले की तरह बहाल हुई सेवाएं। और आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे वहां के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय सहयोग में सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वे सेशेल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी बातचीत करेंगे। बता दें कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशेल्स भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत और स्थायी मित्रता को नई गति देते हुए द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करेगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की बैठक में कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि नशे के दुष्परिणामों से किशोरों और युवाओं को समय रहते परिचित कराना जरूरी है। नशे के विरुद्ध वातावरण बनाने के उद्देश्य से स्कूली और महाविद्यालयीन स्तरों के पाठ्यक्रमों में नशे के विरुद्ध जन जागरूकता पर केंद्रित सामग्री शामिल की जाए। वैश्विक संकट के बीच भारत के लिए अच्छी खबर है। देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार आने के बाद केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी आपूर्ति पर लगे सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। अब पश्चिम एशिया संकट से पहले ही आपूर्ति बहाल कर दी गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार थोक एलपीजी की आपूर्ति को पहले से 50% तक बढ़ा दिया है, जिससे कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। साथ ही सरकार ने पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने का भरोसा भी जताया है। भारत ने जर्मनी में सुहल में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2026 में कल 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 4 और पदक जीतकर 25 पदक अपने नाम कर लिए। उधर आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। वहीं हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय टीम को सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए रविवार को ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। वहीं भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। भारतीय समय अनुसार यह मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। लोकतंत्र प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या का दिन बताया। उन्होंने कल ग्वालियर में कहा कि आधी शताब्दी बीतने के बाद भी उन्हें अपने स्कूली जीवन की वे यादें ताजा रहती हैं। मंत्री पटेल ने कहा कि देश ने आजादी के बाद जो अन्याय और यातनाएं झेली हैं, उसकी जानकारी आगामी पीढ़ी को होना जरूरी है, ताकि वे समझ सकें कि लोकतांत्रिक मूल्य कितने महत्वपूर्ण हैं।
1: लोकतंत्र की हत्या का दिन था वो, आधी शताब्दी बीत गई है। पर मुझे लगता है कि जब आपातकाल लगा था तब मैं पढ़ता था स्कूल में। आज वो जनरेशन जरूर याद रखे कि मूल्य कैसे सुरक्षित होते हैं। लोगों ने आजादी के आंदोलन की बातें तो सुनी है, लेकिन उसके बाद देश की आजादी के बाद जो अन्याय इस देश पर हुआ, जिनने यातनाएं सही हैं, उनकी जानकारी भी आने वाली पीढ़ी को होना चाहिए। और जिन लोगों ने लोकतंत्र बचाने के लिए यातनाएं सही हैं, उनका स्मरण भी होना चाहिए और उनको नमन भी होना चाहिए। और उसी कारण से पार्टी प्रतिवर्ष से काम करती है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर जल संकल्प से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री डॉ यादव ने राज्य में एक अभूतपूर्व जल क्रांति का सूत्रपात किया है। ये बातें मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सांस्कृतिक सलाहकार श्री राम तिवारी ने अपने हालिया लेख में मुख्यमंत्री को जनप्रिय जलनायक के रूप में रेखांकित करते हुए लिखी है। लेख के अनुसार मुख्यमंत्री पिछले 22 वर्षों के अपने भागीरथ संकल्प और अटूट निष्ठा के बल पर वे जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से प्रदेश के पारंपरिक जल स्रोतों, कुओं और बावड़ियों का कायाकल्प कर रहे हैं। आस्था के केंद्र मां शिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त और अविरल बनाना है उनका मुख्य उद्देश्य, ताकि आगामी सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालु शुद्ध जल से स्नान कर सके। भोपाल के रविंद्र भवन में आज लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रदेश से आए करीब 2000 मीसाबंदियों और उनके परिवारों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले 3 वयोवृद्ध सेनानियों का विशेष सम्मान करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की अंतिम अंतरकुंजी यानी आंसर की को चुनौती देने वाली विंडो खोल दी है। उम्मीदवार 28 तारीख तक www.neet.nta.in पर प्रति प्रश्न 200 रुपए का शुल्क देकर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। साथ ही पुनर्परीक्षा में शामिल छात्र शुल्क वापसी के लिए 30 तारीख तक बैंक विवरण अपडेट कर सकते हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार का संकल्प किसानों की आमदनी बढ़ाना है, जिसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने के लिए हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल को अपनाना होगा। श्री चौहान ने कहा कि
3: आपसे निवेदन करूंगा इंटीग्रेटेड फार्मिंग की। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब है एक एक चीज नहीं लगाए मेरे भाई। हमारे यहाँ कहते हैं 4 फुट, मतलब खेत में 4 फुट पे 4 चीज लगाओ, एक फसल मत लगाओ। अपन तुझे धान तो धान ही धान, धान और गेहूं, धान और गेहूं, धान और गेहूं। उससे क्या हुआ कि पहले अपन दलहन बाकी चीज लगाते थे तो अपने आप नाइट्रोजन फिक्स हो जाता था धरती में, बदल बदल के लगाते थे ना, तो धान गेहूं का विरोध ही नहीं, लेकिन लगातार एक ही चक्र चलेगा तो धरती खराब होगी। एक करें अपन इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब ये भी है, फल भी लगाएं, सब्जी भी लगाएं, दाल भी लगाएं। अब गन्ना के बीच में आकर मूंगफली लगा रहे हैं, आगाम यहाँ पे शुरू हुआ अच्छा, इंटरक्रॉपिंग भी करें और वही पशुपालन भी हो। जिनकी रुचि है वो मछली पालन करें, जिनकी रुचि हो उनसे करें, मधुमक्खी पालन हो सकता है, कृषि बैंक की या एग्रीबेस्ड फॉरेस्ट एग्रीबेस्ड एग्रीकल्चर हो सकती है। यहाँ आप देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल बना, उसको जरूर देखना आप। 4-5 चीज करें मेरे भाई, हमारे यहाँ कहते हैं 4 फुट।
0: प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कल प्रदेश के कलेक्टर्स को शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिकरण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सुशासन के लिए सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने और हर विद्यार्थी की आभार आईडी बनाने को कहा। बैठक में शिशु मातृ मृत्यु दर को कम करने, सभी जिलों में पशु आश्रय स्थल विकसित करने और पीएनजी कनेक्शन के कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी के बदरवास में आयोजित युवा संगम कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की 8 कंपनियों ने भाग लिया।

इस मेले में 159 आकांक्षी युवाओं का प्रारंभिक चयन कर उन्हें मौके पर ही ऑफर लेटर प्रदान किए गए। खंडवा के शासकीय आईटीआई में 2 जुलाई को रोजगार स्वरोजगार और अप्रेंटिस मेले के विभिन्न निजी कंपनियां करीब 200 पदों पर भर्ती करेगी। इसमें 18 से 35 वर्ष आयु के 5वीं से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण युवा भाग ले सकेंगे। आगरमालवा में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित 4 दिवसीय विकासखंड स्तरीय शिविरों में वयोश्री योजना के 99 वरिष्ठजनों और एडिप योजना के 63 दिव्यांगजनों को चिन्हांकित किया गया है। अशोकनगर में खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर योजना के तहत एथलेटिक्स कोच की नियुक्ति की गई है। इसके अंतर्गत विभिन्न विधाओं में रुचि रखने वाले और आर्मी व पुलिस भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। कटनी जिले में स्कूल चले हम अभियान के तहत शाला प्रारंभ उत्सव के दूसरे चरण में शासकीय स्कूल दोबारा खुल गए हैं। इस अवसर पर जिले के विभिन्न विभागों के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के 100 से अधिक अधिकारी ने स्कूल में प्रेरक बनकर बच्चों का मार्गदर्शन दिया। झाबुआ कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष एसएन मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक कल संपन्न हुई। बैठक में जनता की सुविधा के लिए भौगोलिक परिस्थितियों प्राकृतिक सीमाओं आदि पर चर्चा की गई। डिंडोरी जिले के महदवानी में जन अभियान परिषद द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत दंदना नदी तट पर स्वच्छता श्रमदान किया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। प्रस्तुत है संगीत प्रभा।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया।
3: मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर?
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
3: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
4: आरबीआई कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: श्रोताओं, आज है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये दिवस 1989 से 26 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये तारीख लिन ज़ेक्यू के ह्यूमन ग्वांगडोंग में अफीम व्यापार को समाप्त करने की याद में रखी गई है, जो चीन में पहले अफीम युद्ध से ठीक पहले 25 जून 1839 को समाप्त हुआ था। 26 जून 1987 को वियना में आयोजित नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दो महत्वपूर्ण ग्रंथों ड्रग अबाउट कंट्रोल में भविष्य की गतिविधियों की व्यापक बहुविषयक रूपरेखा और नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की घोषणा को अपनाया गया था। 17 से 26 जून 1987 के दौरान सम्मेलन ने सिफारिशें की कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ लड़ाई के महत्व को चिन्हित करने के लिए एक वार्षिक दिवस मनाया जाना चाहिए। 17 जून और 26 जून दोनों तिथियों का सुझाव दिया गया था और बाद की बैठकों में 26 जून को चुना गया। इसे अक्सर एंटी ड्रग प्रचारकों द्वारा 6/26 के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस दिन को विभिन्न देशों के लोग एक साथ मनाते हैं। जैसे जैसे नशीली दवाओं का उपयोग बढ़ता है, ये दिन और अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी विश्व

ड्रग्स दिवस 2026 की आधिकारिक वैश्विक थीम द एविडेंस इन क्लियर इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन या साक्ष्य स्पष्ट है रोकथाम में निवेश करें हैं। वहीं भारत सरकार के सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय द्वारा से इस अवसर पर आयोजित किए जा रहे नशा मुक्त भारत सप्ताह 17-26 जून 2026 के लिए विशेष राष्ट्रीय थीम नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान रखी गई है। वैश्विक थीम का उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय द्वारा तय इस थीम का मुख्य उद्देश्य कहा जाए तो नशीली दवाओं की रोकथाम के प्रभावी और वैज्ञानिक तरीकों पर निवेश बढ़ाना है। भारतीय अभियान की जो थीम है भारत में केंद्रित अभियान नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान के तहत देश भर में डिजिटल नवाचारों और जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आइए इसी बात पर हम सुनते हैं शराबी फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में।

इस गीत के साथ ही संगीत प्रभा का ये अंक संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। 7:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में अपना अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: हेते रेडियो नेटवर्क आकाशवाणी को इस समय आप सुन रखे हैं और आज मैं हूं सरबजीत कौर के साथ नवीन सक्सेना प्रोग्राम आज सवेरे।
1: Naveen, a very warm welcome to you and to all our lovely listeners tuned to Akashvani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashvani Network. Listeners, today is 26th of June and yes, as every day, the next 30 minutes are going to be packed with national and international news, Metro City updates and of course, historical information, some special personalities to see and understand what makes 26th of June so memorable in the pages of history.
0: सुबह जब इतनी खूबसूरत हो तो मन करता है कि बस ढेर सारी बातें होती चली जाएं और ऐसी बातें जो दिन भर के लिए आपको तैयार कर दें। और सरबजीत ने कहा कि देश विदेश की खबरें होंगी, लेखा जोखा होगा आपके शहर का, मौसम की बातें होंगी, खेलों की दुनिया की बातें होंगी, तो इन तमाम खबरों को एक पोटली में बांधकर अगले आधे घंटे के लिए हम आपके साथ हैं। रेडियो सेट को थोड़ा सा तेज कर दीजिए क्योंकि हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम आपकी नॉलेज थोड़ी सी और बढ़ा देंगे। डाल लेते हैं नजर अब तक की खास खबरों पर कि क्या कुछ हो रहा है देश विदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रखी है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रखी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: International Monetary Fund, IMF, has said that India continues to be a major driver of global economic growth despite the economic impact of the Iran conflict and higher energy prices. Addressing a regular IMF press briefing, Julia Kozak, director of IMF's communications department, said India's economy has remained resilient despite external headwinds supported by robust domestic demand. The IMF said it continues to project India's economy to grow by 6.5% in fiscal year 2026-27, maintaining the upward revision made in April. She said the forecast reflected strong momentum carried over from last year and the reduction in US tariff rates, which helped cushion the impact of the global energy shock. Kozak said India's economy had continued to outperform expectations during the first quarter of the calendar year.
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पहली प्राथमिकी दर्ज की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिशों के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत के आधार पर श्री राम जन्मभूमि पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया। इस प्राथमिकी में अपराध संख्या 90/2026 में

0: अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम भी शामिल हैं।
1: The government has removed all sectoral restrictions on the supply of non-domestic packed LPG and restored supplies to pre-West Asia crisis levels, providing relief to industrial and commercial consumers. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said bulk LPG supplies suspended during the West Asia crisis have been restored to 50% of pre-crisis consumption levels following an improvement in the supply situation. The government has also reduced the diversion of C3-C4 streams to LPG production, allowing more supplies for petrochemical and downstream industries while maintaining domestic LPG production at no less than 40,000 metric tons per day. The ministry said oil marketing companies will continue maintaining data on commercial and industrial LPG consumers to improve supply planning.
0: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य, न्याय और नेकी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।
1: Venezuela's National Assembly President Jorge Rodriguez has announced that the death toll from two powerful earthquakes has risen to 188, with 1,520 others injured and 200 still trapped. Mr. Rodriguez stated that at least 2,927 families lost their homes after powerful back-to-back 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes struck around 160 kilometers west of the capital, Caracas. The second earthquake was the strongest to hit Venezuela since 1900. The coastal region of La Guaira, north of the capital, Caracas, suffered the heaviest damage and casualties. Meanwhile, Venezuela's acting president, Delcy Rodríguez, has declared a state of emergency. Addressing the nation, Ms. Rodríguez announced the suspension of classes and non-essential activities until further notice.
0: और पलटते हैं एक और पन्ना और बात खेलों की। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। कल इंग्लैंड के मैनचेस्टर में जो मैच हुआ, उसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए और जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। शेफाली वर्मा ने 53 रन की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत का अगला मुकाबला रविवार को ऑस्ट्रेलिया से होगा। और सरजीत, अब पूरा विश्व इस समय फुटबॉल के नशे में डूबा हुआ है, तो बस फुटबॉल की ताजा तरीन जानकारी के साथ मुकेश।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप में आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट में जगह बना ली है। फिलाडेल्फिया में ग्रुप ई के मैच में आइवरी कोस्ट के निकोलस पेपे ने 2 गोल दागे। इस जीत के साथ आइवरी कोस्ट के 6 अंक हो गए हैं। एक अन्य मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। अमरीका के न्यू जर्सी में हुए इस मैच में जीत हासिल कर इक्वाडोर ने अगले राउंड में पहुंचने की संभावनाएं बरकरार रखी हैं। इससे पहले मॉन्टेरी में

0: an illegal network involved in procuring and stockpiling prescription pain relief and sedative tablets for smuggling to foreign countries. The police seized 55,280 tablets during the operation and remanded the accused in judicial custody. Police said the accused were couriering the tablets from Delhi to Chennai, from where they were prepared for shipment abroad. And Naveen, what's the update from Delhi?
1: सरबजीत, बच्चों के भविष्य की नींव विद्यालय यानी स्कूल से रखी जाती है, और स्कूल अगर आधुनिक होंगे, सुसज्जित होंगे, तो बस फिर पढ़ने में और भी मजा आ जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राजधानी के 75 सीएम श्री स्कूलों को आधुनिक और छात्र केंद्रित सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा, और इसके लिए वित्त समिति ईएफसी ने लगभग 265 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सुनते हैं सकलेन की रिपोर्ट।
2: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस पहल के अंतर्गत स्कूलों में आधुनिक प्रवेश द्वार, स्मार्ट आधारभूत ढांचा, पेयजल, स्वच्छता सुविधाएं और खेल मैदानों का विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी निगरानी, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और कंप्यूटर लैब तथा मल्टीपर्पज हॉल का उन्नयन भी किया जाएगा। साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रैंप, टेक्सटाइल पाथ और अन्य दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी, ताकि सभी विद्यार्थियों को समान अवसर और बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य केवल विद्यालयों भवनों की मरम्मत कराना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को सुरक्षित, स्वच्छ, समावेशी और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना है। परियोजना के सभी कार्य अगले वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सकलेन अख्तर।
1: एनडीएमसी ने कल राष्ट्रीय राजधानी में गोल्फ लिंक कॉलोनी को अनुपम कॉलोनी घोषित कर दिया है। मीडिया से बातचीत में एनडीएमसी के अध्यक्ष केशव चंद्र ने कहा कि यह एनडीएमसी की 9वीं अनुपम कॉलोनी है।
3: ये नवी कॉलोनी है जो हमें अनुपम कॉलोनी में की उपाधि देने में हमें अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है। नवी कॉलोनी में पहली कॉलोनी जिसने अपना काम सामने रख दिया है कि और किसी को कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। जो कंपोस्ट है वहाँ पे ऑलरेडी बन रहा है और यहाँ का एक तिनका भी बाहर नहीं जाता है। यहाँ पे इतना भी कूड़ा निकलता है वो या तो कंपोस्ट होता है या फिर उसको सेग्रीगेट करके ये जो सामने वाले बिन देख रहे हैं इन सबों में जाता है, जिसको फिर से रिसाइकिल किया जाता है।
1: और सरबजीत, ये उपलब्धि परिषद और स्थानीय निवासियों के सहयोग से हासिल की गई है।
0: जी बिल्कुल।
1: वैसे बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, बहुत सारी सेंस हमारे अंदर होती है, लेकिन सरबजीत एक शब्द है जिसे कहते हैं सिविक सेंस, ये बहुत जरूरी है।
0: एंड नवीन, इट वुड बी यू नो इम्पोर्टेंट टू मेंशन हियर दैट ओनली गवर्नमेंट पॉलिसीज और रेगुलेशंस कैन नॉट मेक द डिजायर्ड चेंज इन द सोसाइटी। वी एज सिटीजंस हैव टू डू आवर बिट, वी हैव टू कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली।
1: बिल्कुल, सरकार आपका हाथ पकड़ के आपसे काम नहीं करवा सकती, सरकार सिर्फ बता सकती है, लेकिन आपकी सिविक सेंस, आपने अब तक जो पढ़ा उसके अनुसार काम कीजिए, देखिए आपका शहर भी स्वच्छ हो जाएगा ना।
0: Absolutely, this is what is teamwork all about.
1: Yes, अब चलते हैं बेंगलुरु की ओर।
0: In a major boost to the nation's airborne surveillance and network-centric warfare capabilities, the indigenous Netra Airborne Early Warning and Control System, AEWNC, developed by DRDO, received its final operational clearance in Bengaluru yesterday. Air Marshal Avdesh Kumar Bharati, former Chief of the Air Staff, Chief Marshal R.K.S. Bhaduria, the Director General of Aeronautics Cluster of DRDO, Dr. K. Rajalakshmi Menon, Center for Airborne Systems, outstanding scientist and director P. Santhya, and former chairman of DRDO Dr. S. Christopher attended the grand ceremony. Speaking on the occasion, Air Marshal Bharati emphasized on the importance of Netra AEWCs during the Balakot airstrikes and Operation Sindoor. The system provided the Air Force enhanced airborne surveillance, advanced situational awareness and battle management capabilities. Karnataka Chief Minister D.K. Sivakumar inaugurated the 33 spillway gates of the Tungabhadra Dam in Koppal district of the state yesterday. Addressing the gathering on this occasion, Sivakumar said that it is a historic event for South India, benefiting the farmers of three states of Karnataka, Andhra and Telangana. He announced that the chief ministers of three states have taken a historic decision on desilting of the dam bed and building the Neyveli parallel reservoir, which will help save 33 TMC of water in the dam. And Naveen, what's the update from Mumbai today?
1: मुंबई में पालघर जिले में 28 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को टीका लगाना।

है। जिले में इस अभियान के लिए टीकाकरण बूथ स्थापित किए गए हैं और जिन बच्चों का टीकाकरण उस दिन नहीं हो पाएगा उन्हें 28 से 30 जून तक घर घर जाकर टीकाकरण अभियान के माध्यम से टीका लगाया जाएगा। बात हैदराबाद की।

0: enumeration drive involves booth-level officers distributing pre-printed forms to almost 35,000 polling booths. District collectors have entered active field mode to enter the month-long drive. In Hyderabad, District Election Officer and GHMC Commissioner R.V. Karnan inspected the process in Jubilee Hills, noting that over 25 lakh electors remain unmapped out of around 47 lakh voters.
1: बात कोलकाता की. मौसम विभाग ने कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के जिलों में छिटपुट बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने का पूर्वानुमान लगाया है. उत्तरी बंगाल के जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है, जिससे नदियों का जल स्तर बढ़ सकता है. उत्तर बंगाल के उप हिमालय जिलों में बारिश बढ़ने की संभावना है. मौसम विभाग ने कोलकाता उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर, बांकुरा, पुरुलिया, झाड़ग्राम, हावड़ा और हुगली जिलों में बिजली गिरने की आशंका को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. और सरबजीत, अब बिना देर के बात करते हैं उस चीज की जो आज आपके दिन भर का प्लान तय करेगी, यानी मौसम का हाल.
0: जी बिल्कुल, लेट्स बिगिन विद द अपडेट फ्रॉम चेन्नई. चेन्नई इज लाइकली टू विटनेस अ थंडरस्टॉर्म अकंपनीड विद लाइटनिंग. द टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू रेंज बिटवीन 29 डिग्रीज एंड द मैक्सिमम मे गो अप टू 39 डिग्री सेल्सियस. बेंगलुरु विल एक्सपीरियंस अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन. द मिनिमम टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू बी 20 डिग्रीज while the maximum may go up to 30 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see thunderstorm accompanied with lightning. Temperatures may hover between 24 degrees to 33 degrees Celsius.
1: वापस लौट कर आते हैं दिल्ली की ओर, तो दिल्ली वालों, आज अपने साथ छाता रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मौसम कह रहा है कि आज मैं बदलने वाला हूं. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चलेंगी, गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी. और सरबजीत, जो तापमान है वो 40 डिग्री के आसपास रहेगा अधिकतम और न्यूनतम 26 डिग्री. ज्यादा डिफरेंस है तो गर्मी सर्दी दोनों का एहसास होगा.
0: बिल्कुल.
1: बात माया नगरी मुंबई की. मुंबईकर्स, आपके लिए मॉनसून में रफ्तार में तेजी बनी हुई है. आज मुंबई और उसके उपनगरों में मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. तटीय इलाकों से थोड़ी दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि लहरें तेज होने की संभावना है. तापमान 33 और 28 के बीच रहेगा. बात कोलकाता यानी सिटी ऑफ जॉय, जो अगर आप हमें वहां सुन रहे हैं तो मॉनसून की एंट्री हो चुकी है. कोलकाता में आज आसमान पर बादल छाए रहेंगे, रुक रुक कर बौछारें पड़ने की संभावना है. उमस थोड़ा परेशान करेगी और मौसम खुशनुमा बनाए रखेंगे. यानी कुल मिलाकर तीनों बड़े महानगरों में आज पानी की बूंदें मुस्कुराने वाली हैं. तो ये थे आपके शहर का मौसम. जीत हर दिन अपने आप में खास होता है, तो आज की तारीख क्या कहती है?
0: जी, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट यू नो द इम्पोर्टेंट डेज विच मार्क्ड इन हिस्ट्री एंड मेक 26th ऑफ जून सो मेमोरेबल, सो इम्पोर्टेंट. वेल, ग्लोबल ड्रग यूज एंड द नंबर ऑफ ड्रग्स ऑन द मार्केट हैव बीन इंक्रीजिंगली इन द पास्ट डेकेड्स. द सेंचुरी लॉन्ग डोमिनेंस ऑफ हेरोइन इन इलिसिट ग्लोबल ओपियम मार्केट इज इंक्रीजिंगली बीइंग चैलेंज्ड बाय चेंजेस इन द इलीगल सप्लाई ऑफ ओपियड्स, एंड दैट्स व्हाई टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल डे against drug abuse. Production, seizures and use of cocaine continue to rise, while low costs of manufacture and reduced risk of detection of synthetic drugs are contributing to the increase on illicit drug markets. Drug trafficking groups are seeking out technological innovation to target new audience and ensure that drugs increasingly reach their users and help boost their billion-dollar businesses. So more important, you know, that we ensure that artificial technology and the latest tools of technology are not used in this heinous crime. The next day that we are observing today is the International Day in Support of Victims of Torture. On 12th of December in the year 1997, the UN General Assembly proclaimed this day with a view to the total eradication of torture and the effective functioning of the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
1: तो ये थी वो घटना या ये थी वो बातें जो बता रही थी कि आज का दिन क्यों खास है. लेकिन हर दिन अपने आप में और भी खास होते हैं, क्योंकि इतिहास जुड़ा होता है. तो सरबजीत, किस साल में हमें लिए चल रही हैं?

0: 1945, 26th of June, delegates from 50 nations signed the United Nations Charter, establishing the world body as a means of saving succeeding generations from the scourge of war.
1: बात 1954 की भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एनलाई ने नई दिल्ली में पड़ोसी प्रथम और पंचशील सिद्धांतों के पालन की साझा प्रतिज्ञा ली थी.
0: 1974, on this day, a pack of Wrigley's Juicy Fruit Chewing Gum became the first grocery item scanned with a Universal Product Code or UPC at a supermarket in Troy, Ohio.
1: 1975 वो आज का दिन था जब आपातकाल की क्रूर शुरुआत हुई थी. 25 जून की आधी रात को आपातकाल की घोषणा के बाद 26 जून 1975 यानी आज के दिन देश में नागरिक अधिकार पूरी तरह से निलंबित कर दिए गए थे.
0: 1979, on this day, after almost 20 years of professional fights, heavyweight champion Muhammad Ali announced his retirement from boxing.
1: 1992, आज के दिन भारत ने अपनी सीमा का विवादित 3 बीघा गलियारा क्षेत्र 999 वर्षों के पट्टे पर बांग्लादेश को सौंप दिया था, जिससे दोनों देशों के सीमा संपर्क में सुधार हुआ था. आज के दिन 1997 में हैरी पॉटर श्रृंखला की भी शुरुआत हुई थी. पहला उपन्यास हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन आज के दिन ब्रिटेन में प्रकाशित हुआ था, जिसने साहित्य के इतिहास के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. और अब बात उन व्यक्तियों की जो जुड़े हुए हैं आज के दिन से.
0: नवीन, वील बिगिन दिस सेगमेंट विद पेइंग ट्रिब्यूट्स टू द ग्रेट नारायण श्रीपद राजहंस, आल्सो पॉपुलरली नोन एज बाल गंधर्व. He was a famous Marathi singer and stage actor. He was known for his roles as female characters in Marathi plays, as women were not allowed to act on stage during his time.
1: Bal Gandharv ek aise kalakar jisne na sirf mahila charitra ko nibhaya stage pe balki bahut hi khoobsurat acting bhi ki. Aaiye sunte hain unhi ki swar mein ek ye bhajan.

0: Yes, listeners, today is the birth anniversary of the great Bankim Chandra Chattopadhyay, the Bengali novelist, poet, essayist and journalist.
1: Bankim Chandra Chattopadhyay, Bankim Chandra Chatterjee, janm 26 June 1838 ko Bengal ke Kandhalpada gaon mein hua tha. Padhai puri karne ke baad British sarkar mein deputy collector ke roop mein apni sevaen di. उस समय भारत की दुर्दशा को लेकर उनके मन में एक गहरी पीड़ा थी और सरबजीत अपनी इसी चीज को उन्होंने अपनी कलम की ताकत बनाया. आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और देवी चौधरानी, इस तरह के कालजी उपन्यासों की रचना की. उनकी सबसे बड़ी देन है अमर गीत वंदे मातरम. ये गीत उनके उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा था और वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है.
0: In fact, Naveen, Bankim Chandra is also known as the Sahitya Samrat or the Emperor of Literature in Bengali.

बंकिम चंद्र 8 अप्रैल 1894 को हमसे विदा हो गए, लेकिन उनके विचार और वंदे मातरम के रूप में उनका अमर संदेश हमेशा हमारे दिलों में धड़कता रहेगा। और इस खूबसूरत गीत को जो आप सुन रहे हैं, ये फिल्म आनंद मठ का हिस्सा है।

आज जयंती है कोल्हापुर रियासत के महान समाज सुधारक और राजा जिन्होंने भारत में सबसे पहले दलित और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति की शुरुआत की थी। नाम छत्र

0: छत्रपति शाहू जी महाराज। और आज ही तापमान के केल्विन पैमाने यानी जिसे हम केल्विन स्केल कहते हैं उसकी खोज करने वाले महान ब्रिटिश गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी विलियम थॉमसन का भी जन्म हुआ था।
1: Listeners, we are also remembering today Major Rama Raghoba Rane, the Indian military officer who was the first living recipient of India's highest military decoration, the Paramveer Chakra, which he was awarded along with Karam Singh. Born in 1980, Major Rane served in the British Indian Army during the Second World War, and he remained in the military during the post-war period and was commissioned in the Bombay Sappers Regiment of the Indian Army Corps of Engineers on 15 December 1947. In April 1948, during the Indo-Pakistani War, Rane played a key role in the capture of Rajouri by Indian forces by being instrumental in clearing several roadblocks and minefields.
0: सरबजीत, सब मानते हैं और जानते भी हैं कि भारत की संस्कृति ऋषि और कृषि प्रधान रही है। इस देश का मानव इन दो तत्वों से ही बना है। आज स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन बिहार के मुजफ्फरपुर में स्वामी जी अपना नश्वर शरीर त्याग कर महाप्रयाण कर गए थे। स्वामी सहजानंद के रूप में हम एक ऐसे युग पुरुष सन्यासी को आज याद कर रखे हैं जिसने अपना जीवन देश की आजादी और किसानों की भलाई के लिए होम कर दिया था। स्वामी जी ने नारा दिया था जो किसान आंदोलन के दौरान बहुत चर्चित हुआ था। उन्होंने कहा था कि जो अन्न वस्त्र उपजाएगा अब सो कानून बनाएगा, ये भारत वर्ष उसी का है, अब शासन भी वही चलाएगा। परमार्थ चिंतन के परंपरागत मूल्यों से एकाकार होते हुए उन्होंने उस समाज में भगवान का दर्शन किया जिसे हम किसान कहते हैं। किसानों के भगवान कहे जाने वाले युग दृष्टा जननायक दंडी स्वामी सहजानंद सरस्वती आजीवन त्याग और संघर्ष की प्रतिमूर्ति बने रहे।
1: Listeners, today is the death anniversary of Carl Landsteiner, an Australian-American biologist, physician and immunologist. Carl distinguished the main blood groups in the year 1901, having developed the modern system of classification of blood groups. In the year 1930, Carl received the Nobel Prize in Physiology and he was posthumously awarded the Lasker Award in 1946 and has often been described as the father of transfusion medicine.
0: आज फिल्म इंडस्ट्रीज के एक ऐसे भीष्म पितामह को याद करने का दिन है जिन्होंने पर्दे पर भव्यता और पारिवारिक रिश्तों को बड़े खूबसूरत ढंग से पुराया। आज मशहूर निर्माता और धर्मा प्रोडक्शन के संस्थापक यश जौहर की भी पुण्यतिथि है।
1: Yes, absolutely. You know, the great films दोस्ताना, दुनिया, मुकद्दर का फैसला and कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, you know, these are the great names which come to my mind when you talk of यश जौहर।
0: Yes, सरबजीत, जब भी भारतीय सिनेमा में बड़े पैमाने की रंग बिरंगी और दिल को छू जाने वाली फिल्मों की बात होगी, यश जौहर का नाम सबसे ऊपर आएगा। और आपको याद है एक फिल्म आप भूल गए, अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर अग्निपथ, उसे भी उन्होंने ही प्रोड्यूस किया था।
1: एंड नवीन, यू नो, यश जौहर इज सो फॉन्डली एसोसिएटेड विद लैविश सेट्स, एक्जॉटिक लोकेशंस एंड एज यू राइटली सेड, एम्फेसिस ऑन इंडियन ट्रेडिशनल एंड फैमिली वैल्यूज।
0: 26 जून 2004 यानी आज ही के दिन वो हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन अपनी सदाबहार फिल्मों और गानों के जरिए आज भी सिने प्रेमियों के दिल में बसते रहेंगे। तो यश जौहर साहब को याद करते हुए उनकी एक फिल्म है कल होना हो, द ब्यूटीफुल टाइटल ट्रैक के साथ हम आपको छोड़ते हैं।

0: और अब चलते चलते मैं नवीन और सरबजीत आपको आज के खूबसूरत विचार के साथ छोड़े जा रहे हैं। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत कीजिए, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं।
1: वेरी वेल सेड नवीन, एंड विद दीज ग्रेट वर्ड्स लिसनर्स वी लीव यू इन द प्रोग्राम आज सवेरे, बट यू स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, आवर हिंदी न्यूज बुलेटिन followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thank you for tuning in. Have a superb day.
0: Namaskar. Namaskar.

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिमी एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राष्ट्रीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय

0: मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखें ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
6: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों के लिए नीट UG की पुनर्परीक्षा के उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रुपये शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद कर

0: करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
1: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
2: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना 1,000 रुपए महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई एनआरसी की जरूरत, लोकसत्ता ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट

0: India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यासर।
2: मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं और हम हाजिर हैं आपकी जिंदगी में गीतों और बातों से नई ताजगी, नया जोश भरने के लिए। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम का आगाज एक कव्वाली के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म बजरंगी भाईजान से। आवाज है अदनान सामी की।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: श्रोताओं, कहते हैं हार मान लेने से ही मनुष्य की हार होती है। जो हार नहीं मानता, निरंतर प्रयासरत रहता है, वो कभी न कभी अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाता है। और जानते हैं मन भी कब हार मान लेता है? जी हाँ, जब वो स्वस्थ तन में निवास नहीं करता। तो चलिए आज ये जानने की कोशिश करते हैं कि शरीर को इतना स्वस्थ कैसे रखा जाए कि मन हार ना माने।

और हम ऊर्जावान बने रहें। पर उससे पहले सुनते हैं जिंदगी का यही फलसफा मायूस से निकालने के लिए, थोड़ा सा अपने आप को खुश करने के लिए ये गीत जिसे हमने लिया है मासूम से। आवाज़ है आरती मुखर्जी की।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
0: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
2: श्रोताओं, जानते हैं गतिशीलता और निवारक स्वास्थ्य एक सुखी लंबी बीमारी मुक्त जिंदगी जीने की सबसे बड़ी कुंजी है। गतिशीलता यानी सक्रियता, जिसे हम अपने शरीर में हो रहे बदलावों को भी जल्दी महसूस कर सकें और समय रहते अपने शरीर के छोटे छोटे संकेतों को समझकर निवारक अपना कर और किसी भी बड़ी बीमारी से आसानी से बच सकें। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में इजाजत फिल्म का गीत।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: श्रोताओं, गतिशीलता बनी रहने का मतलब है कि हम चलते फिरते रहें, बुढ़ापे तक भी अपने छोटे छोटे कामों के लिए किसी पर निर्भर ना हों। ये शारीरिक गतिविधियाँ इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि ये हमारे लिए व्यायाम की तरह हैं, जिनसे हमारी हड्डियों का लचीलापन बना रहता है और हमें जकड़न या दर्द बढ़ती उम्र में भी उतना नहीं महसूस हो पाता। हालांकि आराम भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन याद रखें अति किसी की ना हो, कोशिश करें कि संतुलन बना रहे और इसके लिए गीतों का साथ बहुत ज़रूरी है। तो आइए सुनते हैं अगला गीत, जिसे हमने लिया है अमानुष फिल्म से, आवाज़ है किशोर कुमार की।

श्रोता, दूसरी तरफ निवारक उपायों की बात करें तो इनसे हम हृदय रोग, मधुमेह और ऑस्ट्रियो आर्थराइटिस जैसी बीमारियों से बचे रहते हैं। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में लेकिन फिल्म का गीत।

श्रोताओं, इसीलिए शरीर में गतिशीलता बनाए रखने के लिए लगातार बैठने, खड़े रहने या लेटने से बचें। हर घंटे 2-3 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग कर लें या चल लें। अपनी दिनचर्या में सप्ताह में 2 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, जैसे हल्के वजन उठाना, और संतुलन बनाए रखने के लिए योग को ज़रूर शामिल करें। आइए अब सुनते हैं लिबास फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, वहीं जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए हम अपने हिसाब से वॉकिंग, साइकिलिंग या स्विमिंग कर सकते हैं और फिर अपनी ऊर्जा, एनर्जी का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं, क्योंकि शरीर खुश तो मन खुश। और हाँ, नृत्य को भी शामिल कर सकते हैं। तो चलिए इसका भी आनंद लेते हैं लम्हे फिल्म के गीत के ज़रिए, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, स्वस्थ व्यक्ति की पहचान हम इस तरह ही कर सकते हैं कि उसका शरीर रोग मुक्त हो, वो बिना थके अपने सामान्य काम पूरी सक्रियता के साथ कर रहा हो, आसानी से हर रोज़ कुछ पैदल भी चल सकता हो या 10 से 12 मील चलना उसके लिए आसान हो, और हाँ, अपना शरीर जो है वो स्वस्थ होने के साथ साथ आसानी से भोजन को पचा रहा हो। अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी यानी चाबी भी यही है। शारीरिक रूप से सक्रिय रहना, स्वस्थ और संतुलित आहार खाना, पर्याप्त नींद लेना, जो हमारे दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब आइए सुनते हैं सितारा फिल्म का गीत लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह के युगल स्वर में।

श्रोताओं, जिंदगी एक सफर है जिसे सुहाना बनाने के लिए हमें सबके साथ अपना भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो आइए अब सुनते हैं वो गीत जिससे हमारा मन भी प्रसन्न हो जाए और आनंद से झूम उठे। इस गीत को हमने लिया है फिल्म अंदाज़ से किशोर कुमार की आवाज में।

फिल्म संगीत का ये दिलकश कारवां इस गीत पर ही पड़ाव डालता है। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। 9:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में अपना अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: कार्यक्रम का अगला गीत अभिजीत और साथियों की आवाज में, शब्द रचना है समीर की और संगीत निर्देशन है आनंद मिलिंद का। फिल्म है बागी।
1: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। प्रस्तुत है संग्रहालय से, इसके अंतर्गत सुनते हैं नाटक जेब कतरा। लेखक हैं सआदत हसन, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल।

0: की दवा करो, मैं कहाँ ऊपर आ रहा हूँ।
1: क्यों धक्के देते हो? अरे कुछ इस औरत का तो लिहाज करो। देखो बेचारी पिस गई है।
2: अरे हाँ यार भैया, थोड़ी सी जगह बना दो मैं।
3: अरे तो तुम ही हट जाओ ना, थोड़ी जगह बना दो, बेचारी का बटुआ गिर गया है।
4: ठहरिए मैं उठा देता हूँ, ये लीजिए।
5: शुक्रिया।
6: अरे अब ये क्या हो रहा है, रास्ता साफ क्यों नहीं होता?
0: पता नहीं, कहते हैं आगे छकड़ा उलट गया है।
1: समझ में नहीं आता, इतने छोटे बाजारों में छकड़े आखिर ये चलने क्यों देते हैं?
2: अरे भाई साहब, या तो बाजार बड़े और चौड़े किए जाएं, या फिर इन छकड़ों का साइज है ना जो, इसको छोटा किया जाए।
1: बाजार चौड़े किए जाएं या छकड़े छोटे, हमारी गाड़ी तो ऐसे ही चलती रहेगी।
6: पर दाद इस बात की दो कि किस सफाई से उस लौंडिया का बटुआ नीचे गिराया
1: और बंदे ने किस फुर्ती से उसका पेट चाक किया।
6: भाई क्या कहने हैं तुम्हारे, बस अब जरा इन सब्जों की बहार दिखला दो यार।
1: बड़े बेसब्रे हो, और अगर ना हुए तो?
6: अरे तो तुम काशी जेब कतरे नहीं, किसी दफ्तर के मुंशी हो।
1: अमा ऐसा कभी हो सकता है कि काशी कोई आदमी ताके और उसके पास से माल ना निकले? लो देखो, ज्यादा नहीं है, 200 के नोट होंगे। लो तुम गिनो। ये कागज क्या है?
6: अरे खातवात होगा। अरे नहीं, लिफाफा है, अब वो तुम खोलो। लेकिन मैं तो कहता हूँ 5 पैसे का स्टैंप लगाकर डाक में डाल दो, क्या याद करेगी?
1: खोल के पढ़ लो तो क्या हर्ज है?
6: अरे ये नोट तुम्हारी जेब में गीले हुए या बटुए से ही निकले हैं? भाई मुफलिसी में आटा गीला तो सुना था, नोटों का गीला होना नहीं सुना था। अरे पूरे 200 हैं। मैंने कहा तुमने पहले से तो नहीं गिन लिए थे? अरे खत तो तुम बड़ी दिलचस्पी से पढ़ रहे हो। हाँ तो क्या लिखती है श्रीमती जी, इश्क मोहब्बत का किस्सा तो नहीं है? अरे मैं जो कहता हूँ, ये चश्मा पहनने वाली औरतें, अरे हाँ हमारी गली में एक चश्मा पहनने वाली औरत थी, शक्ल सूरत से बड़ी खामोश और सोच विचार करने वाली दिखाई देती थी। लेकिन अरे भाई कुछ हमें भी बताओ कि क्या लिखा है इस खत में।
4: गिरधारी बहुत बुरा हुआ।
6: अच्छा क्या हुआ है?
4: मैं कहता हूँ बहुत बुरा हुआ है। लो तुम खुद पढ़ लो।
6: अरे अब तुम बताओ भी यार क्या लिखा है इस खत में।
1: लाओ ये नोट भी मेरे हवाले करो, मैंने वापस करना चाहता हूँ।
6: अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या करना चाहते हो, कहीं बहक तो नहीं गए?
1: उसको इन रुपयों की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमारा काम इनके बगैर चल सकता है गिरधारी, मगर उस पर तो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा।
6: जरा खत फिर से दिखाना मुझे, कहीं गीता का कोई श्लोक तो नहीं लिख दिया उसने? भाई अजीब बहरूपियो है यार।
1: अब वो कहीं मिल जाए, कहाँ जाऊं किधर जाऊं कुछ समझ में नहीं आता। मैंने बहुत बुरा किया है गिरधारी, उसको रुपयों की सख्त जरूरत थी, मुझे सदमा हुआ है, भगवान जानता है मुझे बहुत दुख हुआ है, वो औरत बहुत दुखी है, तुम नहीं जानते वो कितनी दुखी है।
6: अच्छा
1: मैं बड़ा अत्याचारी हूँ, अब मैं क्या करूँ?
6: कुछ मत करो, ये नोट मेरे हवाले कर दो और चिमटा हाथ में लेकर

0: साधु बन जाओ।
1: नहीं गिरधारी नहीं, मैं यकायक बदल नहीं गया, मैं सिर्फ उस औरत के रुपए वापस करना चाहता हूँ, इसलिए कि वो बेहद दुखी है, मैं जाता हूँ उसकी तलाश में।
2: अरे काशी, काशी, अरे काशी।

0: मैंने एक बेबस औरत को बहुत दुख पहुंचाया है। उसको ढूंढते ढूंढते मैं थक गया। मैं बड़ा जालिम हूं, मैं राक्षस हूं।
1: अरे देखो भैया, वो औरत डूब रही है। देखो, देखो।
0: ये कौन गिरा? मैं इसे डूबने नहीं दूंगा।

0: ठीक था, मुझे मर जाना चाहिए था। जी कर भी तो मैं मरी रहती हूँ, फिर और जीने से क्या फायदा। मैं डरती हूँ।
1: किससे?
0: मैं डरती हूँ कि तुम भी उसकी तरह मेरे जीवन पर काले भूत की तरह छा जाओगे। तुम भी मेरे राज का सौदा करना शुरू कर दोगे। तुम जेब कतरना छोड़कर मेरा दिल कतरना शुरू कर दोगे। खत पढ़ने के बाद तुम क्या मुझको नहीं जानते?
1: मैं जेब कतरा जरूर हूँ, लेकिन इंसान हूँ। मुझे तुमसे पूरी पूरी हमदर्दी है, मुझे माफ कर दो। तुम बड़ी बहादुर औरत हो।
0: लेकिन इस बात को कितने आदमी जानते हैं? किसे मालूम है कि गर्ल्स स्कूल की एक टीचर एक कमजोर और ज़ईफ औरत 4 बरस से एक राक्षस को अपना खून पिला रही है। इस जुर्म की सजा मैंने पाली है। मैंने उससे मोहब्बत की और माँ बन गई। मोहब्बत मिट गई मगर उसकी थकावट बाकी है। बच्ची मर गई मगर माँ भी जिंदा है। ये 2 लाशें हैं जिनको वो अपने सीने से लगाए कुछ दिन जीना चाहती थी, लेकिन इसकी कीमत वसूली गई इसलिए कि दुनिया व्यवहार पर चलती है। यहाँ दुख मुफ्त नहीं मिलते। रोग लगाओ और उसके साथ दाम दो, ये इस दुनिया का उसूल है। औरत की एक कमजोरी 4 मंजिला मकान के मुकाबले ज्यादा नफा बख्श है। अगर किसी व्यापारी मर्द के हाथ में आ जाए तो वो इससे माह बा माह किराया वसूल करता रहता है।
1: तुम उससे डरती क्यों हो? तुमने किसी की चोरी नहीं की, तुमने डाका नहीं डाला, तुम्हें किस बात का डर है?
0: मैंने चोरी नहीं की, मैंने डाका नहीं डाला,

0: मैं डरती हूँ। तुम दूसरों की जेब काटते हो और नहीं डरते। मैं अपनी जेब कटवाती हूँ इसलिए डरती हूँ।
1: तुम मुझे कोसे जा रही हो। परमात्मा के लिए अब जाने दो। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं सब

0: बशर्ते कि
1: मैं तुम्हें अच्छा बनाऊंगी। आज ही से मैं तुम्हें सुधारने का काम शुरू कर दूंगी, मगर तुम मुझसे वादा करो कि जो कुछ मैं कहूंगी तुम मान लोगे।
0: मैं वादा करता हूँ।

0: काशी,
1: कौन
0: ये? तुम क्या कर रहे थे?
1: कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं।
0: मैं सब कुछ देख चुकी हूँ, पर मैं पूछती हूँ कि ये हरकत क्या थी?
1: मैंने क्या किया है? मैं सारा दिन इस कमरे में बैठा तुम्हारी दी हुई किताबें पढ़ता रहता हूँ। मैंने एक कदम बाहर नहीं रखा, एक महीने से मैं कहीं बाहर नहीं गया। तुम्हारे सिवा किसी आदमी की शक्ल तक मैंने नहीं देखी। ये सब किताबें जो तुमने मुझे दी थी, सब की सब मैंने पढ़ डाली हैं। अब बताओ मैं क्या करूं?
0: जो कुछ मैंने पूछा पहले उसका जवाब दो। तुम अभी अभी क्या कर रहे थे?
1: तुम देख तो चुकी हो।
0: तो ये ठीक है कि तुम?
1: हाँ ये ठीक है। मैंने अपने कोट की जेब से सिगरेट की डिबिया निकाली थी और फिर वहीं डाल दी थी। मैंने उसी तरह दो मर्तबा अपना बटुआ भी निकाला था। मगर तुम मुझे ऐसी मलामत भरी नजरों से क्यों देख रही हो? ये कोट मेरा अपना ही तो है और इसमें जो चीजें पड़ी हैं वे भी तो मेरी हैं। मैं अपनी जेबों में से अपनी ही चीजें निकाल रहा था, इसमें हर्ज क्या है?
0: काशी, काशी तुम्हारी हालत काबिले रहम है। तुम इतने बिगड़ चुके हो कि तुम्हें सुधारना बहुत ही मुश्किल काम है। मैं तो नाउम्मीद हो चली हूँ।
1: तुम कुछ गौर तो करो, यूं चुटकियों में तो ऐसे काम नहीं हो सकते। ये भी तो सोचो कि मैं कितने बरसों से जेबें काट रहा हूँ। एक महीने में तुम मेरी ये आदत कैसे दूर कर सकती हो? मैं तो कहता हूँ कि जितनी जल्दी ये आदत दूर हो जाए उतना ही अच्छा है, पर ये उंगलियां तो आहिस्ता आहिस्ता ही राह पर आएंगी।
0: तुम्हें दरअसल पराए माल पर हाथ साफ करने का चस्का पड़ा हुआ है। तुम कभी दुरुस्त नहीं हो सकते। तुमने आज तक खुद कमाकर खाया हो तो तुम्हें इन बातों का इल्म हो। तुम क्या जानो कि मेहनत मशक्कत क्या बला है? मेरी तरफ देखो, मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, 100 रुपए मुझे माहवार मिलते हैं,
1: जिनमें से 50 नहीं 70 वो आदमी वसूल कर लेता है।
0: चाहिए तो ये था कि मुझे हर तरह का आराम मयसर होता, मगर तुम देख चुके हो, तुम जानते हो कि मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे एक पल चैन नहीं मिलता। मेरी मजलूमियत की इंतहा ये है कि एक निकम्मा फाउंटेन पेन भी मैं खरीद कर नहीं ला सकती, हालांकि दूसरों के पास अच्छे अच्छे कलम देखकर रोज मेरा जी लल जाता है, मगर मजबूरी है। सीने पर पत्थर रखे मैं काम किए चली जा रही हूँ, इसलिए कि मुझे जीना है। और एक तुम हो कि अपनी उंगलियों को काबू में नहीं ला सकते। तुम्हारे पेश नजर तो फिर कोई मंजिल है, लेकिन मैं मंजिल की तलाश में भटक रही हूँ। तुम बड़े बदकिस्मत हो काशी।
1: मुझे माफ कर दो, मैं अब ऐसी हरकतें नहीं करूंगा। मैं सच्चे दिल से वादा करता हूं कि फिर ऐसी हरकत नहीं करूंगा।
0: मेरी मजलूमियत की इंतहा यह है कि एक निकम्मा फाउंटेन पेन भी मैं खरीद कर नहीं ला सकती। एक निकम्मा फाउंटेन पेन भी मैं खरीद कर नहीं ला सकती।
1: मुझे विमला के लिए कुछ करना चाहिए, एक फाउंटेन पेन देना चाहिए। मैं इतने दिनों से इसके घर रहा हूं, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। हाँ, कल विमला की सालगिरह है, मैं बाजार जाऊंगा।

0: मेरी मजलूमियत की इंतहा ये है कि एक निकम्मा फाउंटेन पेन भी मैं खरीद कर नहीं ला सकती, एक निकम्मा फाउंटेन पेन भी मैं खरीद कर नहीं ला सकती।
1: अंधा है क्या, देख के नहीं चल सकता?
2: माफ करना भाई।
0: तो कल तुमने खूब बाजारों की सैर की, सारा दिन घूमते रहे ना?
2: हाँ, सारा दिन घूमता रहा।
0: आज मौसम कितना अच्छा है, देखो आसमान का रंग मेरी चूड़ियों की तरह निखरा हुआ है।
2: हाँ, चूड़ियों का रंग आसमान की तरह निखरा हुआ है। ये चूड़ियाँ तुम्हें पसंद है?
0: हाँ, जब दुकान पर थी तो इतनी खूबसूरत नहीं थी, तुम मुझे बनाओ नहीं।
2: आज तुम्हारी

0: सालगिरह है ना?
1: है तो सही, लेकिन
0: सालगिरह अच्छी होती हैं।
1: ये तुम क्या उठपटांग बातें करते हो?
0: मैं सोचता हूँ, मैंने कई मर्तबा सोचा है कि अब दुनिया में मेरी हैसियत एक फालतू आदमी किसी हो गई है। छकड़े में अगर पांचवा पहिया लगा दिया जाए तो मेरी हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। मेरा जी चाहता है कि कुछ नहीं, तुम कितनी अच्छी हो विमला, मेरा जी चाहता है कि मैं तुम्हारी खिदमत करूं, खिदमत खिदमत खिदमत। हाँ, मेरा जी चाहता है कि मैं तुम्हें खुश करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूं।
1: काशी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई बात मुझसे छुपा रहे हो।
0: नहीं तो
1: देखो काशी, लड़ाई हो जाएगी, तुम झूठ बोल रहे हो। बोलो, सोच क्या रहे हो?
0: मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ, कबूल करोगी?
1: पहले मुझे तोहफा दिखाओ।
0: तुमने उस रोज कहा था कि मेरी मजलूमियत की ये इंतहा है कि मैं एक फाउंटेन पेन भी नहीं खरीद सकती, हालांकि दूसरों के पास अच्छे अच्छे कलम देखकर रोज मेरा जी ललचाता है। मैं कल बाजार गया तो ये कलम तुम्हारे लिए।
1: दिखाओ तो।
0: ये लो।
1: बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कलम है।
0: तुम्हें पसंद आया?
1: क्यों नहीं, लेकिन तुमने ये लिया कहाँ से? बोलो, कहाँ से लिया?
0: एक राह चलते आदमी की जेब से।
1: काशी, तुमने मुझे क्या समझ रखा है जो चोरी की चीज तुमने मुझे तोहफे के तौर पर दी है? मैंने तुमसे पहले ही नहीं कहा था कि तुम कभी दुरुस्त नहीं हो सकते? चोरी चकारी तुम्हारी रग रग में बस चुकी है। तुम बहुत जलील आदमी हो।
0: मगर
1: मैं कुछ सुनने को तैयार नहीं। क्या तुम ये समझ रहे हो कि चोरी का ये माल देखकर मैं खुश हो जाऊंगी?
0: लेकिन विमला, तुम मेरी बात तो सुन लो, मैं कसूरवार हूँ, लेकिन
1: लेकिन लेकिन क्या?
0: तुम जरा सोचो तो, यानी जो कुछ मेरे दिल में है उसकी कुछ खोज लगाओ। मैंने कलम इसलिए नहीं उठाया था कि तुम उसे लेकर खुश हो जाओगी। उस रोज जब तुमने कहा कि मेरी मजलूमियत की इंतहा है कि मैं एक निकम्मा फाउंटेन पेन भी नहीं खरीद सकती, तो यकीन मानो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं आज तक कभी नहीं रोया, मगर उस रोज मैं रोया। मैं अपने दिल का हाल किसे बयान करूं विमला? मैं जानता हूं कि मैंने गलती की है, मैंने तुम्हें फिर ना उम्मीद किया है, मगर मैं क्या करूं, राह चलते आदमी की जेब में जब मैंने कलम देखा तो अपने आप मेरी उंगलियों में हरकत पैदा हुई और कलम मेरे पास था। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है, मैं शर्मिंदा हूं।
1: तुम कभी दुरुस्त नहीं हो सकते। जेबें कतरने की आदत अब तुम्हारी तबीयत बन गई है।
0: तुम ठीक कहती हो।
1: मुझे अफसोस इस बात का है कि बावजूद पूरी कोशिश के मैं तुम्हें दुरुस्त नहीं कर सकी। तुम बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हो काशी।
0: तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूं?
1: जाओ, जो जी में आए करो, लोगों की जेब काटो, चोरी करो, डाके डालो। तुम्हें इस बात की क्या खबर है कि मैं?
0: परमात्मा के लिए तुम रो नहीं। देखो, मैं अच्छा हो जाऊंगा, मैं अच्छा बनने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं जाता हूं, अपने आप को दुरुस्त कर लूं, फिर तुम्हें अपना मुंह दिखाऊंगा। अच्छा,

0: मैं इस मामले में ज्यादा गुफ्तगु नहीं करना चाहता। बड़ी सीधी सी बात है कि मैं यकलक तुमसे कुछ रुपया लेकर तुम्हारे खत तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ।
1: मेरा राज आप मेरे ही पास भेज रहे हैं?
0: मुझे छानबीन पसंद नहीं। तुम्हें इन खतों की जरूरत है और मुझे मुझे यकलक कुछ रुपयों की। क्या तुम्हें यह सौदा कबूल है? खत हासिल करने के बाद तुम्हें किसी बात का खटका नहीं। ये बात खास तौर से काबिले गौर है।
1: मैं अच्छी तरह गौर कर चुकी हूँ पर मुझे लगता है कि इसमें भी आपकी कोई अय्यारी छिपी हुई है।
0: तुम्हारे शुबाहात बिल्कुल गलत हैं। मैं सौदा करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक, वरना।
1: कितने में आप फैसला करना चाहते हैं?
0: 500 रुपए में।
1: ये तो बहुत हो गए।
0: इससे कम में सौदा नहीं हो सकता।
1: सारे खत आपके पास इस वक्त हैं?
0: नहीं, जब सौदा पक्का हो जाएगा मैं ले आऊंगा।
1: इतने रुपयों का इंतजाम तो हो नहीं सकता, क्यों ना काशी की मदद से

0: जीभ कटवा ली जाए? ये मैं क्या सोच रही हूँ, लेकिन लेकिन और चारा भी क्या है?
1: क्यों विमला, क्या सोच रही हो?
0: मैं ये सोच रही थी कि क्या आप बोरी बंदर के स्टेशन पर मिल सकते हैं, यानी कि आप मेरा 1 और 2 बजे के अंदर इंतजार कर सकते हैं?
1: ये सब हो जाएगा, मगर सवाल ये है कि
0: आपका सौदा मुझे मंजूर है। मैं कल रुपए ले आऊंगी, आप सारे खत ले आइएगा। देखिए, बाकी कोई न रखिएगा, और मैं 1 और 2 बजे के दरमियान बोरी बंदर के स्टेशन पर पहुंच जाऊंगी। आप वो खत डालने वाले बम्बे के पास खड़े रहिएगा और मैं सीधी वहीं आ जाऊंगी। तो ये तय हो गया ना?
1: हाँ, तय है। कल शायद हमारी आखिरी मुलाकात होगी।
0: परमात्मा करे कि ऐसा ही हो। तो 1 और 2 बजे के दरमियान वहां पहुंच जाएंगे ना?
1: हाँ हाँ, पहुंच जाऊंगा।
0: अब मुझे काशी की तलाश करनी है, वो मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा। काशी कहाँ है?
2: 3-4 रोज से मुलाकात नहीं हुई, घर होगा।
0: आपको पता है काशी कहाँ है?
2: जी नहीं।
0: काशी कहाँ है?
2: अस्पताल में।
0: अस्पताल में?
2: हाँ, किसी ने मुझे बताया था कि वो 3-4 रोज से अस्पताल में है। नहीं, 3-4 रोज से नहीं, 10-15 रोज से, क्योंकि उसने मुझे ये भी बताया था कि अब वो अस्पताल से आने ही वाला है।

0: काशी।
1: अरे विमला, तुम यहाँ कैसी आई?
0: तुम मुझे ये बताओ कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है?
1: बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। मुझे क्या हुआ था? ऐसे ही।
0: तुम बिल्कुल ठीक हो ना?
1: हाँ हाँ।
0: सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। तुम चल फिर सकते हो ना? तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत मिल जाएगी ना?
1: हाँ क्यों नहीं, कहो तो, अभी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बताओ क्या काम है?
0: बताती हूँ। देखो, कल 1 और 2 बजे के बीच बोरी बंदर के स्टेशन पर एक आदमी आएगा। मैं तुम्हें उसका हुलिया बता दूंगी।
1: बहुत अच्छा।
0: उस आदमी की जेब में खतों का एक पुलिंदा होगा। तुम वहीं आसपास रहना और मौका मिलते ही जेब से। तुम चुप क्यों हो काशी? बोलते क्यों नहीं?
1: विमला, मैं अब अच्छा बन चुका हूं। मैं अपने दोनों हाथों की उंगलियां कटवा चुका हूं। ये देखो।
0: नहीं।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक जेब कतरा, लेखक थे सादत हसन, प्रस्तुतकर्ता राकेश,
1: आलेख है अमित द्विवेदी का, वाचन स्वर है शरद बाघेला के।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिंगरौली जिले की चिट्ठी, आलेख अमित द्विवेदी, वाचन स्वर शरद बाघेला। बीता हुआ महीना सिंगरौली जिले से विकास कार्यों, प्रशासनिक सतर्कता, खेल जगत की उपलब्धियों और सामुदायिक कल्याण की दृष्टि से मिलाजुला रहा। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सिंगरौली प्रवास के दौरान जिले के लिए विकास का बड़ा पिटारा खोला गया। मुख्यमंत्री ने यहां कुल 552 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया, जो जिले के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने

0: में मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश की 24 लाख महिलाओं के खातों में 3 महीनों की कुल 115 करोड़ रुपए की अनुदान राशि ट्रांसफर की। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत भी 33.71 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 202.28 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से भेजी गयी। इस प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय छात्राओं से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीधा संवाद भी किया। जिले में खेल संस्कृति को नई दिशा देने के लिए एक अत्याधुनिक खेल परिसर की स्थापना की जा रही है, जो युवाओं को बेहतर सुविधाएं देकर उनकी प्रतिभा को निखारने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही जिले की सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित करने वाला सिंगरौली महोत्सव और नगर गौरव दिवस 23 मई से 25 मई तक आयोजित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ जिले की प्रभारी मंत्री संपत्तिया उइके और राज्य मंत्री राधा सिंह भी मौजूद रहीं। आगामी मौसम को देखते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर गौरव बैनल की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक शियाज के एम की उपस्थिति में आपदा प्रबंधन कार्य योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी एसडीएम को बाढ़ प्रभावित गांवों और संवेदनशील नदी नालों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि यदि नदी नालों के बहाव क्षेत्र में कोई अतिक्रमण है तो सर्वे कर उसे तत्काल मुक्त कराया जाए। साथ ही बाण सागर बांध और सोन नदी में जल स्तर बढ़ने से प्रभावित होने वाले संभावित गांवों का निरंतर भौतिक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए। खेल जगत की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित 12वीं माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप 2026 में सिंगरौली के नन्हे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण 3 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 10 मेडल जीतकर नया इतिहास रचा है। कलेक्टर ने इन प्रतिभावान खिलाड़ियों की सराहना करते हुए मुख्य कोच गणेश सिंह को एक योजना तैयार करने के निर्देश दिए, जिसके तहत जिले के शासकीय स्कूलों और कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावासों में बच्चों विशेषकर बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए नियमित कराटे प्रशिक्षण दिया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर द्वारा आम का पौधा रोपा गया। उन्होंने अधिकारियों को प्रेरित करते हुए कहा कि केवल पौधा लगाना काफी नहीं है, बल्कि उसका एक बच्चे की तरह संरक्षण करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने जिले के सभी शासकीय कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाने की भी बात कही। दूसरी ओर दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशासन द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने मुखबधिर दिव्यांगजनों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और कहा कि उनकी रुचि के अनुसार CSR मद के माध्यम से रोजगार के अवसर और RCT के माध्यम से ब्यूटी पार्लर व टेलरिंग जैसे प्रशिक्षण दिए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बंद पड़े दिव्यांग विद्यालय को फिर से संचालित करने का निर्णय लिया गया है, जहाँ BEd प्रशिक्षित स्थानीय शिक्षकों द्वारा बच्चों को संवेदनशील वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। सिंगरौली पुलिस की त्वरित कार्रवाई और साइबर सेल की सतर्कता से साइबर ठगी का शिकार हुए शांतिनगर बैड़न निवासी राहुल कुमार सोनी को उनके खाते से धोखाधड़ी कर निकाले गए 51,000 रुपए वापस करा दिए गए हैं। पुलिस विभाग की भर्ती प्रक्रिया के तहत जिले के 198 नव आरक्षक मिले हैं, जिनमें से 28 नवनियुक्त आरक्षकों को SP शियाज के एम ने स्वयं नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार SP द्वारा 2 चौकी प्रभारियों समेत कुल 89 पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है, जो पिछले 4 वर्षों से एक ही थाने या शाखा में पदस्थ थे। स्वास्थ्य क्षेत्र में NTPC विंध्य चिकित्सालय द्वारा सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के 136 लाभार्थियों को विशेषज्ञों द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श दिया गया। अंत में नोनिहालों के विकास के लिए चल रहे आरोहण समर कैंप 2026 में बैडमिंटन, टेबल टेनिस और डांस गतिविधियों में लगभग 180 बच्चे उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं, जिन्हें अनुभवी कोच द्वारा मार्गदर्शन और पोषण युक्त स्नैक्स प्रदान किए जा रहे हैं। निष्कर्षता सिंगरौली जिला प्रशासन, पुलिस और जनप्रतिनिधि मिलकर स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, सुरक्षा और पर्यावरण के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। सिंगरौली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अब सुनाई थे सिंगरौली जिले की चिट्ठी, आलेख था अमित द्विवेदी का और वाचन स्वर थे शरद बाघेला के। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है, लीजिए।
2: मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। 10:05 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत का दिलनशी कारवां जश्न समा के साथ। तो आइए करते हैं आगाज वारसी ब्रदर्स की गाई कव्वाली के साथ।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: जश्न समा की अगली पेशकश गुलाम साबिर और गुलाम वारिस की आवाज में है।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जश्न समा, ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। 10:45 हुए हैं। प्रस्तुत है यौमे आशूरा की अहमियत विषय पर राशिद खान से ली गई भेंट वार्ता।
1: स्वागत है आप सभी का आज के इस खास प्रोग्राम में जो यौमे आशूरा के मौके पर मरकूज है। यौम आशूरा यानी मुहर्रम की 10वीं तारीख, तारीख के अंदर बहुत ही फजीलत का दिन है और इसको कब और कैसे मनाया जाता है और इसकी फजीलत क्या है, इसके बारे में हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं जनाब कारी राशिद खान।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है
1: हेलो
0: जी। नमस्कार, किन से बात हो रही है?
1: जी। नमस्ते मैडम,
0: आपका नाम जान सकते हैं?
1: जगत सिंह बोल रहा मैडम। जगत सिंह
0: जगत सिंह जी, कहाँ से बात कर रहे हैं जगत सिंह जी?
1: जी, मैं ग्राम पिपली हमारा तहसील भी कौन चला रहा है। जी
0: कैसे हैं आप?
1: मैडम जी, अच्छे हैं। खाना खा लो
0: खाना खा रहे हैं?
1: जी।
0: अरे वाह, तो गीत कौन सा
1: जी
0: सुनेंगे खाना खाते हुए?
1: मैडम, वो सुना दो, बरसात हो रही है तो बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए।

0: साथ ही फिल्म को है जहां तक मैडम जी, सही पता तो नहीं आ रहा हुआ, खबर नहीं आ रही फिल्म का
1: जी। जगत सिंह जी, गीत आपका मिल गया है, कुमार सानू की आवाज में है, बस आपको सुनवाते हैं। कार्यक्रम में
0: जी।
1: आप शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी नमस्ते मैडम।
1: नमस्कार।

0: फोन करें, गीत सुने।
1: नमस्ते दीदी,
0: नमस्ते, किनसे बात हो रही है?
1: जयशंकर कुशवाहा, छतरपुर मध्य प्रदेश से।
0: कैसे हैं आप?
1: ठीक है दीदी, बहुत बढ़िया है। बड़ी मुश्किल में लगता है फोन अब।
0: हाँ, थोड़ा समय लग जाता
1: जी,
0: है, सारे श्रोता जो हैं कोशिश कर रहे होते हैं, तो थोड़ा।
1: फिल्म का नाम है,
0: जी
1: हेलो,
0: हाँ बताएं।
1: डोली सजना साथ निभाना।
0: अच्छा, डोली फिल्म का सजना साथ निभाना
1: जी
0: गीत सुनना चाहते हैं।
1: जी दीदी, जी दीदी,
0: बिल्कुल, आपको सुनवा देते हैं। मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले जी की आवाज़ में है, अब आएगा आपके रेडियो सेट पर।
1: नमस्ते
0: जी,
1: दीदी।
0: कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आपको सुनवाई देते हैं गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत
1: हेलो
0: सुने। हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: जी नमस्ते मैम, मैं नरेश प्रजापति बात कर रहा हूँ।
0: नरेश प्रजापति जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: फिलहाल मैं इंदौर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
0: इंदौर से?
1: वैसे मेरा गांव है रामनगर बमोरी गुना मध्य प्रदेश में।
0: अच्छा,
1: जी।
0: और फिलहाल आप इंदौर में हैं?
1: हाँ फिलहाल इंदौर में हूँ मैं, यहाँ लगभग 2011 से हूँ।
0: क्या करते हैं आप?
1: मैं एम्प्लॉय हूँ मैम, और ट्रक और बसेस बनते हैं यहाँ, मैन्युफैक्चर होता है।
0: अच्छा, वहाँ आप काम
1: जी
0: करते हैं।
1: जी जी
0: ठीक है जी, तो कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे आज?
1: देखिए मौसम बरसात का चल रहा है, तो बरसात से रिलेटेड भी आज एक फरमाइश लेकर आया हूँ मैं।
0: हाँ बताएं।
1: उनका नाम रहेगा आई मिलन की रात,
0: आई मिलन की रात।
1: सावन का महीना आया है कटा। वैसे सावन का महीना तो अभी आया नहीं, लेकिन मौसम बरसात का आ गया है।
0: तो आई मिलन की रात फिल्म से आपने कहा कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं? सावन का महीना आया है।
1: हाँ जी आया है कटार से।
0: अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ में ये गीत हमारे पास उपलब्ध है, तो बस आपको सुनवाई देते हैं ये गीत। कार्यक्रम में आपने प्रतिभागिता की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी।
1: जी थैंक यू मैम।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: परम आदरणीय दीदी शारदा सप्रेम, प्यार से नमस्कार।
0: नमस्कार, किन से बात हो रही है
1: जी? मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिंह की मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ दीदी।
0: शारदा प्रसाद प्रजापति जी मथुरा से बात कर रहे हैं, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ दीदी, आपका आशीर्वाद है, माँ की बिहारी कृपा है, घर परिवार में सब लोग आनंद मंगल से रहते हुए आकाशवाणी से जुड़े रहते हैं, रेडियो से कार्यक्रम सुनते हैं, अच्छा लगता है। और जब आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल में फोन लगता है तो फिर कहना क्या, बहुत ही खुशी और प्रसन्नता होती है। दीदी मैं रीवा मध्य प्रदेश का निवासी हूँ और वर्तमान में मथुरा में निवास कर रहा हूँ।
0: अच्छा जी, क्या करते हैं आप वहाँ पर?
1: मेरे बच्चे जॉब में हैं और वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उन्हीं के साथ में मैं रहता हूँ और मैं विद्युत विभाग में सेवानिवृत्त हो चुका हूँ।
0: अच्छा।
1: और घर में रहते हुए सेवानिवृत्ति का आनंद ले रहा हूँ और आकाशवाणी से जुड़ा रहता हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो गीत कौन सा आज सुनना चाहते हैं आप?
1: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु।

0: बहुत ही सुंदर प्यारा सुरीला गीत आप सुंदर करना चाहता हूँ।
1: शारदा प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में प्रतिभागिता करने के लिए। और अब आपको सुनवाई देते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म जीवन मृत्यु से।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्ते।
1: हेलो, आकाशवाणी भोपाल।
0: जी आकाशवाणी भोपाल से बात कर रहे हैं, आप कौन बात कर रहे हैं?
1: जी मैं मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रहा था।
0: कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है जी, प्रभु की कृपा है।
0: क्या करते हैं मनोहर जी?
1: ये मेरी कपड़े की शॉप है और मैं यहीं पे अपना संगीत से जुड़ा रहता हूँ।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है। क्या चल रहा है, कैसा मौसम है?
1: मौसम कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्मी हो जाती है। इस समय धूप खिला हुआ है, उमस भरी गर्मी है।
0: तो गीत कौन सा सुनना चाहते हैं आज? फिर
1: ये सुनना चाहते हैं जी, फिल्म का नाम है रॉकी, क्या यही प्यार है। ये हमारे दोस्त हैं हेमंत, उनके पसंद।
0: रॉकी फिल्म का गीत आप अपने दोस्त के लिए सुनवाना चाहते हैं? हेलो मनोहर जी, आपका आवाज़ आ रही है? जी शायद तकनीकी खराबी के कारण कॉल कट गया है। मनोहर जी कोई बात नहीं, गीत आपका हमारे पास उपलब्ध है, अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म रॉकी से।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार
0: जी। किन से बात हो रही है
1: जी? मैं फूलचंद पाल छतरपुर जिले के मनकारी गांव से बोल रहा हूँ।
0: फूलचंद पाल जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन आपका शुभ नाम तो बताइए, कितनी प्यारी आवाज आप।
0: जी मैं रक्षा बात कर रही हूँ।
1: अच्छा, रक्षा जी आपको बहुत बहुत नमस्कार।
0: नमस्कार, तो कैसे हैं आप, क्या चल रहा है?
1: बिल्कुल रक्षा जी, बस बैठे हैं, दुकानदारी करते हैं, तो दुकानी पे बैठे हैं। कार्यक्रम सुन रहे हैं आपका।
0: किस चीज की दुकान है आपकी?
1: सारी दुकान है, हर चीज की दुकान है, जितना सामान मिलता है किराना स्टोर का सब सामान मिलता
0: है। अच्छा,
1: मिलेगा
0: किराने का सामान रखते हैं, ठीक है। फूलचंद जी, तो कौन सा गीत आज सुनना चाहते हैं आप?
1: जी बिल्कुल रक्षा जी, अभी जो है हमारे यहाँ छतरपुर जिले में बादल बहुत छाए हुए हैं, काले बादल हैं। तो ऐसे में बार बार मन करता है कि ऐसे ही एक गीत सुन लूं।
0: जी
1: फिल्म का नाम है गजब और गीत के बोल है कि ए हवा ए घटा तुझे क्या है पता, अब के बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा, सावन जैसा भी होगा लेकिन मेरा साजन कैसा होगा। बहुत प्यारा गाना है, लता जी की आवाज में है।
0: ठीक है जी, फूलचंद जी आपको ये गीत सुनवाते हैं आपकी पसंद का।
1: बहुत बहुत नमस्कार। और ये गीत जो है प्रेमदास बाबा जी और मांगीलाल चंदेल दिनकर सिंह और जो है आपको डेडिकेट रहेगा, और पूनम जी है कानपुर से
0: जी,
1: तो आप सभी श्रोताओं को जो है हमारे जितने मित्र हैं सभी को डेडिकेट रहेगा।
0: ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद फूलचंद जी। अब आपको सुनवाई देते हैं गीत आपके पसंद का।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: नमस्ते, कार्यक्रम में फोन किया आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: मैडम नमस्ते, मैं सुमित बात कर रहा हूँ एमपी धार से।
0: कैसे हैं आप?
1: जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप बताइए क्या हाल चाल है।
0: हम भी बढ़िया हैं, क्या चल रहा है?
1: जी अभी बस कुछ देर बाद ऑफिस जाने की तैयारी है। मेरा ऑफिस दिन में होता है 1 से शाम 7 बजे के बीच।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: मैं म्यूजिक लेक्चरर हूँ।
0: अरे वाह, अरे वाह।
1: अमेरिकन से बात हो रही है?
0: मैं रक्षा बात कर रही हूँ।
1: रक्षा जी,
0: जी
1: अच्छा चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो कौन सा गीत आज सुनना चाहते हैं कार्यक्रम में?
1: आप मुझे सुनवा दीजिए, चूंकि अब बरसात का मौसम कहीं ना कहीं दस्तक दे रहा है,
0: जी
1: तो आप मुझे सुनाइएगा बरखा बहार। आशा जी की एक रचना है, ये थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गीत है ये।
0: थोड़ी सी बेवफाई।
1: हाँ इसका बरखा बहार देखिए, अगर मिल जाता है तो नहीं फिर मैं दूसरा बताता हूँ।
0: ये बरसे फुहार
1: बरसे फुहार, सॉरी।
0: है ना?
1: हाँ
0: जी
1: हाँ यही वाला है।
0: जी, ये गीत तो हमारे पास है उपलब्ध।
1: और बहुत अच्छा गीत है, आप सुनिएगा इसको, बहुत अच्छा गीत है ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुमित जी आपको ये गीत सुनवाएंगे आशा भोसले की आवाज़ में, और कार्यक्रम में आपने प्रतिभागिता की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी आपको बहुत बहुत नमस्कार।

0: इसका प्रसारण है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: पेशे इस घंटे की खास खबरें। आज मुहर्रम है, ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि उनका त्याग साहस, दृढ़ विश्वास और मानवीय मूल्य का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के मौके पर आज कई जगहों पर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से नशा मुक्ति क्विज प्रारंभ कर रहा है, जो कि 15 जुलाई तक चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग की वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नशे के दुष्प्रभावों के प्रति बच्चों और युवाओं को जागरूक करने के लिए पाठ्यक्रम में इस विषय को सम्मिलित किया जाएगा। प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत 13 जिलों में जिन सिंचाई परियोजनाओं के कार्य पूर्ण हो गए हैं, इससे 6 माह में 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी की चुनौती देने की विंडो खोल दी गई है। वेबसाइट पर जाकर विद्यार्थी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जर्मनी में चल रही ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत कुल 25 पदक प्राप्त कर शीर्ष स्थान पर है, और भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को सरिता का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हम लेकर आए हैं आपकी पसंद पर बेहद खूबसूरत गीत, जिसे आपने ही चुना है। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम को आपकी पसंद यानी फिल्म एक दूजे के लिए से। और ये गीत गाया है लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम ने। शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इस खूबसूरत गीत को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने इसी गीत को सुनना चाहा था। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क

शाजापुर से मनमोहन राजावत, मधु राजावत, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और इनके पूरे राजावत परिवार ने। तो आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म हीरो से। स्वर हैं रेशमा के। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीतमय बनाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोता, उस गीत की फरमाइश हम तक लिख भेजी थी जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड के पास बंटा बेले जिला सागर से लक्ष्मण रेखवार, श्रीमती विनीता रेखवार, कुमारी वैशाली वैष्णवी, अनरत रेखवार, हल्ले लल्लू और ऋषि रेखवार ने इसी गीत को पसंद किया था। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। अब हम आपको सुनाते हैं फिल्म सनम बेवफा का ये गीत और स्वर हैं विपिन सचदेवा के। ये गीत लिखा है सावन कुमार ने और संगीत है महेश किशोर का। इस गीत को सुना चाहे कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली ने। इसी गीत को पसंद किया है शाहनगर यवतमाल से राहुल मनबर, सरला मनबर, विशाल तथा चेतन मनबर ने। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

आपकी फरमाइश में अगला और अंतिम गीत पसंद करने वाले श्रोता हैं सादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान। इसी गीत को पसंद किया है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप साजेश और राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म दिल का ये गीत। गीत लिखा है समीर ने, स्वर हैं उदित नारायण और अनुराधा पुडवाल के।

0: इसी गीत के साथ फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय
1: मीडियम वेव 254.5 मीटर अर्थात 1189 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। दिन के 12:25 हुए हैं।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें मां भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें मां भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुकी है

0: में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव हैशटैग वंदे मातरम 150 के साथ जरूर भेजिए। हैशटैग वंदे मातरम 150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। दिन के 12:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में अपना अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करते हैं।
4: अंतराल का समय समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक भुवन मोहिनी का 8वां भाग।

पिछली कड़ियों में आपने जाना कि देश निकाले की सजा प्राप्त नर्तकी भुवन मोहिनी को ढूंढते हुए राजकुमार विजयश्रवा इंद्रप्रस्थ पहुंचा, जहां भुवन मोहिनी राजा आदित्य सेन के आश्रय में थी। राजा आदित्य

0: सेन अपनी पुत्री का विवाह विजय श्रवा से कराना चाहते थे, परंतु राजकुमारी के प्रति आकर्षित होने के बावजूद विजय श्रवा भुवन मोहिनी से ही प्रेम करता था। राजकुमार ने चंद्रहासिनी से साफ साफ कह दिया कि यदि वो उसके मन से भुवन मोहिनी के स्थान को छुड़वाना चाहेगी तो बदले में अपने लिए मात्र घृणा प्राप्त करेगी। राजकुमार की शर्त को चंद्रहासिनी ने स्वीकार कर लिया। इंद्रप्रस्थ के मेले में विजय श्रवा के माता पिता भी आए और वहीं उन्होंने अपनी भावी वधू को पसंद भी किया। वहां राजकुमार ने राजमाता को आश्वासन दिया कि वो भारतीय सीमा पर आक्रमण करने वाले हूणों को पराजित करने के बाद चंद्रहासिनी से विवाह करेगा। इंद्रप्रस्थ में राजाओं की सभा में विजय श्रवा को भारतीय सेना का सेनापति बनाया गया और उसने सुप्त प्राय लोगों में नई चेतना भर दी। उसने ये भी कहा कि वो आजीवन विवाह नहीं करेगा। वो वापस चलने के लिए भुवन मोहिनी को कहता है, परंतु चंद्रहासिनी भी साथ में आती है। अब आगे क्या होता है सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 8वीं कड़ी में।
1: सावधान, सम्राट दुमित सेन पधार रहे हैं।
2: सम्राट दुमित सेन की जय हो।
3: क्या बात है, दरबार में आज सन्नाटा क्यों है? युवराज विजय श्रवा, आज की कार्यवाही आपको आरंभ करनी है ना?
4: जी सम्राट।
3: तो फिर विलंब क्यों?
4: सम्राट, इस सभा में हूण अधिनायक के दो दूत भी उपस्थित हैं, जो अधिनायक का पत्र लेकर आए हैं। इस पत्र पर त्वरित कार्यवाही होने की आवश्यकता है।
3: पत्र को पढ़ा जाए।
4: आज्ञा सम्राट। इस पत्र में हूण अधिनायक ने लिखा है कि या तो भारतीय सम्राट प्रत्येक सैनिक पदाधिकारी के लिए सर्वश्रेष्ठ सुंदरी प्रदान करें और एकत्रित राजकोष का 2/3 धन और राजकीय परिवार की सर्वश्रेष्ठ राजकुमारी जो अनिंद्य सुंदरी हो, सौंदर्य प्रतियोगिताओं में अपराजिता सिद्ध हुई हो, सैनिक अधिनायक को समर्पित करें और साथ ही पराजय को स्वीकार करते हुए हूणों के सैनिक अधिनायक को प्रतिवर्ष साम्राज्य की आय का आधा भाग प्रदान करते जाएं। यदि ऐसा किया गया तभी रक्त सागर को भरने वाला विकराल युद्ध टाला जा सकेगा, अन्यथा भारत देश की भूमि में ऐसा भयंकर युद्ध होगा जिसमें भारतीय परंपरागत वैभव की होली जलाई जाएगी, भारतीय सुंदरियां बलात् लूट ली जाएंगी और सर्वनाश का तांडव देश के कोने कोने में दिखलाई पड़ेगा।
3: ऐसा अपमानजनक पत्र लिखने का दुस्साहस! मन तो करता है कि ऐसे पत्र को लाने वाले दूतों की खाल उतरवा दें, परंतु यह हमारी परंपरा नहीं है। मैं दरबार में उपस्थित सभी सभासदों के चेहरों पर आ रहे भावों को देख रहा हूं। मैं तमतमा रहे युवराज के चेहरे को भी देख रहा हूं। यहां पर साम्राज्य और राज परिवार की अन्य महिलाएं भी उपस्थित हैं। मैं उनके भी मनोभावों को भली भांति समझ रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि भावी सम्राट विजय श्रवा की क्या राय है।
4: सम्राट, शीघ्र ही युद्ध का बिगुल फूंकने का आदेश दें। इस अपमान भरे पत्र ने हमारे राष्ट्रीय सम्मान को चुनौती दी है। हमारे हृदय शत्रु के रक्त से होली खेलने के लिए उतावले हैं सम्राट। हमारे हाथ उन पामरों के मस्तक काट कर पैरों की ठोकरों से कुचल देंगे।
3: महिलाओं और समस्त सभासदों, मेरे चिरंजीव युवराज ने शत्रु के पत्र के प्रत्येक अक्षर को आप लोगों के समक्ष बड़े साहस पूर्वक पढ़कर सुनाया। आप सब लोगों ने जाना कि संधि की शर्तें भारतीय गौरव परंपरा के विपरीत हैं। दूसरी ओर युद्ध को स्वीकार किया जाए तो महान सर्वनाश को स्वीकार करना पड़ेगा। आज राष्ट्रीय स्थिति यह है कि समस्त देश बौद्ध मतावलंबी और अहिंसा का समर्थक हो चुका है। एक प्रकार से राष्ट्रीय धर्म ने युद्ध का निषेध कर रखा है। अधिकांश भारतीय नरेश अहिंसा धर्म द्वारा दीक्षित हैं, जो संभावना है कि रक्त से सने हुए युद्ध के विपरीत अपना समर्थन करेंगे। शत्रु ने जो दो शर्तें संधि के लिए प्रस्तुत की हैं, वो मुझ जैसे

0: से युद्ध प्रिय क्षत्रिय नरेश की विचारधाराओं के सर्वथा विपरीत है। मैं कायरता को स्वीकार करने से कहीं अधिक रक्त सागर में निमग्न होना पसंद करता हूं। मैं अहिंसा का सम्मान करते हुए भी माताओं, बहनों और बेटियों की लज्जा को निर्लज्ज बनकर शत्रु को नहीं समर्पित करना चाहता, भले ही मुझे हिंसक युद्ध द्वारा रक्त सागर को उद्वेलित करना पड़े। वीर प्रसवनी भारत वसुंधरा वीरांगनाओं के अपमान को सहन करने में असमर्थ है। अस्तु, मेरा प्रबल समर्थन युद्ध के पक्ष में है, फिर भी मैं अपना निर्णय नहीं लादना चाहता। समस्त सभासद आपस में निर्णय करके मुझे ये बताएं कि वे संधि चाहते हैं अथवा युद्ध।
1: सम्राट, मैं इस विषय में आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं।
0: आज्ञा है अमात्य ऋषभदेव।
1: सम्राट, मैंने इस संबंध में समस्त राजाओं महाराजाओं की सहमत या सहमत जानने का सफल प्रयास किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जैसा आपने कहा, अधिकांश राजा महाराजा अहिंसावादी हैं और वो किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं चाहते। ये राजा महाराजा राष्ट्र को रक्त सागर में निमग्न करने से अधिक श्रेष्ठकर हूणों के द्वारा मांग पूरी किए जाने के पक्ष में। उनका कहना है कि हूणों द्वारा मांगे गए धन का जो भाग राजकोष से दिया जा सके दिया जाए और शेष भाग अधिकांश नरेश मिलकर अपने अपने राजकोष से पूरा कर देंगे। शेष बची कुछ सहस्त्र सुंदरियां जो हूण सैनिक अधिकारियों को प्रदान की जाने वाली हैं, उन्हें भी प्रत्येक नरेश राज की धन दान के अनुपात से एकत्रित कराकर सम्राट को सौंप देंगे और सम्राट व्यापक जनहित और राष्ट्रहित में मुझे समस्त राजाओं महाराजाओं की ओर से ये कहने में संकोच नहीं है कि हूण अधिनायक को सर्वश्रेष्ठ सुंदरी के रूप में महाराज आदित्य सेन जो इंद्रप्रस्थ के नरेश हैं अपनी राजकन्या चंद्रहासिनी का विवाह कर दें। संभवतः है चंद्रहासिनी सौंदर्य प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ भी सिद्ध होगी। इस प्रकार राष्ट्र के अपार जनधन का सर्वनाश रोका जा सकेगा। अन्यथा प्रस्तावित धन दान कुछ सहस्त्र सुंदरियां और चंद्रहासिनी का विशेष दान उस सर्वनाश का एक साधारण भाग भी न होगा जो युद्ध की विभीषिका और सर्वनाश के पश्चात राष्ट्र को भोगना पड़ेगा। मुझे मात्र यही कहना था राजन।
0: अमात्य ऋषभदेव, क्या आप जानते हैं आपने अभी क्या कहा है? आपकी बातें सुनकर यहां उपस्थित दो हूण दूतों के चेहरे खिल उठे हैं, मानो उनकी मनोकामनाएं अब प्रयास ही पूर्ण हो गई हो और बाकी सभा तो मरघट सदृश बन चुकी है। महाराज आदित्य सेन की सुपुत्री राजकुमारी चंद्रहासिनी जो इस सभा में अन्य महिलाओं के साथ स्वयं बैठी हैं के ऊपर क्या प्रभाव हुआ होगा आपके इस प्रस्ताव का, कुछ कल्पना है आपको? मेरे स्वयं के कानों को आपकी बातें पिघले सुवर्ण जैसी प्रतीत हुई हैं। अमात्य, हमारे राजा महाराजाओं की इस कायरतापूर्ण अभिमत से मेरी इन वृद्ध आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। आज हमें ज्ञात हुआ कि हमारा रक्त पानी हो चुका है। पानी।
2: ठहरिए सम्राट।
0: भुवन मोहनी, आज हम लज्जित हैं, हमें सभा में ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं।
2: सम्राट, सभा स्थल के मध्य आकर मैं आपके चरणों में अभिवादन करती हूं। आपकी पीड़ा मात्र आपकी नहीं है सम्राट, इन सुवर्ण जटित चौकियों पर रखी नग्न तलवारों का औचित्य ही क्या यदि वो राष्ट्र की आन बान और शान को न बचा सके। सम्राट, यहां पर उपस्थित राजपूती शान को यद्यपि अच्छा तो नहीं लगेगा कि एक नर्तकी इसे अपने हाथों में ले, परंतु क्या करूं, विवशता है, क्योंकि ये नर्तकी भी इसी राष्ट्र की कन्या है, इसी राष्ट्र की, जिसकी गौरव गाथा को आज इस सभा में एक निकृष्ट वाणी ने कलंकित करने का प्रयत्न किया। सम्राट, जो व्यक्ति हमारी धरती को कलंकित करे

0: वो मात्र मांस का एक पिंड है, और जो प्राण हमारी मर्यादा को गर्त में गिराने का काम करे वो प्राण निष्प्राण होने के लिए ही उपयुक्त है।
1: भुवन मोहनी,
0: सम्राट आपके श्री चरणों में राष्ट्रद्रोही आमात्य ऋषभ देव का सिर समर्पित है।
1: ये तुमने क्या किया? आमात्य ऋषभ देव का शिरच्छेद कर दिया?
0: पूज्य सम्राट, यदि मैंने राजसभा का अपमान किया है तो सम्राट अपने हाथों मुझे मृत्यु दंड प्रदान करें। मैं विवश थी सम्राट, लुटेरी जातियों के सेनानियों को तुष्ट करने के लिए भारतीय महिलाओं के सतीत्व और नारीत्व का उपहासास्पद निम्नदान एक राष्ट्रीय अपमान था जिसे महामात्य द्वारा प्रस्तावित किया गया। सुनकर मैं अपने को ना रोक सकी। क्या आज राष्ट्र की वीरता सो गई है? कभी सिंहों के साथ प्रणय लीला रचाने वाली भारतीय सिंहनी नारियां असंस्कृत बर्बर नीच और लुटेरे आक्रामकों की विलास पूर्ति का साधन बनेंगी? इससे तो अधिक उपयुक्त ये होगा कि भारतीय सुंदरियों को कहा जाता कि वो अपने सतीत्व को लुटेरों की वासाग्नि में स्वाहा करने से उपयुक्त चिता की लपटों से आलिंगन करना समझें। भारतीय नारियों का बलिदान सर्वदा अमर रहा है। वो अपनी परंपरागत बलिदानी भावनाओं के लिए एक नहीं सहस्त्र बार अपने तुच्छ शरीर को स्वाहा करने के लिए प्रस्तुत है। किंतु ये कैसा अधापतन लाने वाला नीच प्रस्ताव है कि सिंघनी नारियां कामी कुत्तों और श्रृंगालों की वासना पूर्ति का साधन बने? सम्राट, मैं उपस्थित राजसभा के वीरों से निवेदन करूंगी कि या तो वे समरभूमि में शत्रु से मोर्चा लेने के लिए कटिबद्ध हों, या वे हमारी चूड़ियां धारण कर अंतापुर में जाकर बैठ जाएं। भारतीय नारियां अपनी मर्यादा की रक्षा में स्वयं जुट जाएंगी। महामात्य ने जिस नीच मुख से राजकुमारी चंद्रहासिनी को सर्वश्रेष्ठ सुंदरी के रूप में हुणों के अधिनायक के साथ प्रणय संबंध स्थापित करने का प्रस्ताव किया था, उसी के दंड स्वरूप उनकी समस्त ज्ञान इंद्रियां उनके तुच्छ शरीर से विलग की जाकर श्रृंगालों की भोज्य वस्तु बनने के लिए राजसभा के चरणों में लौट रही हैं, और मैं अपने किए का प्रतिफल भोगने के लिए तत्पर हूं। किंतु स्मरण रहे सम्राट, चंद्रहासिनी एक देवता की प्रेमार्थी बन चुकी हैं। वो किसी अधम राक्षस की वासना अग्नि के तुष्टि का कभी भी साधन नहीं बनेंगी, नहीं बनेंगी, नहीं बनेंगी।
1: उठो बेटी, मेरे हृदय से लग जाओ। मृत्युदंड उन्हें ही दिया जाता है जो स्वराष्ट्र के सम्मान के प्रति कृतज्ञ हैं। उठो
0: सम्राट।
1: महामात्य ने स्वयं वो दंड प्राप्त कर लिया जो भारतीय वीरांगनाओं और राष्ट्र की मर्यादा को खंडित करने वालों के लिए दिया जाता। मैं तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार दूंगा।
2: सैनिकों, हूर दूतों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दो।
0: मात्र कारागार नहीं, इन्हें भी मृत्यु दंड मिलना चाहिए युवराज।
1: भुवन मोहनी ठीक कह रही हैं युवराज, हम आदेश देते हैं कि इन दोनों ही उर्दूतों को अविलंब मृत्यु दंड दिया जाए, ताकि ऐसे घृणित प्रस्तावों को भेजने और ले आने से पहले कोई 100 बार सोचे। हमारी आज्ञा का पालन अविलंब हो।
2: ले जाओ सैनिकों, चलो।
3: सम्राट, मैं राष्ट्र रक्षा के लिए संकल्पित वीरों के भाल को स्वयं कुमकुम का टीका लगाऊंगी।
1: अवश्य साम्राज्ञी।
3: हे माता के वीर सपूतों, मुझे इससे अधिक कुछ नहीं कहना है कि राष्ट्रीय सम्मान और देश की वीरांगनाओं की रक्षा का भार तुम लोगों के सबल कंधों पर आ टिका है। भुवन मोहनी इस गौरवमयी युद्ध की ध्रुव तारा है। हम कर्तव्य भ्रष्ट न हो, इस आदर्श को हमें भुवन मोहनी से ही ग्रहण करना चाहिए। आप सब लोग मृत्युंजय बनकर इस युद्ध में लग जाएं। सफलता आपकी चेरी होगी, यही हमारा सुभाषीर्वाद है।

0: महाराज आदित्य सेन को प्रणाम।
1: आयुष्मान युवराज विजय शर्मा, राजकुमार, हूणों के साथ युद्ध में मैं आपकी इच्छा अनुसार

0: हमारी सेना चार टुकड़ियों में विभक्त है, पैदल सेना, अश्वारोही, गजारोही और रथारोही।
1: और हमारे पास तलवार, भाला, खाना, तीर, धनुष, परशु, गदा, कुलिश, दंड, चर्म, त्रिशूल और सिरोही आदि अस्त्र शस्त्र पर्याप्त मात्रा में है। राजकुमार, मैंने अपने गुप्तचरों के द्वारा, जो बड़ी ही चालाकी से हूणों की सेना में सम्मिलित हो गए थे, कई जानकारियां प्राप्त की हैं।
0: बहुत अच्छा, हमें पता चला है कि हूण दूतों के मारे जाने का समाचार मिलने पर हूण सेनापति तुरंत आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है।
1: आपने ठीक ही सुना है युवराज, परंतु ये भी जान लीजिए कि जैसे ही उसे पता लगा कि समस्त भारतीय राज्य मिलकर युद्ध लड़ने की तैयारी कर चुके हैं और इंद्रप्रस्थ के मार को चारों ओर से घेर लिए हैं, तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए।
0: परंतु हूण वास्तव में लुटेरे हैं, धन का लालच उन्हें युद्ध की ओर अवश्य धकेलेगा।
1: हाँ, आपको याद होगा युवराज कि पिछले 6 महीने से वो सीमावर्ती क्षेत्रों में लूटपाट और हत्याएं कर रहे हैं।
0: हम तैयार हैं इंद्रप्रस्थ नरेश, और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किस दिन हूणों से हमारा सामना होगा।
1: ये ध्वनियां कैसी हैं?
0: लगता है हूणों ने आक्रमण कर दिया है। महाराज, सेना को आदेश दें कि वो कूच करें।
2: कूच करो!
3: अरे, भारत की सेना इतनी बड़ी कैसे हो गई? अरे, ये पराक्रम कहां से आ गया इसमें? हमारे सैनिक तो गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। अगर हम हार गए तो ये हमेशा के लिए ताकतवर हो जाएंगे। क्या करूं? हाँ, चूंकि मैं एक बलशाली पहलवान भी हूं, तो मैं भारतीय सेनापति को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूं। कौन है भारतीय सेना का सेनापति? बोलो, कौन है? कौन है सेनापति? बोलो।
0: हम हैं सेनापति। क्या हो गया हूं अधिनायक? ये पुकार क्यों लगाने लगे? बोलो, क्या कहते हो? आत्मसमर्पण करना है तुम्हें?
3: आत्मसमर्पण हमने नहीं सीखा है सेनापति, आत्मसमर्पण। अगर तुम वाकई होता हो तो आकर हमसे द्वंद्व युद्ध करो। बोलो, मंजूर है?
0: मंजूर है।
3: तो फिर अपनी सेना को आदेश दो कि वो लड़ाई बंद करें। अब इस जंग का फैसला हम दोनों की कुश्ती से ही होगा।
0: चलो, यही सही। सैनिकों, रुक जाओ।
1: युवराज, युद्ध को क्यों रोक रहे हैं आप?
0: महाराज आदित्य सेन, हूण सेनापति अब हमसे द्वंद्व युद्ध करना चाहता है।
1: द्वंद्व युद्ध?
0: हम चाहते हैं कि उसकी ये इच्छा भी पूरी हो जाए। चल, आ जा हूण सेनापति। यदि अपने पिता के संतान है तो आकर हमसे द्वंद्व युद्ध कर।
3: आ जाओ, चलो, आओ आओ आओ आओ आओ आओ।
4: महाराज आदित्य सेन, राजकुमार ने ये क्या किया? हम विजय के बिल्कुल समीप थे, ये द्वंद्व युद्ध क्यों?
1: शांत रहो सैनिक, अपने सेनापति पर भरोसा रखो, वो एक कुशल मल्ल योद्धा भी हैं।
4: परंतु महाराज, हूण सेनापति लगातार आक्रामक हो रहा है। और हमारे सेनापति रक्षात्मक हैं।
1: देखते जाओ सैनिक।
0: अच्छा, अब देख तू, अब मैं क्या करता हूं?

0: अरे वाह, अब हमारे सेनापति ने जमकर दांव लगाया है। अरे उन्होंने उसके दोनों पांवों को तोड़ दिया।
1: अब बस ये मेरा अंतिम प्रहार होगा, ले संभाल इसे।
0: हूर सेनापति मारा गया, हूर सेनापति मारा गया।
2: टूट पड़ो हूर सेना पर, एक भी जीवित न बचे। टूट पड़ो, टूट पड़ो।
3: बचाओ बचाओ, हम शरणागत हैं, हमारे प्राण बख्शो, हमारे प्राण बख्शो।
1: रुक जाओ, शरणागतों पर वार मत करो, इनके अस्त्र शस्त्र छीन लो और स्वदेश जाने दो।
3: हम स्वदेश नहीं जाना चाहते सेनापति, नहीं जाना चाहते, वहाँ शांति नहीं है। हम शांति से अपना जीवन यहीं भारत में व्यतीत करना चाहते, हमें स्थायी रूप से यहीं बसने की आज्ञा दीजिए।
1: तो फिर तुम सबको भारतीय जीवन आदर्शों को मानना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जीवन आदर्श ही मानव जीवन के सच्चे आदर्श हैं।
3: हमें स्वीकार है सेना नायक, हमें स्वीकार है, स्वीकार है।
0: सेनापति विजय शर्मा की।

0: आओ पुत्र विजय श्रवा, आओ हृदय से लग जाओ। हा, अपेक्षा के अनुरूप ही तुमने स्वयं को समर्थ, योग्य और पुरुषार्थ पूर्ण सिद्ध किया है। महाराज आदित्य सेन
1: जी सम्राट,
0: आपने विजय श्रवा को एक संरक्षक की भांति सहयोग दिया, हम आपके आभारी हैं।
1: धन्यवाद सम्राट। सम्राट, राजकुमार विजय श्रवा ने मात्र हूणों की सेना पर ही विजय प्राप्त नहीं की, अपितु उन्होंने हूण सैनिकों के हृदय पटल पर भी विजय प्राप्त की है। भविष्य का तो नहीं कहा जा सकता सम्राट, परंतु निकट के कई वर्षों तक के लिए भारत भूमि निरापद हो गई है।
0: इस प्रसन्नता की घड़ी में हमारी पुत्री भुवन मोहिनी कहाँ है?
2: दासी यहाँ है सम्राट।
0: दासी मत कहो स्वयं को पुत्री, आओ तुम भी हृदय से लगो। तुम मेरी और राजकुमार की समस्त विजयों की रीढ़ हो। तुमने राष्ट्र के सुप्त वीरत्व भाव को जगाकर देश के युवाओं को सर्वोत्सर्ग का पाठ पढ़ाया है।
1: सम्राट, आपको बता दूं कि भुवन मोहिनी इस पूरे युद्ध में सैनिक वेशभूषा में राजकुमार की ढाल बनकर उनके संग रही है।
0: अच्छा,
1: भुवन मोहिनी का जितना भी सम्मान किया जाए कम होगा सम्राट।
0: सर्वथा उचित कहा आपने महाराज।
1: एक आग्रह है सम्राट।
0: कहिए इंद्रप्रस्थ नरेश।
1: इस शुभ अवसर पर ही यदि राजकुमार विजय शर्मा का विवाह राजकुमारी चंद्रहासिनी के साथ संपन्न करा दिया जाए।
2: इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती
0: सम्राट। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली महाराज। अब इसमें विलम्ब कदापि न किया जाए। समस्त राजे महाराजे यहाँ हैं ही, अब हम सब धारा नगरी अपनी पुत्र वधू को लेकर ही जाएंगे।

अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से के अंतर्गत भुवन मोहिनी की 8वीं कड़ी, आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे वहां के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी आपूर्ति पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। अब पहले की तरह आपूर्ति बहाल हो गई है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति क्विज की शुरुआत कर रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन क्विज में अगले महीने की 15 तारीख तक भाग ले सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 45 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से होगा। और आईसीसी महिला 2020 विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय टीम रविवार को ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला करेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। इसी सुविचार के साथ आज का महिला सवाल लेकर मैं हूँ आपकी रेडियो मित्र मंजू व्यास। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहनों, इतिहास गवाह है कि जिसके इरादों में मजबूती रही उसने हमेशा जीत हासिल की। चाहे वह जीत सामाजिक हो, राजनीतिक हो, भावनात्मक हो या धार्मिक ही क्यों ना हो, ऐसा ही जीत हासिल करने और शहादत का एक पर्व है मुहर्रम। जी हाँ, मुहर्रम इस्लाम धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो हिजरी कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम उल हराम में मनाया जाता है। बहनों, ये महीना इस्लामी समुदाय के लिए गहरा धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि यह न केवल

नए साल की शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि यह उन घटनाओं को भी याद करने का समय है जो इस्लाम के इतिहास में अमर हो चुकी हैं। इस महीने की 10वीं तारीख, जिसे अशूरा के नाम से जाना जाता है, हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद दिलाती है। बहनों, इस महीने में पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन, उनके परिवार और अनुयायियों ने 680 ईस्वी में कर्बला के मैदान में यजीद की सेना के खिलाफ सत्य, न्याय और मानवता के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। कर्बला की घटना इस्लाम के इतिहास में एक ऐसी मिसाल है जो साहस, बलिदान और अन्याय के खिलाफ संघर्ष की भावना को दर्शाती है। हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की तानाशाही और अन्यायपूर्ण शासन के सामने झुकने से इनकार कर दिया और अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी। इस शहादत ने मुहर्रम को शोक, सम्मान और आत्मचिंतन का प्रतीक बना दिया। इस दिन लोग काले वस्त्र पहनते हैं, जो शोक का प्रतीक है, और कई स्थानों पर ताजिया निकाले जाते हैं। ताजिया कर्बला में शहीद हुए लोगों की कब्रों का प्रतीकात्मक रूप होता है, जिसे बड़े सम्मान के साथ जुलूस में ले जाया जाता है। ये जुलूस शांति और एकता के साथ आयोजित किए जाते हैं, जिसमें लोग मातम करते हैं और इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहनों, मुहर्रम पर्व केवल शोक मनाने का अवसर नहीं है, बल्कि उन लोगों को आत्ममंथन और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में सिद्धांतों और सत्य के लिए खड़ा होना कितना महत्वपूर्ण है, भले ही इसके लिए कितना भी बड़ा बलिदान क्यों ना देना पड़े। बहनों, कर्बला की घटना आज भी लोगों को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और मानवता की रक्षा के लिए प्रेरित करती है। ये पर्व हमें एकजुटता, करुणा और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश देता है, जो आज के समय में और भी प्रासंगिक है। तो चलिए हम भी इस पर्व को मनाते हैं इस गीत के माध्यम से।

0: बहनों, अभी हम सुन रहे थे जावेद अली और कैलाश खैर की आवाज में फिल्म दिल्ली 6 से ये गीत। प्रसून जोशी के गीत को संगीत से नवाजा था AR रहमान ने। बहनों, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा नजरिया जब कलम के सहारे कागज पर उतर आता है तो वो कविता का रूप ले लेता है। कविताएं समाज, देश, राष्ट्र और कवि की आत्मा का दर्पण होती हैं। कई बार कवि समाज के हर पहलुओं को समेटते हुए अपनी कविता के मोतियों को पिरो लेता है, और ये मोती जब एक माला में पिरोए जाते हैं तो वो काव्य पाठ का रूप ले लेते हैं। तो चलिए सुनते हैं कवियत्री इंदु प्रभा खरे से उनकी कविताएं। क्रम है काव्य पाठ।
1: मेरी प्रथम रचना नारी के संघर्ष, उसकी पीड़ा और उसके आत्मसम्मान की कथा कहती है, जिसे मैं इन पंक्तियों के साथ प्रारंभ करती हूँ। ठोकर खाकर भी अब जिसने संभल के चलना सीख लिया, अबला नहीं रही अब नारी, खुद को बदलना सीख लिया। मैं नारी हूँ, हर युग में इस भूमंडल पर क्या जीती हूँ क्या हारी हूँ। मेरा जीवन शीतल छाया ममता बनकर सब पर छाया, पर कलयुग की आंधी में क्यों मेरा जीवन ही मुरझाया। इसकी रक्षा की खातिर किसने सब कुछ अपना बार दिया, किसने इसको सम्मान दिया, किसने इसका है त्याग किया। युगों युगों से नारी जो संघर्ष और अपमान झेलती आ रही है, उसके लिए मैं लिखती हूँ। शतयुग में सती हुई नारी त्रेता में सीता वन हारी, द्वापर में भी द्रौपदी बनकर अपमान सहे बारी बारी, द्वापर में भी द्रौपदी बनकर अपमान सहे बारी बारी। अब कलयुग में आकर जिसने अबला बनना स्वीकार किया, जब युगों युगों तक उसको ये अपमान सहना पड़े, तब उसने कलयुग में क्या स्वीकार किया उसको भी देखिएगा। अब कलयुग में आकर जिसने अबला बनना स्वीकार किया, कलयुग के पथरीले पथ की पीड़ाओं को अंगीकार किया, कलयुग के पथरीले पथ की पीड़ाओं को अंगीकार किया, कि अन्नपूर्णा बनकर जिसने भोजन का हर एक ग्रास दिया, कि अन्नपूर्णा बनकर जिसने भोजन का हर एक ग्रास दिया, दहेज प्रथा की अग्नि ने फिर उसको ही आकर ग्रास लिया, दहेज प्रथा की अग्नि ने फिर उसको ही आकर ग्रास लिया। और जब उम्र थी खेल खिलौनों की तब बाल विवाह के फेरों ने बचपन भी जिसका छीन लिया, और कभी वृद्ध संग ब्याह रचा जीवन जिसका रंगहीन किया, और कभी वृद्ध संग ब्याह रचा जीवन भी जिसका रंगहीन किया। जब और नहीं कुछ शेष बचा तब चिता पर जिंदा बिठा दिया, जब और नहीं कुछ शेष बचा तब चिता पर जिंदा बिठा दिया, ढोल नगाड़े बजा बजा फिर शती प्रथा।

प्रथा का नाम दिया, ढोल नगाड़े बजा बजा फिर सती प्रथा का नाम दिया, सती प्रथा का नाम दिया। मेरी इन पंक्तियों में नारी पीड़ा की कहानी समाप्त होती है और नारी शक्ति के जागृत होते ही मैं क्या लिखती हूँ सुनिएगा। लेकिन चक्र चला फिर ऐसा, लेकिन चक्र चला फिर ऐसा, उसने पीड़ा को त्याग दिया, लेकिन चक्र चला फिर ऐसा, उसने पीड़ा को त्याग दिया, लेकर हाथों में अस्त्र शस्त्र शक्ति का फिर अवतार लिया, लेकर हाथों में अस्त्र शस्त्र शक्ति का फिर अवतार लिया। कलयुग में ही उसने अपने अपमान का फिर प्रतिशोध लिया, कलयुग में ही उसने अपने अपमान का फिर प्रतिशोध लिया, पहचान गई जो स्वयं को जब शक्ति का फिर आवाहन किया। इसलिए अब कहती हूँ, इसलिए अब कहती हूँ, नारी को अबला मत कहना, शक्ति का सागर है नारी, फूल भी है शूल भी है, दबी हुई है चिंगारी, छेड़ोगे खाक करेगी वह, अपना अपमान सहेगी वह, अपना अपमान सहेगी वह। श्रोताओं, अब तक आपने संघर्ष का स्वर सुना। अब प्रस्तुत है स्मृतियों और ब्रह की भावनाओं से ओतप्रोत मेरी अगली कविता, जिसका शीर्षक है तुम्हारी याद में। मैं अपनी द्वितीय रचना के लिए दो पंक्तियां कहती हूँ। वह दूर होकर भी हृदय के पास रहता है, वह दूर होकर भी हृदय के पास रहता है, हर याद में उसका ही एहसास रहता है, हर याद में उसका ही एहसास रहता है। सुनिए मेरी ये रचना। तुम ही

हैं। मैंने अभी हम सुन रहे थे काव्य पाठ। कवयित्री थी इंदु प्रभा खरे। मैंने आज की भागम भाग में हमारी जो दिनचर्या है वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। हम रात में देर से सोते हैं, सुबह देर तक सोते रहते हैं और कभी-कभी तो यूं ही पूरी रात कट जाती है और नींद हमारी आंखों से दूर भाग जाती है। जी हाँ, नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी, अत्यधिक काम का बोझ और डिजिटल दुनिया के प्रभाव के कारण कई लोग नींद की कमी से जूझ रहे हैं। ये समस्या आम हो चुकी है। ये केवल मनुष्य की उत्पादकता को प्रभावित नहीं करती, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। बहनों, तनाव और चिंता, व्यक्तिगत, पेशेवर या शैक्षिक तनाव नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। स्मार्टफोन, लैपटॉप और देर रात तक टीवी की नीली रोशनी हमारे स्कैंडियन रिदम यानी बायोलॉजिकल क्लॉक को बाधित करती है। मैनो, आज की अनियमित जीवन शैली नींद की कमी का एक मुख्य कारण है। कैफीन और अल्कोहल का अधिक सेवन करने से नींद की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। मैनो, नींद की कमी से लगातार थकान और ऊर्जा की कमी होती है, चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स, ध्यान केंद्रित ना करना और मेमोरी लॉस, सिरदर्द, आंखों में भारीपन और इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। यदि नींद की कमी को लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाए तो कई सारी गंभीर बीमारियां हमें अपने गिरफ्त में ले सकती हैं, जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी का बढ़ जाना, सोचने और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होना, स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर का खतरा भी बढ़ जाता है, डायबिटीज टाइप 2 की जो संभावना है वो अधिक हो जाती है, मोटापा और वजन बढ़ने की समस्या भी हो सकती है। इसके साथ ही सामाजिक, भावनात्मक और पेशेवर जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। कार्य क्षमता में कमी आती है, व्यक्तिगत रिश्तों में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है, खासकर वाहन चलाते समय। नींद की कमी से बचने के लिए सोने और जागने का समय आपको निर्धारित करना ही होगा। डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग सीमित करना होगा। सोने से कम 1 घंटे पहले मोबाइल, लैपटॉप और टीवी से आपको दूरी बनानी होगी। सोने के लिए अंधेरे और शांत वातावरण में रहना होगा। कमरे का तापमान भी नियंत्रित रखना होगा। योग और मेडिटेशन, ये दो ऐसे रामबाण हैं जिसका उपयोग करके आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं और अपनी नींद की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। अगर हमने ये सारी चीजें नहीं की तो हम यूं ही पूरी रात करवटें बदलते रहेंगे, कुछ इस तरह से।

0: मैंने अभी हम सुन रहे थे फिल्म आपकी कसम में किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये सुरीला सा गीत। आनंद बख्शी के गीत को संगीत से सजाया था आरडी वर्मन ने। मैंने आपने देखा होगा कि अभी गर्मियों में हमारी स्किन तो रूखी हो ही जाती है, हमारे बाल भी तेज धूप के कारण और पसीने के कारण झड़ने लगते हैं और हमारे बालों को भारी नुकसान भी गर्मी के मौसम में होता है और वे रूखे और बेजान हो जाते हैं। बालों को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा सल्फेट मुक्त और हाइड्रेटिंग शैम्पू का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। इसके अलावा आप मेथी को भिगोकर और एलोवेरा जेल को मिलाकर उसका पेस्ट बनाकर दोनों को अगर आप अपनी स्कैल्प पे लगाते हैं तो आपको ठंडक भी मिलेगी और बालों का रूखापन भी कम होगा और बाल झड़ेंगे भी कम। बाहर निकलते समय सिर को स्कार्फ या टोपी से ढकना बहुत जरूरी है और पर्याप्त मात्रा में जो पेय पदार्थ है, नारियल पानी है, गन्ने का जूस है, पानी है और इसके अलावा खीरा है, इन सब चीजों को हमें अपनी डाइट में शामिल भी करना होगा। नियमित रूप से हमें ट्रिमिंग करवाना चाहिए। बालों के दो मुहे सिरों को कटाने से बाल कम उलझते हैं और वे स्वस्थ रहते हैं और उनमें वृद्धि भी होती है। गर्मियों में पर्याप्त मात्रा में हमें पानी पीना चाहिए और बालों की यूवी सुरक्षा के लिए स्प्रे या सीरम का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाल धोने के लिए हमेशा ठंडे या सामान्य पानी का ही इस्तेमाल करें। ज्यादा गर्म पानी से बाल ना धोएं क्योंकि बालों की जड़ें गर्म पानी के संपर्क में आते ही कमजोर हो जाती हैं। बालों को झड़ने से रोकने के लिए अपनी डाइट में प्रोटीन युक्त आहार जैसे अंडे, मछली, दालें और हरी सब्जियों को भी हमें शामिल करना होगा। बाल धोने से पहले तेल से मालिश करें और पुदीना या एलोवेरा जैसे ठंडक देने वाले बालों के मास्क को आप लगा सकते हैं। ब्लो ड्रायर या स्ट्रेटनर जैसे हीट टूल्स का इस्तेमाल कम करें। बालों की सुरक्षा करें और खूबसूरत दिखें क्योंकि अच्छे घने लंबे काले बाल महिलाओं की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। मैंने आपसे बात करते करते मुझे समय का तो पता ही नहीं चला और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि मैं आपसे विदा लूं, लेकिन चलते चलते दो पंक्तियां आपके साथ। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब अनुमति दीजिए अपनी रेडियो मित्र मंजू व्यास को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र का योगदान था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है अंतराल का।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगी। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं अनु रैक्वार और साथियों की आवाज में।

ये गीत अभी आपने सुना बद्री प्रसाद खरे और उनकी साथियों की आवाज़ में। अब आपको सुनाते हैं अगला गीत पंचम सिंह सेंगर

और इसी गीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र का योगदान था।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगी। आइए आपको सुनवाते हैं रविंद्र दीक्षित की आवाज में ये भजन।

रविंद्र दीक्षित की आवाज़ में सुने आपने ये भजन। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र का योगदान था।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है वो कौन थी।

लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम वो कौन थी, संगीत दिया मदन मोहन ने और शब्दों में पिरोया था राजा मेहंदी अली खान ने।

और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में ही।

0: गले लग जा फिल्म से सुना भी आपने गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत दिया था आर डी बर्मन ने और शब्दों में पिरोया था साहिल लुधियानवी ने। और इसी के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके प्रयास एक मजबूत, स्वस्थ और नशा मुक्त भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने सभी से जागरूकता फैलाने, नशा मुक्ति में लगे लोगों का समर्थन करने और युवाओं को नशे की बजाय आशा, स्वास्थ्य और उद्देश्य को चुनने के लिए प्रेरित करने हेतु एकजुट होने का आग्रह किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का खतरा राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, आर्थिक हितों और युवाओं तथा देश के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस युद्ध को जीतने के लिए एक मंच पर एकजुट होने का आग्रह किया।
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। हालांकि जैव दवाइयों और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाइयों के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिया निकाले जा रहे हैं। कर्बला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए मजलिसें और धार्मिक सभाएं भी आयोजित की जा रही हैं। सतना जिले में मुहर्रम का पर्व परम्परागत तरीके से मनाया जा रहा है। आगरमालवा जिले में ताजियों के जुलूस को सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम

किए गए हैं। जबलपुर में हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में विशेष इबादत कर देश में अमन चैन, भाईचारे और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। बात मौसम की। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले दो दिनों में इसके भोपाल और उज्जैन संभाग तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में प्री मानसून और मानसूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभाग ने आज प्रदेश के 45 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों को खेती किसानी से जुड़ी आधुनिक और वैज्ञानिक जानकारियां दी जा रही हैं। पन्ना जिले के बीहरपुरवा गांव में कुआं खोदने के दौरान मिट्टी धंसने से 5 मजदूरों की मौत के बाद विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने शोकाकुल परिवारों से मुलाकात की और झाबुआ कलेक्टर की अध्यक्षता में आज जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की प्रबंधन समिति की बैठक में नोडल अधिकारी ने दिव्यांगजनों के कल्याण की गतिविधियों की जानकारी दी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आप सुनेंगे कुछ ही देर में दोपहर समाचार जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए, इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
2: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
2: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती हैं। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल

0: यानी एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। एसआईटी ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
1: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
2: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी दो दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
3: For our business, FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
0: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
3: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
0: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन एससीओ महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 MCC C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
4: भारत आज बिलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग

ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप D के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। नमस्कार साथियों, आपके साथ हूँ कार्यक्रम में मैं अनुजा। तो इस कार्यक्रम में आपके द्वारा भेजे गए जो बड़े ही प्यार से जो आप हमें पत्र लिखते हैं वो पत्र हम आपको यहाँ पढ़ के सुनाएंगे और आपके पसंद के गीत आप तक पहुँचाएंगे। तो चलिए बिना देर करे हम आपको सुनाते हैं पहला पत्र। हमें भेजा है जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड के पास खेलई जिला सागर से लक्ष्मण रेखवार ने, साथी में श्रीमती विनीता रेखवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी अनरथ रेखवार, हल्ले ऋषि रेखवार ने बंडा से, और उन वो चाहते हैं, उनकी फरमाइश है कि हम उन्हें दीवार फिल्म का गीत सुनाएं। तो अब उन्होंने फरमाइश की है और हम उसे पूरा ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए आपकी फरमाइश कार्यक्रम का पहला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

अभी आपने सुना दीवार फिल्म से गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में, साहिर के बोल थे और संगीत दिया था आर डी बर्मन ने, और इस गाने की फरमाइश करी थी बंडा से लक्ष्मण रैकवार और उनके परिवार ने। तो देखिए, हमने आपकी फरमाइश पूरी करी, अब चलते हैं अगली फरमाइश की ओर। ये पत्र हमें भेजा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने, और वो सुनना चाहते हैं याराना फिल्म से गीत किशोर कुमार की आवाज़, और गाने के बोल हैं छू कर मेरे मन को। जी, आपका पत्र भी हमें इसी तरह से हमारे मन को छूते हुए जाता है। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

किशोर कुमार की आवाज़ में सुना अभी आपने गीत फिल्म याराना से, बोल थे अनजान के और म्यूज़िक दिया था, संगीत दिया था राजेश रोशन ने, और आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश। तो आइए देखते हैं अगला पत्र हमें किसने और कहां से भेजा है। अगला पत्र हमें भेजा है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से, राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये ने, और वो सुनना चाहते हैं फिल्म धर्मवीर से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ओ मेरी महबूबा गीत। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं उनकी पसंद का ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुना भी आपने गीत फिल्म धर्मवीर से, आनंद बख्शी के बोल थे और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और ये फरमाइश की थी डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से गजबीये परिवार ने। तो चलिए अब आपको बताते हैं, अगला पत्र हमारे पास आया है नेपाल पैलेस सागर से, तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने हमें ये पत्र भेजा है और वो चाहते हैं कि हम उन्हें अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म से गीत सुनाएं, जिसके गायक हैं नीरज श्रीधर, सुजैन डी मेलो और बोल हैं प्रेम की नैया। तो आइए अब आपको सुनाते हैं उनकी पसंद का ये गीत।

नीरज श्रीधर की आवाज़ में सुना आपने ये गीत, नीरज श्रीधर और सुजन डीमेलो की आवाज़, और बोल थे इरशाद कामिल के, संगीत दिया था प्रीतम ने और फिल्म का नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी, और ये गीत फरमाइश की थी नेपाल पैलेस सागर से। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम में हमारे पास अगला पत्र किसका आया है। हमें अगला पत्र भेजा है, उन्होंने नमस्कार लिखा है, तो हम आपको यहाँ से नमस्कार करते हैं। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धा नंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य और पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित और प्रतीक आर्य ने, उन्होंने नीचे लिखा है, हमारी फरमाइश किसी भी फिल्म के साथ पूरी करने का कष्ट करें। अरे कष्ट नहीं, हमें बहुत सुख महसूस होता है, खुशी होती है हमारे श्रोताओं के लिए उनकी पसंद के गीत सुनाने में। तो चलिए बिना देर करे आपको गीत सुनाते हैं हमारी पसंद का, हमें उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा।

उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में सुना भी आपने गीत फिल्म खाकी से, समीर के बोल थे और संगीत दिया था राम संपत ने। और इसी के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का खतरा राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, आर्थिक हितों और युवाओं तथा देश के भविष्य के लिए खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। अमरीका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने

34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकियों को सशक्त बनाने के लिए अमरीका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी रचनाओं ने पीढ़ियों से भारतीयों में देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव की भावना को जागृत किया है। भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से होगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 45 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आइए सबसे पहले आज की सांधिकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण आपको दे दें। सबसे पहले आपको आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे देते हैं। युवा साथी सुन सकते हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी ठीक शाम 5:02 पर। वहीं शाम 6:00 सुनिएगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। सुर्खियों में कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 8:00, रात 8:00। खेल जगत कार्यक्रम सुनेंगे आप ठीक रात में 9:30 पर, जिसमें आप सुनेंगे बेस्ट लिफ्टर ऑफ मध्य प्रदेश से सम्मानित भोपाल के पावर लिफ्टर अभिषेक बघेल से बातचीत। रात 10:00 सुनिएगा आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिएगा कलाकार राजेंद्र व्यास का वायलिन वादन, राग होगा पूरिया धनाश्री। आकाशवाणी भोपाल से सुन सकते हैं कार्यक्रम ग्राम सभा ठीक रात में शाम 7:21 पर। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान DTH के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगी। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं पंचम सिंह सेंगर और साथियों की आवाज में ये गीत।

0: होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:02 हुए हैं और यह समय होता है युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युववाणी का। आज की युववाणी आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे युवाणी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ पारुल पटेरिया, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तो हमारी आज की पहली जानकारी होगी मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। साथियों, मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जून यानी आज ही के दिन मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना और अवैध तस्करी को रोकना है। साथियों, मादक द्रव्यों का सेवन व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। इससे अनेक बीमारियां और मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नशे की लत व्यक्ति की कार्य क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। इससे उसका भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। साथियों, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग परिवार में तनाव और आर्थिक समस्याएं पैदा करता है। इसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। अवैध तस्करी समाज में अपराध और हिंसा को बढ़ावा देती है। इससे सामाजिक सुरक्षा और शांति प्रभावित होती है। साथियों, युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। सही शिक्षा और मार्गदर्शन उन्हें इस बुराई से बचा सकते हैं। साथियों, सरकार और विभिन्न संस्थाएं नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाती हैं। इन प्रयासों से लोगों को नई दिशा मिलती है। साथियों, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को नशे के विरुद्ध जागरूकता फैलाने में योगदान देना चाहिए। सामूहिक प्रयास से इस समस्या को कम किया जा सकता है। खेल, शिक्षा और रचनात्मक गतिविधियां युवाओं को नशे से दूर रखने में मदद करती हैं। ये सकारात्मक जीवन शैली को भी बढ़ावा देती है। साथियों, ये दिवस नशा मुक्त और सुरक्षित समाज के निर्माण का संदेश देता है। सभी को मिलकर मादक द्रव्यों के

उपयोग और तस्करी का विरोध करना चाहिए। साथियों, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग और अवैध तस्करी समाज के लिए गंभीर चुनौती है। जागरूकता, शिक्षा और सामूहिक प्रयासों से ही नशा मुक्त एवं स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। इसी के साथ कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आपको दे देते हैं एक और जानकारी मुहर्रम विषय पर। साथियों, मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना होता है। ये त्याग, सत्य और बलिदान की याद दिलाता है। मुहर्रम इस्लाम का पवित्र महीना माना जाता है। ये नए इस्लामी वर्ष की शुरुआत करता है। साथियों, इस महीने में हजरत इमाम हुसैन को याद किया जाता है। उन्होंने सत्य के लिए बलिदान दिया था। साथियों, मुहर्रम की 10वीं तारीख को आशूरा कहा जाता है। इसका विशेष धार्मिक महत्व है। लोग इमाम हुसैन की शहादत को श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं। इससे त्याग की प्रेरणा मिलती है। साथियों, कई स्थानों पर ताजिए भी निकाले जाते हैं। इनमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। इस अवसर पर धार्मिक सभाओं का आयोजन भी किया जाता है। इनमें इमाम हुसैन के जीवन पर चर्चा की जाती है। साथियों, मुहर्रम में अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की शिक्षा देता है। ये सत्य और न्याय का संदेश भी देता है। लोग गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता भी करते हैं। इससे मानवता और भाईचारे की भावना बढ़ती है। ये पर्व धैर्य, साहस और त्याग का प्रतीक है। इससे नैतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। साथियों, मुहर्रम सभी को शांति और सद्भाव का संदेश देता है। ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर है। साथियों, मुहर्रम त्याग, सत्य और मानवता का संदेश देने वाला पवित्र अवसर है। ये हमें अच्छे मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है। साथियों, ये तो थी एक जानकारी मुहर्रम विषय पर। कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम करवा देते हैं आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म रेस से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी आतिफ असलम की, गीतकार थे समीर और संगीत से सजाया था प्रीतम ने। साथियों, कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आपको सुनवा देते हैं वार्ता रक्तदान का महत्व विषय पर, जिसमें वार्ताकार होंगी अंशिका चतुर्वेदी।
1: रक्तदान को महादान कहा जाता है। संसार में अनेक प्रकार के दान किए जाते हैं, जैसे अन्नदान, वस्त्रदान और धनदान, लेकिन रक्तदान एक ऐसा दान है जो सीधे किसी व्यक्ति का जीवन बचा सकता है। रक्त का निर्माण किसी फैक्ट्री में नहीं किया जा सकता है, इसका एकमात्र स्रोत मानव शरीर ही है। इसके लिए जब किसी मरीज को रक्त की आवश्यकता होती है, तब केवल एक रक्तदाता ही उसकी सहायता कर सकता है। हमारे देश में प्रतिदिन हजारों लोगों की दुर्घटना, गंभीर बीमारियां, ऑपरेशन और अन्य चिकित्सा स्थितियों के कारण रक्त की आवश्यकता पड़ती है। कई बार समय पर रक्त न मिलने के कारण लोगों की जान भी चली जाती है। ऐसे समय में रक्तदान करने वाला व्यक्ति किसी अनजान इंसान के लिए जीवनदाता बन जाता है। रक्तदान का सबसे सुंदर पहलू यह है कि इसमें ना तो धन की आवश्यकता होती है और ना ही किसी विशेष साधन की। कुछ मिनट देकर हम किसी का जीवन बचाने में योगदान दे सकते हैं। एक यूनिट रक्त कई लोगों के उपचार में उपयोगी हो सकता है। कुछ लोगों के मन में यह भ्रम होता है कि रक्तदान करने से शरीर कमजोर हो जाता है। वास्तव में स्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित होता है। मानव शरीर में कुछ समय में रक्त की कमी को पूरा कर लेता है, इसलिए डॉक्टरों की सलाह के अनुसार किया गया रक्तदान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं माना जाता है। रक्तदान हमें सामाजिक जिम्मेदारियों का भी एहसास कराता है। यह हमें सिखाता है कि केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी किया जाए। रक्तदान करने वाला व्यक्ति जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र की सीमाओं के ऊपर उठाकर मानवता की सेवा करता है। जब किसी मरीज को रक्त चढ़ाना जाता है, तब यह नहीं देखा जाता है कि रक्तदाता कौन था। वहाँ केवल एक ही पहचान होती है, मानवता। आज के समय में युवाओं की भूमिका रक्तदान के लिए क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। अधिक से अधिक युवा नियमित रूप से रक्तदान करें तो रक्त की कमी की समस्या काफी हद तक दूर हो जाती है। स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संस्थाओं को भी लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। रक्तदान केवल किसी की जान बचाने का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारे भीतर दया, करुणा और सेवा की भावनाओं को भी विकसित करता है। जब हमें पता चलता है कि हमारे द्वारा दिया गया रक्त किसी व्यक्ति का जीवन बचाए, तो संतोष और खुशी मिलती है। उसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता है। रक्तदान एक महान कार्य है। यह निस्वार्थ सेवा, मानवता और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रतीक है। हमें रक्तदान के महत्व को समझना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि किसी की जान बचाने से बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होता है। रक्तदान महादान है, क्योंकि आपका थोड़ा सा रक्त किसी के लिए नया जीवन बना सकता है। एक बूंद रक्त अनेक जीवन का आशा। रक्तदान महादान, इससे बचती है किसी की जान। रक्तदान जीवन दान, मानवता की असली पहचान। आपका थोड़ा सा रक्त किसी को दे सकता है पूरा जीवन। आपका थोड़ा सा रक्त किसी को दे सकता है पूरा जीवन। खून का कोई विकल्प नहीं होता है। आपकी नसों किसी और की उम्मीद बन सकती हैं। आपकी नसें किसी और की उम्मीद बन सकती हैं। पैसा तो हर कोई कमाता है, कभी किसी की जिंदगी देकर

अमीर बनाई है। जाति और धर्म की दीवार टूट जाती है जब एक का रक्त दूसरों की रगों में दौड़ता है। रक्तदान करने से दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम होता है, शरीर में आयरन का स्तर संतुलित रहता है और नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके अलावा इससे लगभग 650 कैलोरी बर्न होती हैं और मुफ्त स्वास्थ्य जांच जैसी ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन की जांच लाभ मिलता है। रक्तदान करने से आपका स्वास्थ्य और समाज के कई प्रमुख लाभ मिलते हैं। नियमित रक्तदान से खून में आयरन की मात्रा संतुलित रहती है, जिससे दिल की बीमारियां और दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम होता है। एक बार ब्लड डोनेट करने पर 650 कैलोरी तक बर्न होती है। रक्तदान को समाज में महादान कहा जाता है, क्योंकि ये मरते हुए व्यक्ति को नया जीवन देने की क्षमता रखता है। मानव शरीर में रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है, इसे फैक्ट्री में नहीं बनाया जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि रक्तदान करने से शरीर में कमजोरी आ जाती है, लेकिन यह तो पूरी तरीके से गलत फहमी है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है, जिसके दान के दौरान केवल छोटा सा हिस्सा 350 से 400 मिलीलीटर ही लिया जाता है। हमारा शरीर इस खून की भरपाई कुछ ही दिनों में खुद ब खुद कर लेता है। रक्तदान करने से कई स्वास्थ्य लाभ भी होता है। इससे शरीर में नए रक्त कण का निर्माण होता है, दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है और शरीर में आयरन की मात्रा संतुलित रहती है। रक्तदान है सबसे बड़ा उपहार, इससे मिलता है जीवन को नया आधार। सबसे खूबसूरत बात यह है कि रक्त किसी जाति, धर्म, लिंग को नहीं देखता है। एक अनजान व्यक्ति द्वारा दिया गया खून किसी भी जरूरतमंद की रगों में दौड़कर उसकी जान बचा सकता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि जब हम शारीरिक रूप से सक्षम हो तो नियमित रूप से रक्त दान करें। हमारा छोटा सा प्रयास यह है कि घर का चिराग बुझने से बचा सकता है और समाज का अनमोल कड़ी की मजबूत कर सकता है। चिकित्सा विज्ञान में आज दुनिया में कितनी भी प्रगति कर ली हो, लेकिन वह प्रयोगशाला में खून बनाने में अब तक असमर्थ है। प्रगति ने यह व्यवस्था केवल इंसानी शरीर के भीतर ही रखी है। इसका सीधा और सरल मतलब यह है कि अगर आज अस्पताल में किसी जिंदगी और मौत के बीच जूझते मरीज को खून की आवश्यकता है, तो उसकी जान केवल दूसरा इंसान के खून से ही बचाई जा सकती है। यही कारण है रक्तदान सिर्फ एक दान नहीं बल्कि महादान और जीवन दान का दर्जा दिया जाता है। जब हम रक्तदान करते हैं तो केवल कुछ मिलीलीटर तरल पदार्थ नहीं ले देते, बल्कि किसी निराश परिवार को उम्मीद, किसी बच्चे को उसका माता पिता और किसी माता पिता को उसका बच्चा सौंपते हैं। आज भी हमारे समाज में जागरूकता की कमी के कारण लोग रक्त दान करने से कतराते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि खून देने से शरीर में कमजोरी आ जाएंगी, बीमार पड़ जाएंगे और उनका वजन कम हो जाएगा। विज्ञान और डॉक्टरों के अनुसार ये पूरी तरह से गलत है। एक स्वस्थ के शरीर में लगातार पुराना खून नष्ट होता रहता है और नया खून बनता रहता है। जब हमारे रक्तदान करते हैं तो हमारे बोन मैरो सक्रिय हो जाता है और तेजी से नई स्वस्थ रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। दान किए गए रक्त के तरल भाग प्लाज्मा की पूर्ति हमारे शरीर 24 से 48 घंटों में पानी और तरल पदार्थ के माध्यम से कर लेता है। हृदय स्वास्थ्य में सुधार। शरीर में आयरन की मात्रा अधिक होने से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है। रक्तदान करने से शरीर में आयरन का स्तर संतुलित रहता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा काफी कम हो जाता है। निशुल्क स्वास्थ्य जांच। रक्तदान करने से पहले हर दाता के खून की कई महत्वपूर्ण जांच जैसे हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, HIV आदि बिल्कुल मुफ्त की जाती है, जिससे अनजाने में भी सही शरीर की सेहत का पता चल जाता है। रक्त की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका कोई मजहब, जाति या रंग नहीं होता है। नस में बहने वाला लाल रंग यह कतरा हर इंसान का एक जैसा ही होता है। किसी हिंदू का रक्त किसी मुस्लिम की जान बचा सकता है और किसी अमीर का रक्त किसी गरीब का काम आ सकता है। यह बिना किसी भेदभाव के समाज को आपस में जोड़ने का सबसे बेहतरीन जरिया है। आपका रक्तदान किसी के चेहरे की मुस्कान। 18 वर्ष से 65 वर्ष की आयु का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसका वजन 45 किलोग्राम से अधिक हो, हर 3 महीने में सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकता है। हमें अस्पतालों में खून की कमी के कारण किसी को दम तोड़ते हुए देखने का इंतजार नहीं करना चाहिए। रक्तदान को हमें जीवन का एक नियमित हिस्सा और कर्तव्य बनाना चाहिए। आइए संकल्प लेते हैं कि स्वयं भी रक्तदान करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी पुनीत कार्य के जागरूक करेंगे, क्योंकि आपका दिया हुआ रक्त किसी के बुझते हुए जीवन के दीपक को दोबारा रोशन कर सकता है।
अगर गहराई से सोचा जाए तो ईश्वर ने इंसान को कई अनमोल उपहार दिए हैं, जिसमें से जीवन सबसे अनमोल है। लेकिन उससे भी खूबसूरत बात यह है कि ईश्वर ने इंसान को ऐसी

0: क्षमता दी है जिससे वह दूसरे व्यक्ति को मरते हुए देखकर दोबारा जीवन का उपहार दे सकता है। इसी क्षमता का नाम है रक्तदान।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता रक्तदान का महत्व विषय पर, जिसमें वार्ताकार थी अंशिका चतुर्वेदी। तो साथियों, कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम करवा देते हैं आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म टाइगर जिंदा है से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी आतिफ असलम की, गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीत से सजाया था विशाल शेखर ने। तो साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आपको दे देते हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी। वृक्षा

रोपण का महत्व विषय पर। साथियों, वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। वृक्ष हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं और प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। साथियों, वृक्ष हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, इससे जीवन संभव हो पाता है। पेड़ वायु प्रदूषण को कम करने में सहायता करते हैं, वे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। साथियों, वृक्ष वर्षा चक्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इससे जल की उपलब्धता बनी रहती है। पेड़ मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं, इससे भूमि की उर्वरता सुरक्षित रहती है। साथियों, वृक्ष अनेक पक्षियों और जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं, वे जैव विविधता की भी रक्षा करते हैं। साथियों, पेड़ गर्मी को कम करके वातावरण को ठंडा रखते हैं, इससे जलवायु संतुलित रहती है। वृक्ष फल फूल लकड़ी और औषधियाँ प्रदान करते हैं, ये मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथियों, वृक्षारोपण से हरियाली बढ़ती है और प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होती है, इससे पर्यावरण आकर्षक बनता है। साथियों, अधिक वृक्षारोपण से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, इससे वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। साथियों, वृक्षारोपण आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करता है, ये हमारा सामाजिक और नैतिक कर्तव्य है। साथियों, वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाकर उनकी देखभाल करनी चाहिए। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी वृक्षारोपण का महत्व विषय पर। तो साथियों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको बता देते हैं हमारी आज की रोजगार सूचना। RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट एंड थर्ड। पदों की संख्या है 6,565। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियम अनुसार दी जाएगी। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 30 जून 2026 एवं अंतिम तिथि है 29 जुलाई 2026। शैक्षणिक योग्यता BE, BTEC, इंजीनियरिंग डिप्लोमा या इंजीनियरिंग में BSc की डिग्री होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.indianrailways.gov.in पर विजिट करें। तो साथियों, इसी के साथ अब दीजिए अपने मित्र पारुल पटेरिया को इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युववाणी। आज की युववाणी आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:33 हो गए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कमांडर में मनहर उदास और साथियों को अनजान का लिखा हुआ गीत है। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, सुनते हैं ये गीत है।

इस गमजदा गाने के बाद में अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं आग और शोला फिल्म का। आवाज़ें हैं मोहम्मद अजीज़, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत है। सुनते हैं गीत।

आग और शोला इस फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। आवाज़ मनहर उदास, अनुराधा पौडवाल और साथियों की है। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म अग्नि से, आवाज़ मोहम्मद अजीज़ और अलका याग्निक की हैं। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनिए ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:55 हुए हैं। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
3: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
3: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को।

0: अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक।
2: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
1: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन?
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
2: आपके साथ
1: आकाशवाणी।
4: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस वक्त हमारी घड़ी में 5:58 हुए हैं और ये समय होता है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशेल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकियों को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC ने नया पर्यटन सर्किट डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर आरंभ किया है। इस 11 दिन के रेल यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों को उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के प्रमुख तीर्थस्थलों पर जाने का मौका मिलेगा। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में कहा कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारत आज बेलकास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से होगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 45 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटियाकला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं

0: हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं, और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवा कोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है, और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा।

0: इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
0: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
0: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
0: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
2: Stephen, happy birthday to you!
3: Happy birthday to you, Stephen!
4: How are you? Happy birthday, Stephen! Thank you, Thomas.
5: Congratulations!
4: Thank you, John. Thank you so very much. Hi, Martin. How are you?
2: Oh, fine.
4: Thanks for coming in. Please come in. Please.
3: Oh, sure. Yes. Why not?
2: Come. Hey.
3: Come.
2: John, please come here.
3: Oh, sure. Yeah.
4: Join us for a drink, please.
1: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
6: हाँ

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?

0: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
1: नहीं नहीं,
0: देखिए आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
1: ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं।

0: 1985 में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
1: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
1: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
2: प्रोफेसर डेनिस
3: जी,
2: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
3: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
2: ओह।
3: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
2: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
3: जी।
2: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
3: तो लीजिए सुनिए।
4: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
1: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
0: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
1: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
0: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
5: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
1: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
0: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
6: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं, जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो।

0: आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
1: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
2: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
3: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
4: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
1: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
3: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहां स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
1: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
6: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली। गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
7: आग का गोला?
6: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दू प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
8: सूरज।
6: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो,
9: बहुत आसान पूछते हो।
6: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं है।
9: अगली बार में बहुत मुश्किल।
6: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूं, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियां तुम्हारे पास होती है ना?
9: हाँ।
6: मैं कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
9: मुझे पता है, सूरज आग का गोला होता है।
6: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
10: वो तारा होता है।
6: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
11: वो रात और दिन भी बनाता है।
6: एकदम सही एकदम
10: सही। वो हमें धूप भी देता है।
6: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
9: धूप से एक ना अच्छी बात भी होती है।
6: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
9: विटामिन डी।
6: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश बहुत अच्छे।
10: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
6: हाँ हाँ बिल्कुल,
9: पेड़ों को खाना भी देता है।
6: बिल्कुल एकदम

0: ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
1: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
0: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं। और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
1: हाँ।
2: जब ही तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
0: हाँ, हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर,
1: हाँ।
0: इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
1: मौसी, जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
0: हाय हाय, क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और
1: हाँ।
0: कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं, चलती हुई ट्रेन से,
1: हाँ।
0: तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ
1: हाँ।
0: चल रहे हैं।
1: हाँ।
0: लगता है ना,
1: वो तेज चलती है तो ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
3: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
0: ना।
3: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
0: हाँ, और सर्दियों में अच्छा लगता।
1: हाँ।
0: तो बच्चों, सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
1: मौसी, वो बहुत बड़ा भी होता है।
0: बहुत बड़ा होता है
3: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
0: हम क्योंकि कई
1: दूर होता है इसलिए
0: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देख लें।
1: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
0: हाँ,
3: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
0: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
4: सर्दी।
0: ऐसी वाली सर्दी ना।
1: हाँ।
0: अच्छी लगती है सर्दी।
1: हाँ। पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
0: हाँ, शुक्र है गर्मी में नहीं लगती
3: नहीं करता।
0: है। सूरज आग का गोला, लेकिन
4: सूरज आग का गोला लेकिन
0: फिर भी जीवन दाता है।
4: फिर भी जीवन दाता है।
0: धरती काटे चक्कर इसके।
4: धरती काटे चक्कर इसके।
0: लगे ये चलता जाता है।
4: लगे ये चलता जाता है।
0: सर्दी गर्मी बनते इससे।
4: सर्दी गर्मी बनते इससे।
0: ये दिन रात बनाता है।
4: ये दिन रात बनाता है।
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
4: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
0: सूरज ये
4: कहलाता है।
0: शाबाश, सूरज ये कहलाता है। सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
1: मौसी, एक और पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
3: जल्दी आना मौसी।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
1: हमने देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई। मैं कल आऊँ कि नहीं आऊँ?
1: वो भी दस
0: पहेलियाँ। अच्छा चलो, मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना।
1: मौसी
0: डर जाती
1: है। और आपके कोई मिला के 70 हो जाएंगे।
0: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
3: नहीं, 80 हो जाएंगे।
0: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे मैं जा रही हूँ। टाटा बाय बाय।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। मीडियम वेव DTH का ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:30 हुए हैं और ये समय है फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभिलाषा फिल्म का एक गाना। मजरूर सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है और RD बर्मन का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म पूनम से, आवाज़ एक बार फिर मोहम्मद रफ़ी की है। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है और अनु मलिक का संगीत है। सुनिए ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म रातों के राजा से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, मजरूर सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, आर डी बर्मन का संगीत है, सुनिए ये गीत।

अगला गाना है फिल्म शान से, आवाज़ किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और साथियों की हैं। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, आर डी बर्मन का संगीत है। सुनिए ये गीत।

0: ये गाना था फिल्म हमराज का, आवाज़ें थी आशा भोसले और महेंद्र कपूर की। साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा था, रवि का संगीत था। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7 बजने को हैं। यह समय होता है हिंदी में समाचार का, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा करें हिंदी में समाचार के लिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
4: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
3: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक

न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बी एल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। भारत ने ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 MCC C-17 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यिजांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग करने की अपार संभावनाएं हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई नवाचार पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई। कोलकाता की ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और आयरलैंड के बीच जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:05 हुए हैं। आइए कार्यक्रम विवरण हम आपको बताते हैं। आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का, अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:21 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा। 8 का समय है कार्यक्रम सुर्खियों का, तो आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। 9:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम खेल जगत, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे भेंट वार्ता। बेस्ट लिफ्टर ऑफ मध्य प्रदेश से सम्मानित भोपाल के पावर लिफ्टर अभिषेक बघेल से बातचीत। 9:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 10 आपकी फरमाइश। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे राजेंद्र व्यास का वायलिन पर बजाया राग पूनिया धनाश्री। ये थे आज के शेष मुख्य कार्यक्रम जो आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होना है। अब हम नजर डालते हैं कल यानी शनिवार को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। पहले आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कल के मुख्य

0: कार्यक्रम। 11 बजे आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम, बात आपकी गीत हमारे। 12 बजे का समय है आपकी फरमाइश का और 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत भुवन मोहिनी की नवी कड़ी। 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम, 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम और युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा और ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होंगे। हम आपको एक बार फिर बता दें कि 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम, 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम और युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा और ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति हैं। दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। हम आपको याद दिला दें कि कल आप 2 बजे फिल्म संगीत सुन सकते हैं, 5:33 पर सुन सकते हैं, शाम 6 बजे सुन सकते हैं और रात 8:15 पर फिल्म संगीत का आनंद ले सकते हैं और दोपहर 2:30 पर होगा आपकी फरमाइश। किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा रोज की तरह 7:21 पर होगा और 7:45 पर हम आपको सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। 8 बजे आप सुन सकते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में और 8:15 पर हम आपको सुनवाएंगे प्रकृति की बात। आपके साथ ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले होगा और 9:30 पर विज्ञान भारती, ये कार्यक्रम भी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। 10 बजे का समय है संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कल के कार्यक्रम और अब आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कल के मुख्य कार्यक्रमों पर एक नजर डालते हैं। 7:20 पर सुबह आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। 8:30 पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। लोक संगीत का कार्यक्रम में आप सुनेंगे अर्चना सिंह के गाए बघेली लोकगीत 9:15 पर। इनसे मिलिए ये कार्यक्रम होगा 9:30 पर, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे भेंट वार्ता चित्रकार और बाल साहित्यकार अनिता सक्सेना से अमिता त्रिवेदी की बातचीत। 10 बजे जिले की चिट्ठी, 10:05 पर फिल्म गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत सागर और 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला के अंतर्गत रत्नाकर व्यास का सरोद पर बजाया राग नट भैरव। और कल शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल का कार्यक्रम होगा ग्राम सभा। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले आज और कल के मुख्य कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 7:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने आज आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ सेनानियों को सम्मानित किया। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के

0: राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय रक्षा दलों का एक दल भारतीय नौसेना के दो जहाजों के साथ समारोह में भाग लेगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी से बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। श्री मोदी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा के नशा मुक्त भारत के निर्माण के महत्व पर लिखे एक लेख को साझा करते हुए ये बात कही। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सूचना सही समय पर साझा करने से सरकार को मामलों की प्रभावी निगरानी और आवश्यक परामर्श देने में मदद मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती हैं। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमें करनी पड़ेगी।
0: प्रदेश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिए छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संदेश में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस हमें जागरूक करता है कि नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सजग करते हुए नशा मुक्त समाज के निर्माण में योगदान दें और स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त राष्ट्र के संकल्प को साकार करने में अपनी भागीदारी निभाएं।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में आज लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले मीसा बंदियों के अखिल भारतीय संगठन लोकतंत्र सेनानी संघ मध्य प्रदेश के तत्वाधान में आयोजित इस सम्मेलन में प्रदेश भर के करीब 2000 लोकतंत्र सेनानी और उनके परिजन शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ सेनानियों का शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों के लिए कई घोषणाएं भी की।
3: लोकतंत्र सेनानियों को स्पेशल ट्रेन कर देंगे, आप आराम से जहां आपको यात्रा करना है सरकार के माध्यम से आपकी यात्रा कराएंगे। आपने रेस्ट हाउस सर्किट हाउस में 2 दिन निःशुल्क रुकने की बात कही, निश्चित रूप से मैं रुकने के लिए व्यवस्था करने की घोषणा करता हूं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, लोकतंत्र सेनानियों के इलाज के लिए जो खर्चा लगेगा सरकार देने के लिए तैयार रहेगी और ऐसे में कभी कोई गंभीर बीमारी पड़ी और वहां राज्य के उस अस्पताल में इलाज नहीं है तो हमारी एयर एम्बुलेंस निःशुल्क लेकर के आएगी और उनका इलाज कराएगी। ये व्यवस्था भी हमारी सरकार के माध्यम से होगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य जन स्वास्थ्य और उपभोक्ता सुरक्षा के लिए कड़े सुरक्षा

सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना है। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिया निकाले जा रहे हैं। भोपाल में हजरत इमाम हुसैन की शहादत को लेकर मुहर्रम पर्व अकीदत और गमी माहौल में मनाया गया। शिया समुदाय ने शहर में मातमी जुलूस निकाला, वहीं सुन्नी समुदाय की ओर से रोजा रखकर घरों में इबादत की गई। नर्मदापुरम में विभिन्न स्थानों से ताजियों और सवारियों का जुलूस निकाला गया। बात मौसम की। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले दो दिनों में इसके भोपाल और उज्जैन संभाग तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में प्री मानसून और मानसूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 45 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। आगरमालवा और सीहोर में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में हल्की से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा सांसद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में पेयजल, स्वास्थ्य, सिंचाई और ग्रामीण सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सीहोर जिले के आष्टा स्थित देवांचल धाम देवबड़ला बिलपान में प्रदेश का पुरातत्व विभाग जल्द ही रुके हुए विकास कार्यों को दोबारा शुरू करने जा रहा है। शहडोल और झाबुआ जिलों में साइबर ठगी से बचाने के लिए और डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैंकर सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। कटनी के विजय राघवगढ़ वन्य क्षेत्र में 14 वन्य जीव एक साथ मृत पाए गए हैं, जिनमें 12 चीतल और 2 सांभर हैं। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और आगरमालवा जिले में कल आयोजित हुए शिविर में पुलिस अधीक्षक ने आमजनों को ऑनलाइन ठगी, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी लिंक और सोशल मीडिया हैकिंग से बचने के प्रभावी उपाय बताए। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने आज आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ सेनानियों को सम्मानित किया और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

चौपाल के सब सुनैया भैया बहनिन का उर्मिला बहनी के राम राम। भैया बहनी यह समय गर्मी खूब ही के तनी जून बदरियात है पै अभी पानी नहीं बरसे कहों कहों थो थार बरसतो है। भैया बहनी कहा थे न कि आज आधा जेठ अषाढ़ कहावे अब जेठ के महीना उतरे लाग है और अषाढ़ के महीना के आगमन हो लाग है तो बरसात हों कचा।

हमार भैया बहनी हरे चौमासे के खेती के तर तैयारी में लग गए हैं। धान के रोपा के बेहन परे लागे हैं। जिनके लगे पानी के साधन है, भैया बहनी जिनकर काम में मन लागत है, ऊ आपन काम समय से कह ले थे। आज के अजय अलाल रहा थे, ऊ आपन काम हमेशा देर लगाए रहा थे कि आज नहीं काल, काल नहीं परो। भैया बहनी आपन काम समय से कह ले थे तो उनखर काम निकाह रहा थे। और जे देखी अलाल रहा थे या बुरी आदतन के शिकार रहा थे, उनकर काम कबो निकाह नहीं हो, सब दिन खराब रहा थे। भैया बहनी जे अलाल रहा थे तो ऊ तो देखी एक बेर चली हो जाते, ठीक हो जाते, पर जे नशा कर रहे थे ऊ तो समाज घर परिवार का बदनाम कर रहे थे, साथ ही साथ परिवार में हिंसा पैदा कर रहे थे। कुछ भैया बहनी नशीली दवाइन के उपयोग कर रहे थे और अवैध तस्करी कर रहे थे, जौन समाज का खराब कर रहे थे। मेर मेर के खतरनाक बीमारी होती हैं, ऐसन बीमारी हो जाती हैं कि जिनकर कौनो दवाई नहीं होती है, लाइलाज होबा कर रहे थे। भैया बहनी नशीली दवाइन के दुरुपयोग या आए कौनो कानूनी अवैध दवाई के उपयोग या निर्धारित दवा के डॉक्टर के सलाह के बिना बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे थे, जौन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का बहुत अधिक नुकसान पहुँचावत है। भैया बहनी एहिन से सबका जागरूक करें के नेता हर वरिष 26 जून का अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनावा जात है। संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने एक ठे प्रस्ताव में 7 दिसंबर 1967 एके मनामे के निर्णय लिखिस थी। नशीली दवाई के दुरुपयोग और अवैध नशीली दवाइन के व्यापार के खिलाफ एक ठे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस आए, यह 1979 से 26 जून का हर साल मनावा जाता है। 26 जून 1887 का बयान में आयोजित नशीली दवाइन के दुरुपयोग और अवैध तस्करी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दुई महत्वपूर्ण ग्रंथ में अबाउट कंट्रील में भविष्य के गतिविधियन के व्यापार बहुविषयक रूपरेखा और नशीली दवाइन के दुरुपयोग और अवैध तस्करी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के घोषणा की गई रही और ओखा अपनावा गया रहा। 17-26 जून 1987 के समय सम्मेलन ने सिफारिश कीन के नशीली दवाई के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ लड़ाई के महत्व का चिन्हित करें के खातिर एक दिन मनावा जाए चाहिए। 17 जून और 26 जून दोनों तिथियन का के सुझाव दीन गा रहा, पर बाद में के बैठक में 26 जून का चुन लीन गा रहा। दिन दुई तारीख गई रही कि एक 17 जून या कि 26 जून, पर 26 जून के दिन चुनाव कई लेन गा रहा कि यह दिवस 26 जून का मनावा जाई और मसौदा और अंतिम प्रस्ताव में लिखा एखा अक्सर एंट्री ड्रैम प्रचारक कई से 6/26 के रूप में संदर्भित कीन जात है। मरिजुआना के जैसन मानने के खातिर संयुक्त राष्ट्र के 2007 में विश्व ड्रग के रिपोर्ट में अवैध नशीली दवाइन के व्यापार का मूल्य 332 अरब अमेरिकन डॉलर हर वर्ष रखे हैं। अभियान रैलिन पोस्टर डिजाइनर के माध्यम से यह बहनी नशीली ये दवाइन के जौन तस्करी हो रही हैं तो एक ही प्रचार प्रसार किए जाते। भैया बहनी देखी नशा से हमी पंछी का कुछ नहीं मिले, जेखे घर के एक व्यक्ति अगर नशा करें लाग

है तो ओखी घर परिवार के 10 सदस्य वह व्यक्ति से ही परेशान रहते। अक्सर अपना पंजे समाज में देखा कि नशीली दवाइन के उपयोग किए के कारण बहुत दुर्घटना के शिकार भैया बहनी हरे हो जाते। घर इन मेर मेर के आतंक मचावा थे भैया बहनी जब ही नशीली दवाइन के उपयोग कई ले थी लड़का बिटिया जे को तो ऊफे अपने रिश्तन के अहमियत का भूल जाते कि हमार कैसे कौन संबंध है हम खक्के के साथ कौन में व्यवहार करें का चाही। ऊ पूरे अपने घर परिवार समाज में गंदगी भर दे थी। भैया बहनी नशीली दवाइन के उपयोग से घर के आर्थिक स्थितियों में बहुत प्रभाव पड़ा था। कहे कि जौन लड़का बिटिया नशा या बुरी लत के शिकार हो जाते उनखर आर्थिक स्थिति हमेशा कमजोर होती। उ अपनी आमदनी के आधे से अधिक हिस्सा तो नशा में बर्बाद कर दे थे जौने के कारण उनके घर परिवार में एकर दुष्प्रभाव होता है। भैया बहनी अपना पंचे ये देख ली कि अपने आसपास अब कुछ ऐसा दवाई लड़का बिटिया लेने लगे हैं जैसे है ड्रग्स कुछ ऐसा नहीं कि जौन इंसान के दिमागी संतुलन का तो खराब करते हैं शरीर के जौन ब्लड होता है खून होता है ओका इतना गाढ़ कर देते हैं कि ऊ फिर बीमारी के शिकार हो जाते और ऊ इन नशन के इतना ज़्यादा आदि हो जाते कि अगर उनका यह नशा न दीन जाए तो ऊ बिल्कुल पागल हो जाते। तो भैया बहनी ऐसे दूर रही अपने घर परिवार लड़कन का ऐसे बचाई और अगर अपने कुछ लोग का होते कि जब लड़का बिटिया या तो सरकार एक हम मना करते चोरी से एक हर व्यापार कर रहे थे तो अगर हमारे आसपास कौनो भैया बहनी हरे अवैध नशीली दवाइन के व्यापार कर रहे थे और अगर हम ही बच्चे का थोड़को जानकारी हो जाए तो हम ही बच्चे का चुप न बैठे का चाहिए। काहे कि यह दवाई के कारण आज दूसरे के लड़का एक हर शिकार हुआ है काल हमारा लड़का एक हर शिकार हो सकत है। ऐसे हम ही बच्चे का बचा चाहिए अपने लड़का चेहरन का बचावे का चाहिए और अपने समाज का बचावे का चाहिए। भैया बहनी सबके साथ लड़का चेहर तो बचबे कर ही अपने आर्थिक स्थितियों को बचावे का चाहिए और अगर हमारा लड़का बिटिया एक हर शिकार न हुई तो हमारे घर परिवार में खुशहाली आई और हम बच्चे खुशहाली के जीवन जी सकब।

0: अभी सुषमा शुक्ला की गाई या नचनहाई सुनत रहे।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमे 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
3: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।

मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम 150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम 150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।

भैया बहनी, आज आज शुक्रवार और आज के दिन हम अपने कार्यक्रम अपना चौका माँ स्वादिष्ट पकवान बनाने के विधि बतावा करी थी। स्वादिष्ट के साथ साथ पौष्टिकता से भरपूर, काहे कि देखिए कुछ चीज़ ऐसा होती हैं कि जौन हम ही पंचे का खाए में तो बहुत निक लगती हैं, पर हमारे शरीर का पौष्टिकता तो बिल्कुल नहीं मिल पावता ही। और उनके खाए से हमारा शरीर जौन है तो पेट भर जाते है, पर हमारा शरीर धीरे धीरे एनीमिक हो जाते है, हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती और फिर हम पंचे कुपोषित हो जाए थे। जब कुपोषित हो जाए थे तो हमारे शरीर में मेर मेर के बीमारी हो जाती हैं। भैया बहनी देखी, हम पंचे अगर कौनो चीज़ खाई थे तो अगर उमा पौष्टिक तत्वन के अधिक से अधिक समावेश कई के खाई थे तो हमारे स्वास्थ्य का अच्छा लागत, स्वास्थ्य हमारा निकाह रहा है और साथ है साथ हम ही बच्चे का स्वाद और निक लागत है। भैया बहनी हम बच्चे खाना पीना बनाई पर ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिकता के ध्यान दे के बनाई। कुछ भैया बहनी हरे कहते सेव अनार, कोनो जरूरी नहीं है कि सेव अनार है भर में पौष्टिक तत्व मिला थी। भैया बहनी जैसे अमरा, अमरा में इतना पौष्टिक तत्व पावा जाता है कि जितना 20 संतरा में पौष्टिक तत्व रहा थे उतना 1 अमरा में रहा थे, और वो हम ही पंछी का बहुत आसानी से अपने घर गांव में मिल जाते। ओकर चाहे वही चाहे हम जौने रूप में उपयोग कर ले, चाहे अचार बना ले, चाहे मुरब्बा बना ले, चाहे चटनी बना ले, चाहे ओका हम भूंज के ऐसे सिलौटी में पीस के धनिया के पत्ती मिर्चा नमक डाल के खा ले, वह हर रूप में हमारे पंचे के शरीर का फायदेमंद है, हमारे पंचे के पाचन तंत्र का, पाचन शक्ति का बढ़ावत है और खाना पचामे में मदद करत है। भैया बहनी देखी, आज ऐसे हम अपने कार्यक्रम में अपना का एक ठे औ पकवान बनाने की विधि बताऊँ, काहे कि अपना पंचे दाल पूरी नमक वाली तक खाएन हो, अपना पंचे का सबका पता है कि दाल जौन होती हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा प्रोटीन देती और प्रोटीन की ज़रूरत लड़का सयान बुढ़ानन का सबका होवा करती। भैया

बहनी, तो आज अपना कहाँ मीठ दाल पूरी बताओ। नमक वाली तो खान हो पर मीठ बहुत कम लोग जाना थी। मीठ दाल पूरी कैसे बनाई जाती, तो आज हम वो अपना कहाँ बनाऊँ बताओ। अब सबसे पहले ये अपना जान ले कि एमा सामान का का लागत है। चना के दार, दूसर अपना शक्करों के उपयोग कैसा की थी, गुड़ों के उपयोग कैसा की थी। अगर गुड़ के उपयोग करब तो ज़्यादा फायदेमंद हुई, कहे कि गुड़ में आयरन पावा जाता है जौन हमारे शरीर में खून की कमी का दूर करत है। तो अगर चीनी ले रहे हैं तो वह ठीक है, गुड़ ले रहे हैं तो वह ठीक है। कोशिश गुड़ ज़्यादातर डालें के कोशिश करब। अब दूसर सौंफ, काली मिर्च, थोका डोड़ो ले ले और आटा, इतनी तो सामग्री लागत थी। अब एकर बनाने के अपना काम विधि बताओ। सबसे पहले चना के दार का बढ़िया साफ सुथरा बिन ले। फिर चना के दार का एक ठे बर्तन में डाल दे। अगर 1 किलो दार ही तो ओमा 1 किलो 1.5 किलो चीनी डारे का है। वह बर्तन में धीम आँच कई के और एक जरा सा आधी गिलास उमा पानी डाल दे चीनी का पिघलें भर का। जब वो चीनी पिघल जाई तो वह चीनी में दार धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे खौल के पक जाती। पके के बाद का करे, वह दाल का निकाल के थोका ठंडवा ले। जेखे घर में जो साधन हो, देखी पहले हमारे दाई नानी हरे लोढ़वा सिलौटी से हर चीज़ पीसत रही हैं, चाहे चना के दार हो, चाहे मूंग के मुगौड़ी के दार हो, चाहे बारा के उड़दा के दार हो, सब सिलौटी से पीसत है। यहीं से देखी कोहू के बेरामी नहीं होबा करत रही आई, काहे कि जब 1 किलो 2 किलो सिलौटी में दार पीस दे तो 1 घंटा लागत रहो, 1 घंटा लगातार योगा या कई डारत रही है ना। तो अब तक काहे कि देखी सुख सुविधा मजी है कि सबके आदत थी, अब कोहू सिलौटी में नहीं पीसे चाहे। सबके घर में मिक्सर मशीन हो गई है, जेखे नहीं आई तो अगल बगल में दुकान खुल गई हैं, वहाँ जाए के लोग बाग पिसवा ले थे। तो अब एका का करी कि दार का बढ़िया जब चुरी जाए, ऐसे हाथे से दबाए के देखी कि जब दाबी तो वो मिजर जाए, तब वही उतार के एक ठे बर्तन में जुड़वा ली। जब जुड़ाए जाए तो वही पीस ली, बढ़िया महीन पीस के धई ली। फिर सौंफ थोका, जब उन्हें तो सौंफ का भूज के उन्हीं में पीस के मिला दी, और थोका डोड़ा पीस के मिला दी, काली मिर्च पीस के मिला दी। ये सब चीज़ स्वास्थ्य का फायदा करा थी और स्वाद का बढ़ावा थी। एके बाद फिर यही एक ठे बर्तन में धई दी और पिसान ले ली। पिसान का सान ली, सानने के बाद छोट छोट लोई बनाए के, जैसे लोई में बीच में ऐसा गड़बा कहके, और वह जौन पूरन पीस के धरे रही वह भरी। यह बात के ध्यान दें का है कि उमा इतना पूरन भरी कि जौनी बेले से फाटे न, काहे कि ये फाटत बहुत जल्दी पूरी। और बहुत अगर अपना चाहब कि पातर बेल ली तो बेले न पाऊ पातर, यह हल्की मोट मोट बेलर थी। बहुत जो पातर बेले तो चारों कैसे फट जाती। तो ऐसे छोट छोट मोट मोट बेल के, और भैया बहनी जैसा जो नमक वाली दाल पूरी ही तो हम बंचे सरसों के तेल मसे की थे, हमार दाई हरे तो अरसी के तेल मसे कत रही। अब तो अरसी के तेल के उपयोग बहुत कम लोग करा थे, पर पहले हमार दाई हरे सब्जी अरसी के तेल के बना में, दाल भरी पूरी अरसी के तेल में बना में, कौनो मतलब पकवान बनावत रही तो अरसी के तेल में बनावत रही, जौन हमारे पंजे के स्वास्थ्य के खातिर बहुत फायदेमंद होबा करत रहा है। तो एका का करी, अरसी के तेल में नहीं, यह वाली पूरी देसी घी अगर घर की है तो वह देसी घी में सेक सेक बढ़िया दोनों कई छिक छिक लगा के सेक डाली और सेक के फिर धरी। फिर देखी का है कि जैसे दाल भरी पूड़ी मने यामा के पना में खात है, पहिया पूड़ी घी में बोर बोर खाई जाती। तो ऐसा पकवान बनाई, खुदो खाई दूसरों को खवाई। भैया बहनी हमारे पंजे के स्वास्थ्य के खातिर यह बहुत फायदेमंद है। तो खाई और खुशहाली मनाई।

अर्चना सिंह के गाई बेलनहाई सुनत रहन, बहुत अच्छा गीत सुनाइन हमार अर्चना बहिनी। भैया बहिनी, आपन देश बहुत बड़ा देश है और हमारे देश में हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग मिलजुल के रहा थे। कहाँ के मतलब यह कि हर जाति धर्म का मानने वाले भैया बहनी हरे एक साथ रहा थे। भैया बहनी सबके तिथि त्यौहार बनाने के जौन उराव होबा करत है वह अलग अलग होत है, पर उद्देश्य एक ही होबा करत है। हम बच्चे हर तिथि त्यौहार का जौन मनाई थे तो अपने भगवान से अपने घर परिवार लड़का बच्चन के नेकी भलाई के खातिर भगवान से प्रार्थना करी थी, उनके उज्जवल भविष्य के कामना करी थी। भैया बहनी ये जौन तिथि त्यौहार हैं हम ही पंचन का एकता के सूत्र में बांधा थी। हम बच्चे जब एक दूसरे के त्यौहार का मिल के मनाई थी तो ये हम ही एकता के संदेश दे थी।

से अपने देवी देवतन की पूजा करी थी। सबके अलग अलग हर त्योहारन के अलग अलग उराव होत है, अलग अलग मनामे के ढंग होत है। जैसे देखी आज हमारे मुस्लिम भैया बहनी हरिन के त्यौहार मुहर्रम आए, यह त्यौहार शहादत के त्यौहार आए, कुर्बानी के त्यौहार आए। यह जौन बरिस के चौथे सप्ताह मतलब चौथे महीना के मनावा जात है। भैया बहनी एमा हमार मुस्लिम भैया बहनी हरे उपास रहा थे और कहा थे कि इमा कुर्बानी होती हर जगह अपना पंचे देखी थो कि ताजिया निकरा थी, ताजिया निकरा थी, लाठी पटा खेला थे बड़े बड़े, जैसे कुछ लोग तलवारन से आपस में करतस करा थे, खेल खेला थे, लाठी डंडन से खेल खेला थे, जो उन्हें कहा जाए कि सर्कस। तो मेर मेर के अपन जोनी करता से तो दिखावा थे और जगह जगह खूब जुलूस निकाला जाता है, बड़ी भीड़ भाड़ रहती। भैया बहनी यह त्यौहार मनावत थे जो उन हमारा मुस्लिम भैया बहनी हरे जब फातिया पढ़ा थे, ताजिया निकाला थे, तो हम पंचे ताजिया देखें जावा करी थे कि कैसन ताजिया निकला थी, कैसन लोग बाग त्यौहार मनावा थे। तो का होत है भैया बहनी कि इनमा हमारे एकता दिखाती, हर भैया बहनी हरे एक दूसरे से मिला थे। और एक चीज़ और बताओ, जैसे हमारे पंचे के यहाँ कौनो त्यौहार होते तो बारा बनत है, मुगौरा बनत है, आज के दिन वो पंचे मलीदा बनावा थी हमारे बगल।

और बनाए के बाद फिर अपने आसपास में सबका खबौतो हैं। भैया बहनी यम ऐसे तिथि त्यौहारन का अगर हम पंचे मनाई थे तो बहुत नीक लागत हैं और तिथि त्यौहार मनावे के उरावो अलग होबा करा थी। भैया बहनी ई तिथि त्यौहार जौन होत हैं तो आपस में नेम प्रेम का बढ़ावा थी। अब देखी भैया बहनी जैसे आज हमारा पंचे के जौन मुहर्रम के त्यौहार है तो सब लोग जाए के जौन हमा पंचे के पूजा घर जैसे हमा पंचे के मंदिर होते हैं ऐसे इनखर पंचे के मस्जिद होते हैं वहाँ जाए के अजान पढ़ा थे और सबको एक दूसरे से मिले आवा थे। मिले के बाद जाए के जौन कुर्बानी दिन ही ये एक ही पीछे बहुत बड़ी कहानी ही हर त्योहारन के पीछे कोनो न कोनो कहानी रहा थी जौन हम ही पंचे का अपने शहादत के याद दिलावा थी। भैया बहनी एक ही खीतिर हम पंचे

0: एक एक खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी छिपी ही, और यही हम पंछे बड़े दुख दुखों के, ये त्यौहार एक थे हमारे पंछे के दुख के प्रतीक का है। एमा बहुत बड़ी कहानी का है कि हर त्यौहार के पीछे बहुत बड़ी कहानी होती। वह कहानी का अगर मने पढ़ी थे जानी थे तब हमें पंछे का समझ में आवत है कि यह त्यौहार काहे मनावा जाता है, यह त्यौहार मनाने के उद्देश्य का आए, यह त्यौहार हमारे जीवन में का असर करत है, हम ही का ऐसे सीख का मिला थी। तो जो नहीं हमारे त्यौहार हैं ये हमें पंछे का कुछ न कुछ सीख दे के जाते हैं, हमें पंछे का आपस में एक दूसरे से जोड़ा थी, आपस में हम पंचे के जो नेम प्रेम है तो वो बाढ़त है। भैया बहनी जब हम पंचे कौनों त्यौहार मिल के हमार पंचे के जौन त्यौहार होते तो जब हम पंचे ओखा मनाई थे तो हमार मुस्लिमों भैया बहनी हरे हम ही पंचे का होली के बधाई दे थे, दीपावली के शुभकामना दे थे, होली के रंग गुलाल लगाए के गले मिला थे। तो हमहू पंचेन का चाही कि उनके त्यौहार का हम पंचे मिल के अगर उनके दुख में हम शामिल होई, उनके सुख में हम शामिल हो, जब हम एक दूसरे के दुख और सुख में शामिल हो तो निश्चित हमार पंचे के विकास निकाह होई और हम ही आपस में हमार नेम प्रेम बाढ़ी। भैया बहनी ये सब बात बताए से कौनो अर्थ नहीं निकले, एका जब हम पंचे एक दूसरे से मिलके करी थे तब ही एकर हम ही पंचेन का लाभ मिलत है। भैया बहनी अगर हम पंचे मिलजुल के एक दूसरे के त्यौहार मनाओ तो निश्चित रूप से हमार आगे आने वाली पीढ़ी ई चीजन का देखी ही सुनी ही और हमसे पंचे से जनी ही कि ई त्यौहार कहाँ आही, इनका हमें बच्चे का कैसन मनावे का चाही, आपस में कैसन रहें का चाही, बड़े छोटन के कऊ में से सम्मान कीन जात है, ये सब बात के जन बही हम ही तीत त्यौहारन से मिलती हैं। भैया बहनी हम पंचे तीत त्यौहार मिल के एक दूसरे के साथ आज मुहर्रम मनाई और सबके सुख दुख में शामिल हुई तब ही हमार पंचे के भविष्य निकाह हुई और नेम प्रेम आपस में बाढ़ी। भैया बहनी बर्बत कहाँ तो भवे भा पे देखी अब चलें कि जूना होती तो हम अपने सुनैया भैया बहनी का कार्यक्रम के पता बताई थे। तो लिखे हमारा भैया बहनी पता चौपाल की चिट्ठी द्वारा उपनिदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी सिविल लाइन रीवा मध्य प्रदेश पिन कोड 48601। भैया बहनी यह पता में रही पाती के परिखाव अब ले आ गया चौपाल के सब सुनैया भैया बहनीन का उर्मिला बहनी के राम राम जय जवान जय किसान।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
3: 2026 में भारत की अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज गुरुग्राम में संपन्न हुई। वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और अवसरों पर और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर हुई चर्चा के बाद ब्रिक्स देशों के सामूहिक दृष्टिकोण और सहमति को दर्शाते हुए एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई। इस घटनाक्रम के महत्व, इसकी बारीकियों और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा। अतुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
4: धन्यवाद सोनू जी।
3: अतुल जी जो ये 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई है इसके महत्व को सर्वप्रथम आप बताएं कि कैसे आंकते हैं, खासकर जो वर्तमान ग्लोबल एनर्जी इकोसिस्टम है जिस तरह के उसमें चैलेंजेस हैं उसको देखते हुए ये जो सहयोग ब्रिक्स देशों के बीच उभर के आ रहा है इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है।
4: सोनू जी अगर आप देखें किसी संदर्भ में ये बैठक हुई है और संदर्भ अगर हम देखें तो जो ईरान के ऊपर जो युद्ध चला इतने दिनों का अब लगता है कि समाप्ति की ओर है, उसने एक चीज दर्शाई कि हमारी फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर बहुत वल्नरेबिलिटी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर खासकर बहुत वल्नरेबिलिटी है गल्फ देशों से। तो भारत की अगर हम बात करें तो हमारा जो इम्पोर्ट कंटेंट है बहुत हाई है, 80% के प्रतिशत हम बाहर से लेते हैं। इसलिए हमें एनर्जी के ऊपर सेल्फ सफिशियंट होने की जरूरत है क्योंकि हमारे पास तेल के उतने भंडार नहीं है, गैस के भंडार उतने नहीं है।

0: इसलिए हमें ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स पे जाने की जरूरत है ताकि हम आत्मनिर्भर हो सके। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जो देश मिलके ये काम सोच रहे हैं या ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं वो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, यानी कि ये पश्चिमी देश नहीं है, ये उभरते हुए देश है जिसमें भारत है, चीन है, रूस है, ब्राजील है और 11 देश आपने जैसे कहा था, यूएई आ गया, ईरान भी उसमें आ गया। तो ये जो कॉन्क्लेव बना है ये उभरते हुए देशों का है, तो एक नई दुनिया की तरफ हम जा रहे हैं, जो पोस्ट वेस्ट वर्ल्ड जो कहते हैं उसके ऊपर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। और तीसरी इसमें एक बात जो जुड़ी हुई है वो है कि आफ्टर ऑल दो चीजों पे एम्फोसिस किया गया, एक तो अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमीज इस तरह से सो कॉल्ड रिच देश नहीं है इसलिए अफोर्डेबिलिटी बहुत जरूरी है, और फाइनली जो बात जा रही है कि जो डेवलप होगी टेक्नोलॉजीज रिन्यूएबल या फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जो एनर्जी टेक्नोलॉजीज होगी उसको हमें शेयर करना है किसके साथ, ग्लोबल साउथ के साथ। तो एक
1: जी
0: ग्लोबल साउथ का एलिमेंट भी ब्रिक्स के साथ जुड़ जाता है। तो मुझे लगता है ये एक तो कॉन्टेक्स्ट हो गया और उसका जो एक तरह से डायरेक्शन है वो भी बहुत क्लियर हो गया है इस बैठक के बाद।
1: बिल्कुल। और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भारत के स्वच्छ ऊर्जा बदलाव और भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा रोडमैप पर प्रकाश डाला। उन्होंने सर्वेषां ऊर्जम के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
2: गाइडेड बाय द विजन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर एंड द ब्रिक्स चेयरशिप थीम बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इंडिया सीक्स टू स्ट्रेंथन ब्रिक्स कोऑपरेशन टुवर्ड्स बिल्डिंग एनर्जी सिस्टम्स दैट आर रेसिलियंट फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड पीपल सेंट्रिक। इंडियाज ओन एनर्जी जर्नी रिफ्लेक्ट्स दिस अप्रोच फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेषां ऊर्जम दैट इज एनर्जी फॉर ऑल। Our vision extends beyond meeting today's energy needs. India seeks to build a future-ready energy system that is digital, centralized, and consumer-centric. Clean power, smart grids, energy storage, and emerging fuels will work together to create a more reliable and sustainable energy ecosystem. This will support economic growth and improve the lives of over 1.4 billion people. Today, इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
1: जिस तरह से खट्टर जी ने बताया कि आर्थिक विकास सामाजिक प्रगति के मुख्य आधार के रूप में किफायती भरोसेमंद और टिकाऊ ऊर्जा बहुत ही जरूरी है और हम विश्व के तीसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर कंज्यूमर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और उन्होंने जो हमारा रैपिड क्लीन एनर्जी एक्सपेंशन है चाहे वो सोलर एनर्जी हो बायो एनर्जी हो उसमें जो हमारा लीडरशिप रोल है उस पर भी बल दिया। सो आपको लगता है कि भारत ग्लोबल एनर्जी इकोसिस्टम में एक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है?
0: सोनू जी देखिए कि एक दिशा मिली है, डॉक्ट्रिन मिला है एनर्जी फॉर ऑल। छोटा सा तीन वर्ड्स का है लेकिन इसमें बहुत कुछ कहा जाता है कि एनर्जी फॉर ऑल मतलब हम सिर्फ अपने लिए नहीं देख रहे हैं, पूरे विश्व के लिए देख रहे हैं। और अगर अब इससे जोड़े पहले वाला स्लोगन जो है जो सोलर एनर्जी के ऊपर बात हुई थी, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, तो वो भी पूरे विश्व को देखते हुए उसके कॉन्टेक्स्ट या पर्सपेक्टिव में बात हुई थी। तो इसलिए जो दिशा जो आप कह रहे हैं वो लीडरशिप का है या नेतृत्व का है लेकिन मंशा जो है वो ग्लोबल है, और खास करके जो आपने बात की इसमें ग्लोबल साउथ हमारा फोकस रहा है, चाहे वो G20 की हमारी मीटिंग हुई या उसके बाद की कोई मल्टीलैटरल्स हुई है, तो हमने ग्लोबल साउथ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, बल्कि केंद्र बिंदु बनाया है हमारी सोच की दिशा का। तो एक तरह से ये दोनों चीजें अभी बैठक हुई है उसमें भी दर्शाई जा रही है। साथ में फिर इसको करना कैसे है, इसके रोड मैप्स क्या हो सकते हैं, जो पावर मिनिस्टर ने कहा है उसमें वो चीजें भी आती हैं कि आपको स्मार्ट ग्रिड्स कैसे बनानी है, मतलब डिजिटली कंट्रोल ग्रिड्स जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करें, जैसे जैसे पावर डाउन जाती है अप जाती है उसको ऑटोमेटिक कंट्रोल उसका होता है डिजिटली, तो वो स्मार्ट ग्रिड होती है। स्मार्ट ग्रिड की बहुत जरूरत है अगर आप शेयर करना चाहें एनर्जी। और सबसे बड़ी बात जो होती है खास करके ये रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करें तो स्टोरेज की, कि भाई सन चला गया विंड चली गई उसके बाद स्टोर कैसे करनी है, ये एक बहुत बड़ा रिसर्च का टॉपिक है। और उसके ऊपर भी इस बार जो है एक संस्था बनाई है जिसपे आप स्मार्ट ग्रिड्स और स्टोरेज के ऊपर खास करके रिसर्च होगी। तो ये भी सिर्फ बात सोच की नहीं है लेकिन कैसे करना है इसको, इस बड़े प्रयास को, क्योंकि सब कुछ पहले से लिखा हुआ नहीं है, ये नए प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं। अब इसमें एक और चीज आएगी, तो लोग चाहिए, नए स्किल्ड मैन पावर चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, सबको इसमें ट्रेनिंग की जरूरत है। उसके लिए भी संस्था बनाई गई है इस बार कि जहां पर ये ट्रेनिंग भी दी जाए, तो सिर्फ बात ही नहीं हो रही बट जिसको कहते हैं ना वॉक द टॉक, वो भी साथ साथ हो रहा है कि भाई करना तो है, कैसे करना है वो भी, कैसे हम लक्ष्य में पहुंचेंगे, और जो गोल है वो ग्लोबल है।
1: जी, सो बिल्कुल।

0: आपने जैसे कहा कि ये ब्रिक्स ऊर्जा अनुसंधान सहयोग प्लेटफॉर्म जिसकी बात हुई है, जिसके अंतर्गत स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण की बात हुई है, और जो ये प्लेटफॉर्म है इसमें ब्रिक्स देशों के बीच जो अनुसंधान, तकनीकी सहयोग और नॉलेज शेयरिंग होगी, आपको लगता है कि ये सारे इन देशों के एनर्जी सिक्योरिटी को और एनर्जी स्टेबिलिटी को मजबूत करने में सहायक होगा?
1: बिल्कुल, क्योंकि बात सुनी जी हो रही है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की। जब तक इंस्टीट्यूशंस नहीं बनेगी, संस्थान नहीं बनेगी, तब तक आप जो है एश्योर तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहले से एक बनी हुई है ये संस्था, ब्रिक्स एनर्जी रिसर्च कॉर्पोरेशन प्लेटफॉर्म। ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये वर्चुअल है सिर्फ, इसमें कोई फिजिकल हेडक्वार्टर्स नहीं है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के संदर्भ में रिसर्च और उसके रिकमेंडेशन वगैरह वगैरह सारे जो देश हैं ब्रिक्स के, इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। आप स्टडीज जिसपे करनी है वो एलोकेट की जाती है, ये जो मंत्रालय हैं ये इसको कोऑर्डिनेट करते हैं, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स आ जाते हैं और डाउनस्ट्रीम होके स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से रिसर्च वर्क करती है। एक तो ये ERCP एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके साथ साथ एक तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है, क्योंकि बात फिर आती है स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी स्टोरेज की, उसके भी गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस आधार पर काम करेंगे, क्योंकि बहुत से देशों की अपनी रेगुलेशंस होती है, इसको एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत होती है जो कॉमन प्लेटफॉर्म पे सबको लेके आता है। तो वो भी इस बार बात हुई है, यहाँ पर ये गाइडिंग प्रिंसिपल भी अडॉप्ट किए गए हैं। तीसरी बात है कि इसके ऊपर जो रिसर्च है स्मार्ट ग्रिड और एनर्जी स्टोरेज के लिए, एक सेपरेट एक संस्था बनी है जो इसके ऊपर डिटेल में फोकस से और विस्तार से इसके ऊपर रिसर्च करेगी।
0: एक और बड़ा रोचक केंद्र बिंदु निकल के आया है कि भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों को आकार देने में युवा भागीदारी की भूमिका को बहुत बल दिया है, और ब्रिक्स युवा ऊर्जा शिखर सम्मेलन के आयोजन का समर्थन किया ऊर्जा मंत्रियों ने, ये आपको कितना महत्वपूर्ण लगता है?
1: देखिए, सोच नई है और सोच फ्यूचरिस्टिक है, डिजिटल है, न्यू इकोनॉमी की है, तो इसमें यूथ की भागीदारी तो बहुत जरूरी है, उसके बिना ये होगा नहीं काम। तो एक तरह से एक नया साइकिल शुरू हुआ है फ्यूचर एनर्जी का, जिसमें यूथ की भूमिका जो होगी मेरे को लगता है वो सेंट्रल रहेगी, जैसे आपने कहा, उससे साथ में क्योंकि रिसर्च का एलिमेंट भी आ जाता है, R&D का एलिमेंट आता है, इसमें स्टार्टअप्स वगैरह की भूमिका आएगी, यूथ का इंटीग्रेशन इसमें जरूरी है क्योंकि उसके बिना होगा नहीं काम। तो एक सेंट्रल फोकस रहेगा यूथ को इंटीग्रेट करने के लिए और ट्रेन करने के लिए, हमारी जो जेन ज़ी जनरेशन है उसको खासकर इसमें शामिल होगी। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अहम और बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, और साथ में अगर हम देखा जाए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फाइनली हमको यूथ के लिए क्रिएट करनी है, तो उसके लिए क्रिएट करने के लिए पुरानी तरीके से नौकरियां मिलने वाली नहीं है, अब आपको खुद ही क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इंटीग्रेट करना इसको, यूथ को स्किल्ड करना इन नई टेक्नोलॉजीज में बहुत जरूरी है हमारे फ्यूचर के लिए।
0: अतुल जी, ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों ने राष्ट्रीय परिस्थितियों, विकास प्राथमिकताओं और ऊर्जा प्रवाह को सम्मान देने के महत्व को भी दोहराया, इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, खासकर विकासशील देशों के लिए जिनके लिए एनर्जी ट्रांजिशन जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ इस स्टेज में फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल भी जरूरी है?
1: बिल्कुल, क्योंकि आप इस वक्त क्लाइमेट फंडामेंटलिस्ट नहीं बन सकते कि सिर्फ रिन्यूएबल ही करेंगे। भारत में देखिए कोयले के कितने बड़े भंडार है, आप उसको छोड़ तो नहीं सकते, आप क्लीन कोल की तरफ जा सकते हैं कि वो पोल्यूटिंग ना हो, लेकिन फॉसिल फ्यूल तो जरूरी है। जो गैस है, अगर आप भारत में देखें तो हमारे बहुत सारे व्हीकल्स जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में इन्वॉल्व है या ऑटो रिक्शा वगैरह है, सब CNG पे चलते हैं। तो आपको एक अच्छा मिक्स की जरूरत है और बायोफ्यूल्स की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ये जो बैलेंस है बिटवीन फॉसिल फ्यूल्स या क्लीन फॉसिल फ्यूल्स और रिन्यूएबल्स के ऊपर बहुत अच्छा बैलेंस बैठक में देखने को मिला है, क्योंकि बात क्लाइमेट चेंज की भी हो रही है, सस्टेनेबिलिटी की भी हो रही है, इसलिए वो कॉम्बिनेशन जो एक तरह से एक मॉडल बनाने की जरूरत है वो शायद भारत दिखा सकता है बाकी विकासशील देशों के लिए। और फाइनली बात यह है कि विकासशील देश जब जुड़ जाते हैं तो स्केलेबिलिटी और भी मिलती है, आपकी जो अफोर्डेबिलिटी, उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, तो इसलिए विकासशील देशों का उसमें जुड़ना बहुत जरूरी है। और भारत की सोच में ये बहुत ही क्लियर है कि शेयर करना है, और शेयर करना सिर्फ ये नहीं कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा, लेकिन इट मेक्स इकोनॉमिक सेंस कि फाइनली अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करनी है दुनिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन को, तब ये जुड़ना बहुत जरूरी है और शेयर करना बहुत जरूरी है।
0: जी बिल्कुल, जिस तरह से इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत ने शुरू किया और जो उसमें प्रगति हुई है उसके बारे में भी उन्होंने बात करी कि 2014 में सौर ऊर्जा क्षमता 3 GW थी, उससे बढ़कर आज वो 154 GW से अधिक हो गई है, और छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में तेजी लाने और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लाई है, आपको लगता है कि इस तरह के मॉडल्स ये बाकी देश भी अडॉप्ट कर सकते हैं और हम भी

0: दूसरे देशों से सीख सकते हैं।
1: बिल्कुल, और जैसे आपने बात की सोलर अलायंस की, देखिए अब उससे क्या हुआ है कि 2014 से पहले तो स्केल आप देखिए 3 गीगावाट से फाइनल फिगर आपकी कितने गुना बढ़ चुकी है, 3 से 150, इट्स ए रेवोल्यूशन, एनर्जी रेवोल्यूशन है इसको कहते हैं, इससे एक्सपीरियंस आपका गेन हुआ है, अब इसको आप शेयर कर सकते हो क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर सन के साथ किया है तो शायद और तरीके से भी हम कर सकते हैं, बाकी जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उसमें भी हो सकता है। इसमें जब आपने शुरू में बात की लीडरशिप की, एक नेचुरल लीडरशिप आती है क्योंकि एक्सपीरियंस आ गया आपके पास, और इसकी एप्लीकेबिलिटी बाकी कंट्रीज के लिए बिल्कुल है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस रहा है, और अब हम आगे इसको दूसरे जो सोर्सेज आ रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन की बात हो रही है, उसमें आप अलग फिर कॉन्फिडेंस से जा सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, उसके ऊपर भी रिसर्च बहुत जरूरत है। तो नाउ यू कैन पुट योर फुट फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस। मुझे लगता है भारत ने जैसे डीपीआई किया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे देशों में आपको ये मिल जाता है डीपीआई, जो हमारा पेमेंट सिस्टम, उसी तरह से एनर्जी के ऊपर भी हमारा भी एक सारा है, और मॉडल वही है, शेयर करना है और ग्लोबल साउथ के साथ शेयर करना है, क्योंकि भारत में स्केल बहुत बड़ा है, क्यों हमारा एक्सपीरियंस इतना हो जाता है, फिर आसान हो जाता है हमारे लिए वो शेयर करना। तो मुझे लगता है कि ये एनर्जी के ऊपर भी, रिन्यूएबल एनर्जी हो या न्यू एनर्जी हो, तो हम नेचुरल लीडर एक तरह से बन रहे हैं। ये नहीं कि हमारी मंशा लीडरशिप के अपने आप को ज्यादा जबरदस्ती आगे करने की, लेकिन वो एक्सपीरियंस ऐसा है कि आप शेयर कर सकते हो, आप लीड कर सकते हो। ये एक बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप्स लिए गए हैं एनर्जी के फील्ड के ऊपर।
0: जैसा आपने कहा कि धरातल पर हमने निर्धारित समय से पहले 20% एथेनॉल मिश्रण हासिल किया, बहुत सारे जो हमारे गोल्स थे उनको हमने समय से पहले क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए या क्लाइमेट फ्रेंडली जो स्टेप्स थे उनको हमने हासिल किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद समझे।
2: अभी आप सुन रहे थे 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में, दूसरी आवाज इसमें आशा भोसले और साथियों की, हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत है, फिल्म का नाम है अंदाज़।

आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं एक दूजे के लिए फिल्म का एक गीत, लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की आवाज़ है, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

नमस्कार भोपाल, सुबह का नमस्कार खुशगवार हर बार, नई जानकारियां शहर और देश दुनिया की, गूंजेंगी स्वर लहरियां नए पुराने गीतों के साथ। सुबह 7:20 पर सुनिए हर रोज नमस्कार भोपाल। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर रोजाना सुनिए 5:02 पर युववाणी। युवा प्रस्तोताओं और रेडियो एंकर्स का शानदार अंदाज, युवा ख्वाबों को साकार करती सक्सेस स्टोरीज, युवा मनोभावों को व्यक्त करती कविता कहानियां और देश विदेश की रोचक जानकारी, साथ ही दिलकश फिल्मी गाने, तो सुनना ना भूलिए आपका अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने के थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। गृह मंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।

0: मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1 करोड़ 18 लाख किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और

और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय

0: मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जाँच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशुराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। इशू के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबर।

0: में भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू टोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Home Minister Amit Shah launches 3-year vision document for narcotics control, calls for better coordination and use of technology to strengthen anti-drug campaign. Center to deploy 1,000 advisory personnel across the country and upgrade trade portal to maximize benefits of India-UK trade agreement. Death toll in Venezuela earthquakes rises to 589. India sends 2 Air Force planes with emergency relief material. US and Iran agree to establish direct military communication channel to reduce risk of further conflict, says US Vice President J.D. Vance. Indian shooters finish at the top in ISSF Junior World Championship in Germany with 24 medals, including 7 gold. And in US Open Badminton, India's Ronak Chauhan stuns top seed Chou Tin Chen of Chinese Taipei to enter quarterfinals of men's singles. Kidambi Srikanth and 3 women shuttlers also reached the quarters. And now the news in detail. Home Minister Amit Shah today laid a detailed roadmap to achieve the vision of a drug-free India. During a meeting organized by the Narcotics Control Bureau, the Home Minister launched the vision document on narcotics control from 2026 to 2029. Earlier, addressing the 10th apex level meeting of the Narco Coordination Center in New Delhi, the Home Minister called for a united war against drugs, saying that the drug menace threatens national security, social stability, economic interests, and the future of youth and the country. He urged spiritual leaders, youth and mothers to come together on a single platform to win this war. The Home Minister stressed that better coordination and the use of technology are essential for strengthening the country's campaign against drugs and drug trafficking networks.
2: Today, our country stands at a critical juncture in its fight against narcotics. The next 3 years will determine whether drugs prevail over us or we prevail over drugs. My humble appeal to all of you is that for the future of our nation over the next 100 years, this is a battle we must win. Win with the determination and win through our collective efforts.
1: Speaking about the anti-narcotics efforts, Mr. Shah said that the Narcotics Control Bureau has developed several online portals to facilitate the timely sharing of information related to drug crimes. He urged all chief secretaries and directors general of police to upload details.

0: leaving behind the individual neutral athletes who claimed 14 medals and Italy at third position with 10 medals. In badminton, India's Ronak Chahan created the biggest upset of the US Open tournament in Fullerton today when he packed off world number 6 and men's singles top seed Shou Tian Zhen of Chinese Taipei in straight games 21-17, 26-24 to reach quarters. In another men's singles, Kidambi Srikanth registered a 21-14, 21-13 win over Lee Zijia of Malaysia to enter quarterfinals. In women's singles, Tanvi Sharma, Rakshita Shree and Devika Sehag also advanced to the last 8 stage, winning their respective matches. In men's hockey, India will face arch rivals Pakistan in its penultimate FIH Pro League match at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre in London this evening. The match is scheduled to begin at 10:30 p.m. In men's cricket, host Ireland have set a target of 183 runs for India in the first T20 international match of the two-match series in Belfast. Put into bat, Ireland scored 182 for 9 wickets in stipulated 20 overs. In reply, India were 129 for 6 in 15 overs when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah launches 3-year vision document for narcotics control, calls for better coordination and use of technology to strengthen anti-drug campaign. Center to deploy 1,000 advisory personnel across the country and upgrade trade portal to maximize benefits of India-UK trade agreement. Death toll in Venezuela earthquakes rises to 589. India sends 2 Air Force planes with emergency relief material. US and Iran agree to establish direct military communication channel to reduce risk of further conflict, says US Vice President J.D. Vance. And in US Open badminton, India's Ronak Chahan stuns top seed Shou Tian Zhen of Chinese Taipei to enter quarterfinals of men's singles. Kidambi Srikanth and 3 women shuttlers also reach the quarters. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वजीर दाखिला अमित शाह ने मंशियात के कंट्रोल से मुतालिक सहसाला विजन दस्तावेज का आगाज किया। उन्होंने मंशियात मुखालिफ मुहिम को और मुस्तहकम करने के लिए बेहतर तालमेल और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। मरकज भारत बरतानिया तजारती समझौते के फवायद को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की गरज से मुल्क भर में 1,000 मुशावरती अफराद तैनात और तजारती पोर्टल को अपग्रेड करेगा। वेनेजुएला के जलजलों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 589 हो गई है। भारत ने हंगामी राहती साजो सामान के साथ भारतीय फजाइया के 2 जहाज रवाना किए हैं। अमरीका और ईरान ने मजीद किसी जंग के खतरे को कम करने की गरज से बराह रास्त फौजी मवासिलाती चैनल कायम करने से इत्तेफाक किया है। जर्मनी में ISSF जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज सोने के 7 तमगों समेत 24 तमगों के साथ सरे फहरिस्त रहे। और US ओपन बैडमिंटन में भारत के रौनक चौहान चेन्नई ताइपे के आला दर्जे के खिलाड़ी चाउ टीएन चेन को हराकर मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। किदांबी श्रीकांत और 3 खवातीन बैडमिंटन खिलाड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर दाखिला अमित शाह ने मंशियात से मुक्त भारत के विजन को हासिल करने के लिए आज एक तफसीली लाहे अमल पेश किया। मंशियात के कंट्रोल की ब्यूरो के जरिए मुनक़िदा एक मीटिंग के दौरान वजीर दाखिला ने 2026 से 2029 तक के लिए मंशियात की कंट्रोल से मुतालिक एक विजन दस्तावेज का आगाज किया। इससे कबल नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं आला सतही मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने यह कहते हुए मंशियात के खिलाफ एक मुत्तहदा लड़ाई पर जोर दिया कि मंशियात की लानत से कौमी सलामती, समाजी इस्तेहकाम, इक्तसादी मफादात और नौजवानों और मुल्क के मुस्तकबिल को खतरा लाहक है। उन्होंने रूहानी लीडरों, नौजवानों और माओं से जोर देकर कहा कि इस लड़ाई को जीतने के लिए वो सब एक वाहिद प्लेटफॉर्म पर यकजा हों।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को, जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा, युवाओं को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर

0: में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: वजीर दाखिला ने एक ड्रग डिस्पोजल फोर्टनाइट का भी आगाज किया, जिसके तहत तकरीबन 6000 करोड़ रुपए मालियत की 2,09,500 किलोग्राम जब्त शुदा नशावर मादों को जाया किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान अवामी शिरकत से एक अवाम उन्नास की तहरीक बन गया है। वजीर आजम मोदी ने यह बात समाजी इंसाफ और तफवीज इख्तियार के वजीर मुमलिकत B.L. वर्मा का एक मजमून शेयर करते हुए कही, जो नशे से मुक्त भारत की तामीर की अहमियत पर तहरीर किया गया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने नशे से मुक्त भारत और विकसित भारत बनाने के मिशन में शामिल होने के लिए हरेक शहरी पर जोर दिया। जनाब वर्मा ने अपने मजमून में तहरीर किया है कि हुकूमत मनशियात की लत को एक हसास मामला समझती है, जो भारत के नौजवानों के मुस्तकबिल और मुल्क की तरक्की से ताल्लुक रखता है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने अद्वियात से मुतालिक जाबते 1945 में तरामीम की तजवीज़ की है। उनका मकसद मुआइने, टेस्ट करने या तजिया करने के लिए इजाज़त हासिल करने वाले जाबतों को सहल बनाना है। वजारत ने कहा कि तरमीम में तमाम तरह की अद्वियात को तजिया जाती और गैर क्लिनिकल टेस्टिंग मकासद के लिए कम मकदार में दरामद करने के लिए मंजूरी पर मबनी एक निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। सहल करदा जाबतों का इतलाक उन बहुत सी अद्वियात पर नहीं होगा जिनका ताल्लुक जिन्सी हारमोन्स, साइटोटॉक्सिस ड्रग्स और बीटा लैक्टम ड्रग्स से है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने मुल्क भर में 1000 मुशावरती अफराद को तैनात करने और तजारती पोर्टल को अपग्रेड करने का ऐलान किया है। इसका मकसद भारत बरतानिया जामे इक्तसादी और तजारती माहदे सीटा के फवायद को ज्यादा से ज्यादा करने में मदद करना है। आज लंदन में 10वीं सालाना बरतानिया भारत वीक से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत बरतानिया की शराकतदारी रवायती तिजारत से कहीं ज्यादा वसी हो गई है, जो टेक्नोलॉजी, सॉवरिन AI, अहम मादनियात, दिफा और साफ तवानाई जैसे जामे शोबों का अहाता करती है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में फ्रेजाइल 5 से निकल गया है और इसे दुनिया के सबसे ज्यादा मवाक़े के मकाम पर तस्लीम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत बरतानिया सीटा दोनों ममालिक की बेहतरीन अशिया और खिदमात को एक दूसरे के लिए दस्तियाब करने पर मरकूज है। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल को लंदन में मुनक़िदा सालाना बरतानिया भारत अवार्ड 2026 में भारत और बरतानिया के ताल्लुकात को एक बुलंदी पर ले जाने में कायदाना रोल अदा करने पर खसूसी इनाम से नवाजा गया। जनाब गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये मालूमात फराहम करते हुए कहा कि ये एजाज हुकूमतों, सनतों, माहरीन तालीम, सकाफत और अजीम भारतीय बिरादरी की मरहून मिन्नत है, जो भारत और बरतानिया के ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में सरगर्म हैं। वेनेजुएला में आए दो तबाहकुन जलजलों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 589 हो गई है। तकरीबन 300 अफराद जख्मी हुए हैं। कल राजधानी के नजदीक आने वाले इन जलजलों के बाद राहत कार मलबे से लोगों को निकालने के लिए काम कर रहे हैं। कराकास और नजदीकी साहिली शहर ला गुआयरा में लोगों को गिरी हुई इमारतों के मलबे में से मदद के लिए पुकारते हुए सुना गया। 7.2 शिद्दत के पहले जलजले के बाद जो दूसरा जलजला आया वो पहले से ज्यादा 7.5 शिद्दत का था। ये दोनों जलजले जमीनी सतह से नजदीक थे, जिनकी वजह से तबाही और ज्यादा शदीद हुई है। मुल्क की उबूरी सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने हंगामी हालात का ऐलान किया है। बहुत से ममालिक ने बचाव की कोशिशों में मदद करने की पेशकश की है। उबूरी सदर रोड्रिगेज ने जलजलों के बाद भारत के इत्तेहाद का ये कहते हुए एतराफ किया है कि ये मुश्किल औकात में भारत और वेनेजुएला के दरमियान तआवुन के जज्बे के ऐन मुताबिक है। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान का खैर मकदम किया, जिसमें उन्होंने ताजियत का इजहार किया है। नेज दलजले से होने वाले शदीद नुकसान के तनाजुर में राहत की कार्रवाइयों में इमदाद देने की भारत की ख्वाहिश का इजहार किया है। जनाब मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए मोहतरमा रोड्रिगेज ने बैनुल अक्वामी इमदाद के जज्बे को तस्लीम किया और वेनेजुएला के साथ किए जाने वाले इत्तेहाद को सराहा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद का ऐलान किया, जिसके तहत भारतीय फजाइया के दो C-17 तैयारे आज वेनेजुएला के लिए रवाना हुए।

0: खेल जगत कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष गजपी।
1: श्रोता, खेल केवल प्रतियोगिता का नाम नहीं बल्कि यह अनुशासन, समर्पण, आत्मविश्वास और निरंतर संघर्ष करने की प्रेरक कहानी भी है। जब कोई खिलाड़ी कठिन चुनौतियों को पार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचता है तो उसकी सफलता अनेक युवाओं के लिए प्रेरणा बन जाती है। आज हमारे साथ ऐसे ही एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद है जिन्होंने पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। हाल ही में ग्वालियर में आयोजित मध्य प्रदेश मास्टर्स पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में इन्होंने लगातार तीसरी बार बेस्ट लिफ्टर ऑफ मध्य प्रदेश का खिताब अपने नाम किया। हम बात कर रहे हैं भोपाल के पावर लिफ्टर अभिषेक बघेल जी की। आइए उनसे उनके खेल जीवन, संघर्ष, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद मनीष जी। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: अभिषेक जी, मध्य प्रदेश के बेस्ट लिफ्टर का जो खिताब अभी हाल ही में आपके नाम हुआ है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अपनी इस उपलब्धि के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं कि यह उपलब्धि पाकर आपको कैसा महसूस हो रहा है।
2: लगातार तीसरी बार बेस्ट लिफ्टर बनना अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने खेल संस्थान के लिए, अपने जिस जिले का आप प्रतिनिधित्व करते हो, सभी के लिए एक गौरवपूर्ण पल रहा वो। और लगातार तीसरी बार बेस्ट लिफ्टर बनना आपको एक मोटिवेशन देता है
1: जी।
2: और लगातार इस टाइटल को आप कंटिन्यूअसली, आप एक बार बेस्ट लिफ्टर बनना मतलब उतना चुनौतीपूर्ण नहीं रहता जितना कि आप एक बार बनने के बाद उस सफलता को बचाए रखना कि आप दूसरी बार भी उस टाइटल को सेव कर पाते हो और तीसरी बार भी उस टाइटल को आप सेव कर
1: जी,
2: पाए
1: जी, जी, जी।
2: काफी अच्छा मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए पल रहा वो।
1: जी जी जी, आपको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई और आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं। अब बात करते हैं पावर लिफ्टिंग की, तो पावर लिफ्टिंग की ओर आपका रुझान कैसे हुआ और इस खेल में आने की प्रेरणा आपको कहां से मिली?
2: मैं क्योंकि फॉर्मर नेशनल बैडमिंटन प्लेयर भी हूं तो स्टार्टिंग से ही खेल के प्रति मेरा रुझान रहा क्योंकि मैं

0: बैडमिंटन खेलता था, उसके बाद मैं फिटनेस के लिए मैंने जिम ज्वाइन किया
1: जी,
0: और इसके बाद धीरे धीरे मैं बॉडी बिल्डिंग में आया। बॉडी बिल्डिंग के दौरान, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के ट्रेनिंग में हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, मसल को बिल्ड करने के लिए वेट लिफ्टिंग करते हैं, और बॉडी बिल्डिंग में भी मैंने मध्य प्रदेश में जो स्तर था उस स्तर से ऊपर जाने का ही टारगेट रखा मैंने, मतलब सेरू क्लासिक, अमेच्योर ओलंपिया इंडिया और अर्नॉल्ड क्लासिक जैसी विश्व की जो प्रतिष्ठित स्पर्धाएं हैं उनमें रजिस्ट्रेशन किया और उनमें खेलने का प्रयास किया, उनमें खेला भी मैं, टाइटल होल्ड भी किया। इसके बाद 22-23 में जब मैं अमेच्योर ओलंपिया खेलने के बाद मैंने अर्नॉल्ड क्लासिक का रजिस्ट्रेशन किया और उनने मेरा इन्विटेशन स्वीकार किया, उन्होंने मुझे इन्विटेशन भेजा उसके लिए, बट कोविड की जो वेव आई तो उसके वजह से वो कॉम्पिटिशन कैंसिल हो गया, तो थोड़ा सा वो एक फेज था। उसके बाद क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही 2019 से ही मैं पावर लिफ्टरों को ट्रेनिंग देता था, तो धीरे धीरे धीरे फिर उस कॉम्पिटिशन के बाद मैं पूरी तरीके से पावर लिफ्टिंग में आ गया, और इसके बाद मैं प्रोफेशनली कम्पीट करने लगा। उसके पहले मैं कॉम्पीट नहीं करता था, सिर्फ मैं अपनी मसल को डेवलप करने के लिए ही वेट लिफ्टिंग करता था, पावर लिफ्टिंग करता था, तो इसके बाद मैं पूरी तरीके से पावर लिफ्टिंग में आया
1: जी। ओलंपिया प्रतियोगिता में भी आपने भाग लिया और टॉप 6 में आपने अपनी जगह बनाई, यह अनुभव आपका कैसा रहा?
0: अमेच्योर ओलंपिया में मेरी जो हाइट के अकॉर्डिंग जो मेरा जो इवेंट है वो मेरा क्लासिक फिजिक है, क्लासिक फिजिक डिवीजन ए में आता हूँ, उसमें मुझे बॉडी वेट 80 के नीचे रखना होता है
1: जी
0: मेरी हाइट के अकॉर्डिंग, तो उसमें मैंने बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन की थी, बहुत ही मिनिमम डाइट में, उस समय 3-3 घंटे कार्डियो करता था, डेली 20 किलोमीटर साइकिलिंग करता था, तो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन थी मेरी, बस जो प्रोग्राम था उसको शायद हम समझ नहीं पाए, क्योंकि उसमें एक पहले प्रीजजिंग होती है, प्रीजजिंग के बाद फिर फाइनल डे होता है
1: जी जी जी,
0: तो प्रीजजिंग में मैंने अपनी बॉडी को, क्योंकि हम बॉडी बिल्डिंग में अपनी बॉडी को हर दिन मैक्सिमम पुश नहीं कर सकते
1: जी,
0: तो मैंने अपनी बॉडी को मैक्सिमम पुश नहीं किया, नॉर्मली प्रीजजिंग में मैंने किया। प्रीजजिंग के बाद जब नेक्स्ट डे मैंने बहुत अच्छा बॉडी को पीक पे ला करके और बॉडी को एक्सट्रीमली वाटर कट करके शो के लिए गया मैं और ऑन स्टेज आया, बट जजेस ने जो रिजल्ट अनाउंस किए वो प्रीजजिंग के आधार पे कर दिए, इस वजह से मेरा जो एक्सपेक्टेशन था कि मैं वहां पे टॉप आऊंगा तो टॉप ना आ करके मैं टॉप 6 में रहा। उस समय जो कंडीशनिंग थी, उस समय जो प्रिपरेशन थी मेरी काफ़ी अच्छी थी, बट फिर भी अमेच्योर ओलंपिया एक छोटा कॉम्पिटिशन नहीं है, उसमें एशियन कंट्रीज़ के लगभग सारे, इंडिया के अलावा इंडिया के आसपास के सारे कंट्रीज़ के प्लेयर आते हैं खेलने के लिए, तो एक अच्छा बड़ा स्टेज था। बड़ा स्टेज में अगर मैं देखूँ तो टॉप 6 भी आना मध्य प्रदेश और मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए काफ़ी अच्छा गौरवपूर्ण पल था
1: जी। निश्चित तौर पर हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि यह जो ओलंपियाड का जो कॉम्पिटिशन होता है वो एशिया लेवल का कंपटीशन होता है और उसमें लगभग सभी देशों के काफी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स भाग लेते हैं और उसमें टॉप 6 तक पहुंचना निश्चित तौर पर ये बहुत ही गौरव के पल है आपके लिए भी और उन तमाम लोगों के लिए जो शायद आपको देखते हैं अपने भविष्य के तौर पे। अब जैसे मध्य प्रदेश पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 हाल ही में जो संपन्न हुई उसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि उसमें आपका प्रदर्शन कैसा रहा?
0: मध्य प्रदेश स्टेट पावर लिफ्टिंग थी, उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट जिला इकाइयां हैं उनने पार्टिसिपेट किया, कॉम्पिटिटर्स थे सभी जगह के, इंदौर के थे, जबलपुर के थे, ऐसे सभी जगह के थे। मेन चीज ये है कि ये प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्पर्धा के बीच में, क्योंकि आगामी जो राष्ट्रीय स्पर्धा है वो 18 से 23 जुलाई है, ज्यादा गैप नहीं होता, तो इसलिए हम वहाँ पे अपना मैक्स परफॉर्मेंस नहीं करते हैं
1: जी जी जी,
0: और वहाँ हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि हमको सिर्फ वहाँ पे अपना प्लेस क्लियर करना है जिससे हमारा सिलेक्शन नेशनल्स के लिए हो जाए
1: जी।
0: और मेरा ये हमेशा मूल मंत्र रहा है कि मैं अपने प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंदी को मैं ये नहीं मानता हूँ कि मुझे इसे हराना है, मेरा ये है कि यदि अगर हम 10 लोग हैं या हम 100 लोग हैं उसमें से जो उस दिन उस पल उस क्षण में जो बेहतर करेगा वही विजेता बनेगा।
1: बिल्कुल,
0: मैं अपनी चीज़ें ड्यूरिंग मीट भी मैं अपने कॉम्पिटिटर से शेयर करता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कैपेबल नहीं है या पर्टिकुलर उस टाइम उनके पास है नहीं, तो मैं शेयर करता हूँ कि आप लो, आप मेरी चीज़ यूज़ करो, आप खेलो, आप बेहतर होगे तो आप ही जीतोगे, मैं बेहतर ये दूंगा तो मैं जीतूंगा
1: जी जी जी। बहुत अच्छी बात की और इसीलिए कहा जाता है कि स्पोर्ट्स में कंपटीशन होते हैं वो बहुत ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है और उस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में आप में एक टीम भावना की बात आती है। अभिषेक जी, सामान्य इंसान को समझाना चाहे तो आप कैसे बताएंगे कि पावर लिफ्टिंग आखिर क्या होती है?
0: पावर लिफ्टिंग एक्चुअली, पावर और लिफ्टिंग, वह व्यक्ति जो कम से कम बॉडी वेट में, मतलब वजन में, और जितना ज्यादा से ज्यादा भार उठा पाए, वेट लिफ्ट कर पाए, वो होता है पावर लिफ्टर।

0: जी
1: पावर लिफ्टिंग में तीन चीजें होती हैं जो आपको करनी होती हैं। एक कंधे पे रॉड और वजन रख करके आपको बैठना है, फिर ऊपर आना है। एक चेस्ट पे बार को लाना है और ऊपर करना है, और वेट लगा हुआ है डेडलिफ्ट, जिसको डेडलिफ्ट बोलते हैं, नीचे भार को ऊपर की ओर आना। ये तीन लिफ्टों का संगम है पावर लिफ्टिंग।
0: जी, और हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे, हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश के बेस्ट पावर लिफ्टर आज हमारे साथ मौजूद है, और आज वो अपनी जो जर्नी है पावर लिफ्टिंग की वो आज हमसे साझा कर रहे हैं। अभिषेक जी, एक पावर लिफ्टर का सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसा होता है?
1: देखिए, पावर लिफ्टिंग का जो प्रशिक्षण है वो स्पेसिफिक इसलिए हो जाता है क्योंकि आप एक उद्देश्य, आप एक पहले अपना एक साल भर का आप एक उद्देश्य बनाते हो कि भाई मुझे इस साल यहाँ तक इस वजन को उठाने में सक्षम करना है अपने
0: जी
1: आप
0: जी
1: को।
0: जी
1: तो हमारा जो ट्रेनिंग शेड्यूल होता है, 4 डेज, 5 डेज, 6 डेज की हमारी ट्रेनिंग शेड्यूल होती है। 4 डेज में हमको कौन से दिन में करना है, और हमारा सब कुछ निश्चित होता है कि आज हमें इस वजन से इतने रेप और इतने सेट्स लगाने हैं।
0: जी
1: फिर हमारी जो उस मसल को, जैसे स्क्वाट हो गई तो लेग्स हो गए, लेग्स के लिए जो सपोर्टिव एक्सरसाइजेस हैं कौन कौन सी करना है, बहुत सारी मल्टीपल एक्सरसाइज होती हैं, चेस्ट और चेस्ट बेंच प्रेस को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या करना है, आपको डेडलिफ्ट को इंक्रीज करने के लिए कैसे करना है, तो सब कुछ सुनियोजित होता है कि ऑफ सीजन में आपको कैसी ट्रेनिंग करनी है, कब आपको हाइपरट्रॉफी फेज में रखना है, कब आपको टैपर करना है, कब आपको पीकिंग करनी है। तो ये एक प्योर कस्टमाइज एंड प्रोफेशनल कोचिंग के द्वारा ही संभव है ये स्पोर्ट्स।
0: जी। और हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आप बहुत से ऐसे लोगों को भी इस समय तैयार कर रहे हैं पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में, जो मध्य प्रदेश में काफी नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। आप एक प्रशिक्षक की भूमिका भी निभा रहे हैं। अभिषेक जी, पावर लिफ्टिंग में डाइट और पोषण की क्या भूमिका होती है?
1: पावर लिफ्टिंग में न्यूट्रिशन का महत्व उतना ही है कि जैसे शरीर है, शरीर में यदि अगर हार्ट काम नहीं करेगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो।
0: जी
1: तो जब तक आपका पोषण सही नहीं होगा, आप यदि अगर रात को अच्छे से सो नहीं पाए, यदि आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं हुआ, यदि आपने कुछ ऐसी चीज़ खा ली कि आपको एसिडिटी हो रही है, आपको ब्लोटिंग हो रही है, तो आपका परफॉर्मेंस डेफिनेटली अगले दिन अच्छा नहीं होगा।
0: जी
1: आपकी मसल रिकवर नहीं होगी, आपकी बॉडी रिकवर नहीं होगी। आपका न्यूट्रिशन पोषण प्रॉपर होना चाहिए, कितना प्रोटीन खाना है, कितना कार्ब्स खाना है, कितना फैट खाना है, कितना फाइबर खाना है, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी आप वेट को लिफ्ट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको 365 दिन वो काम करना है जो आम आदमी की कल्पना से परे है।
0: जी, बिल्कुल आपने सही कहा। खेल जीवन में कभी ऐसा समय आया जब आपको ऐसा लगा हो कि अब आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है?
1: मेरी पूरी जर्नी में सबसे जो मेरा इमोशनल और टफेस्ट जो टाइम था, मैच्योर ओलंपिया में थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट हुआ, नो डाउट, क्योंकि मेरी जो प्लानिंग थी और मैंने जिस हिसाब से मेहनत करी थी उसके अकॉर्डिंग वो परिणाम नहीं आ पाया।
0: जी
1: बट अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो मेहनत की थी वो करी थी मैंने अर्नोल्ड क्लासिक यूएसए के लिए, और उस दौरान मैं केवल 800 कैलोरीज खाता था और 3 घंटे कार्डियो करता था
0: जी,
1: और अपनी ट्रेनिंग वर्किंग सभी कुछ करता था। तो वो वहाँ पे वीज़ा रजिस्ट्रेशन मेरा हो गया था, उसके बाद वो कॉम्पिटिशन कोविड की वजह से कैंसिल हुआ। वो पल मेरे लिए एक बहुत ही अब आघात देने वाला था। वही सबसे बड़ा एक पॉइंट था कि जिसने मुझे पूरी तरीके से हिला के रख दिया था, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी। मैं उस साल इंडिया के लिए मेडल इंटरनेशनल नॉट क्लासिक यूएसए जो मेन ओलंपिया होता है उसकी तरह ही आयोजित होने वाला एक दूसरा कंपटीशन है। वर्ल्ड के सारे बेस्ट बॉडी बिल्डर्स उसमें आते हैं, उसमें
0: जी
1: बहुत अच्छी प्रिपरेशन में था।
0: जी बिल्कुल। और कठिन परिस्थिति मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आपका मंत्र क्या है?
1: मेरा सिर्फ यही सोचना है कि हर वो व्यक्ति, हर वो खिलाड़ी किसी भी चीज़ को छोड़ने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले ये ज़रूर सोचे कि वो जीत या वो हार या वो कदम जो उठा रहा है वो सिर्फ उसका नहीं है, उससे जुड़े हुए हर व्यक्ति के लिए है, उसके माता पिता, उसके कोच, उसके टीममेट्स, जिनने उसके खेल के लिए, उसकी उस काम के लिए, उनमें यदि अगर 1% का भी सहयोग किया है तो उसके उस निर्णय से, यदि अगर वो किट करता है, यदि वो आगे बढ़ता रहता है, वो किट करता है, तो उसको बस दुख नहीं होगा, उनको भी दुख होगा। यदि अगर वो जीतेगा तो उसको बस खुशी नहीं होगी, उनको भी होगी।
0: जी
1: तो ये एक चीज़ है जो मुझे हमेशा मोटिवेट रहती है कि मुझे अपने लिए नहीं, मुझे अपने से जुड़े हुए जो मेरे इस जर्नी में मेरा सहयोग कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीममेट्स, उन सभी के लिए मुझे करना है और मुझे आगे बढ़ना है, और मुझे मध्य प्रदेश का जो नाम है वो इंटरनेशनल लेवल में मुझे रोशन करना है।
0: जी, और भविष्य को लेकर अभिषेक जी

0: क्या योजना है आपकी?
1: पिछले 9 सालों से मेरा एक ही उद्देश्य है, जब से मैंने एशियन जीता उसके बाद से, कि मुझे मध्य प्रदेश में पर्सन स्पेसिफिक ट्रेनिंग और मध्य प्रदेश में खेल का स्तर बढ़ाना है, स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का। मैं अभी आगामी जुलाई में नेशनल कॉम्पिटिशन खेल रहा हूँ। पिछली बार अपेंडिक्स की वजह से मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया, इस बार मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बहुत अच्छा कर सकूँ, और इसके बाद फिर आगामी मैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के लिए प्लानिंग करूंगा।
0: जी अभिषेक जी, कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते आप क्या सलाह देना चाहेंगे उन युवाओं को जो खासकर पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं?
1: मेरा तो उनको सिर्फ एक ही सलाह है कि थोड़ा पेशेंस रखें। पावर लिफ्टिंग एक ऐसा स्पोर्ट है कि आप 70 साल 80 साल तक खेल सकते हो।
0: जी जी।
1: पावर लिफ्टिंग में जूनियर, सब जूनियर, ओपन, मास्टर्स, मास्टर्स में चार कैटेगरी होती है, मास्टर 1, मास्टर 2, मास्टर 3, मास्टर 4। मास्टर 4 70 साल से लेकर के ऊपर तक के कैटेगरी होती है, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, फिर 70 और प्लस।
0: जी।
1: तो आप हमेशा इसे खेल सकते हो, और जल्दीबाजी ना करें, मार्गदर्शन लें और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसे आप हमेशा खेल सकते हो। आप जॉब करते हो, आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, उसके बाद भी आप इसको खेल सकते हो।
0: जी, हम यह कह सकते हैं कि पावर लिफ्टिंग केवल एक खेल नहीं है, बल्कि फिटनेस के लिए भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। और जैसा कि अभी अभिषेक जी ने बोला कि बिल्कुल हताश ना हो, जल्दबाजी ना करें, बल्कि इसमें किसी भी तरह की एज की किसी भी तरह का कोई बार नहीं है, तो एज से पूरी तरह से मुक्त है। तो आप जिस भी उम्र में शुरू करना चाहे, अपने प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में शुरू करें और इस खेल का आनंद लें। अभिषेक जी, आप हमारे स्टूडियोज में आए और इतनी अच्छी बातचीत आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
0: अभी आपने बेस्ट लिफ्टर ऑफ मध्य प्रदेश से सम्मानित भोपाल के पावर लिफ्टर अभिषेक बघेल से यह बातचीत सुनी। इसी के साथ खेल जगत के आज के अंक से हमें इजाजत दीजिए, अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल जगत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म जानी दुश्मन का एक गाना। इसमें दूसरी आवाज है आशा भोसले और साथियों की। वर्मा मलिक ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म चंबल की कसम से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा है। खय्याम का संगीत है।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म रुस्तम से, आवाज़ है आतिफ असलम की, गीत और संगीत आरको का है।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल की आवाज में गीत, और दूसरी आवाज है इसमें अभिजीत की। महेंद्र प्रताप सिंह का लिखा हुआ ये गाना है और निखिल विनय का संगीत है। इस गाने को किसने पसंद किया है वो हम आपको गाने के बाद सुनवाएंगे।

इस गाने के लिए फरमाइश आई थी सपना संगीता रोड इंदौर से लिखने वाले हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने। महादेव घाट अमलेश्वर से लिखने वाले हैं डोमेन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज कुमार ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश कुमार ठाकुर और गुड़िया ठाकुर ने पसंद किया था। इसी गाने के लिए छत्तीसगढ़ बेमेत्रा से लिखने वाले हैं सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, मयंक रेडियो श्रोता संघ। नवागढ़ कटई से लिखने वाले हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा दामनी वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। अगला गाना लिया है हमने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में एक गाना। फिल्म का नाम है काला पत्थर। साहिर ने इस गाने को लिखा है और राजेश रोशन का संगीत है। इसको पसंद किया है, फरमाइश हम बताएंगे गाने के बाद।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म श्री 420 से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, शैलेंद्र और साथियों की। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, शंकर जयकिशन का संगीत है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है पिछले गाने की और इन दोनों गानों की मिली जुली फरमाइश इस तरह है। डोंगर गांव से लिखने वाले हैं, राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से, राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनुष्का और तन्मय गजबिये। इसी गाने को पसंद किया है उपाध्याय नगर देवास से, लिखने वाले हैं मुरारी लाल वर्मा, मनीषा वर्मा, शिवम वर्मा। मेंढकी रोड देवास से नागू सिंह कुमावत, राजकुमार कुमावत, अभिषेक कुमावत और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है राजा राम नगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, मीकू और उनके साथी, और मोहसिनपुरा से जमील खान और इमरान और फरखान।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की गुलशन बावरा ने इस गाने को लिखा है। कल्याण जी आनंद जी का संगीत और इस गाने को पसंद किया है हुलास राम कटरे, नानेश्वरी कटरे, और इन्होंने भेजा है ये दरिया दंड हट्टा ज़िला बालाघाट से, इन्होंने ये फरमाइश के लिए भेजा है। और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धा नंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित और साथ ही प्रतीक आर्य ने इस गाने को पसंद किया है। और इस गाने के लिए अगला खत भी हम शामिल कर लेते हैं। रिंगनी छत्तीसगढ़ से ये खत शामिल हो चुका है, इन्होंने भी इस गाने के लिए ये फरमाइश भेजी है। सुनते ही ये गीत।

इसी गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र प्रसाद का वायलिन पर बजाया राग पूर्य धनाश्री। लीजिए सुनिए।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी के अंतर्गत राजेंद्र व्यास का वायलिन पर बजाया राग पूरिया धनश्री। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: स्क्रीन नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत

न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर इसी मीटर पॉइंट पर हम फिर हाजिर होंगे। तो अब इजाजत दीजिए, जावेद खान को जय हिंद।